3.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 10 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण आरंभ होता है।

0: FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचारों के लिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
2: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
1: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े

0: कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। उत्तराखंड सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 20 साल की उत्तराखंड कृषि कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना में राज्य के सभी 13 जिले शामिल होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. शिवेंद्र कुमार कश्यप को इस परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया गया है। होर्मुज डमरू मध्य को लेकर जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के प्रति संयम बरत रहा है और फिलहाल कोई नया सैन्य हमला करने की योजना नहीं बना रहा है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और दावा किया है कि उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरानी सरकार की आर्थिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। उनकी ये टिप्पणी ईरान, ओमान और अमरीका के बीच जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए चल रही बातचीत के रुकने के बीच आई है। मुंबई के सोम्या विद्या विहार यूनिवर्सिटी में खेले गए FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 की टीम इवेंट फाइनल में भारत और हांगकांग चीन के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा, लेकिन गेम के बेहतर अंतर के आधार पर भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक ईओडी अभ्यास कल से 14 अगस्त तक दक्षिणी नौसेना कमान कोची में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों का अनुप्रसारण हमने आकाशवाणी दिल्ली से किया। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। आइए आरंभ करते हैं आज की आराधना।

देश का वंदन समूह स्वर में हमने किया, और वाकई स्वरों की बात करें तो हमारे देश में कई सांगीतिक स्वर हुए हैं जिनमें महत्वपूर्ण है पंडित भीमसेन जोशी, पंडित नरेंद्र शर्मा। यदि आपके गले से स्तुति हम तक पहुंचे तो ईश्वर से जुड़ाव का एक बहुत ही आसान साधन होता है।

पंडित भीमसेन जोशी जी के स्वर के साथ ये एक कृष्ण वंदना। आइए अब श्री राम को नमन करते हैं। स्वर लता मंगेशकर का है।

राम भजन कर मन, राम भजन बिन ज्योति न जागे। ये थी लता मंगेशकर। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले को।

0: ये था भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं खेती की बात। आज विषय है टमाटर मां रोग नियंत्रण। जानकारी का वाचन किया है नंद कुमार यादव ने।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। संगवारी हो, बढ़िया काम बूता चलत हवय ना? और देखो संगवारी हो, ऐसने सुघर हमन आप मन बर खेती की बात मा लेके पहुंचे हवन। टमाटर लगाए हवन, ओकर रोग नियंत्रण के चेत रखे बर पड़ते, तो ए विषय मा सुघर

0: जानकारी आप मन ला बताथन। संगवारी हो पताल म हमन देखथन तौ सफेद मक्खी नाव के जौन किसम आथे जौन हर पाना डारा के रसल चूहक के पौधा ला कमजोर कर देथे। मधुरस कस बूंदी के जैसे पत्ता म करिया रंग के धब्बा हर पड़त जाथे, पत्ता हर मरोड़ बीमारी के सेतीर बने लगथे। संगवारी हो नर्सरी म बीजा के बुवाई के बाद बेड म 400 मेस के नाइलोन जाली ला चाहे पातर सफेद कपड़ा ले तोप देवाय तो बढ़िया रीथे जौन हर पौधा के किरवा ले बचाव करथे। एकर प्रकोप ला मापे बर पिंवरा फेरोमेन कार्ड के उपयोग करना चाही जेमा ग्रीस और चिपके वाला तेल लगे हवाय तो बढ़िया रीथे जौन हर सादा मक्खी ला फैले ले रोकथे और प्रभावित पौधा ला जरई ले उखान के मेल देथन तो बने रीथे। ज्यादा होय मा हमन प्रोफेनोफास 200 मिलीलीटर ला प्रति 200 लीटर पानी के दर ले छिड़काव करथन तो सुघर रही। 15 दिन के बाद हमन दूसरिया स्प्रे कर सकथन। संगवारी हो रोग राई हर अब्बड़ नुकसान पहुंचाथे जेमा हमन पाना डारा के सुरंगी किरवा के नाव ला जानथन। ये किरवा हर पाना डारा ला खात रीथे और पत्ता ला टेढ़ा मेढ़ा करके सुरंग बनाए लगथे। फर बने और प्रकाश संश्लेषण के क्रिया मा घलाव असर करथे। एकर बार चेत रखना है शुरुआती बेरा मा नीम सीड कर्नल हवाए ओला 5% 50 ग्राम ला पानी मा मिला के छींचना चाहिए। किरवा के नियंत्रण करे बार डाइमेथोएट 30 EC ला 250 मिलीलीटर ला उपयोग मा लाथन तो बने रही थे। संगवारी हो थ्रिप्स नाव के जौन किरवा होते तेनो हर पताल के फसल ला नुकसान करत रही थे और यह हर पताल मा आम किरवा माने जाते जौन हर पत्ता के रसा ला चुहकत रही थे जेकर से तीर पत्ता हर मुड़े लगते। पत्ता के जौन आकार है तेन हर चाय पिए वाला कप के आकार के हो जाते और ऊपर कति ले मुड़ जाते। ये हर फूल झरे मा शुरू होते। एकर रोकथाम करे बर स्टिकी ट्रैप 6-8 प्रति एकड़ के दर ले लगाथन तो बढ़िया रही। एला रोके बर हमन इमीडाइक्लोप्रिड 17.8 SL ला 60 मिलीलीटर ला 200 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करथन तो बने रही थे। फल छेदक नाव के जौन किरवा होते तेनो हर आय लगते। मुख्य किरवा हर माने जाते पताल फसल की जौन हर हेलिकोवेरपा के सेतिर होते। सही बेरा मा हर नियंत्रण नहीं होते तो 22-37% तक के फसल ला नुकसान करत रही थे। ये हर पत्ता है फूल है और फर है तेला खात रही थे। फर मा गोलवा टोंडकू कर देते जेकर से तीर हर गुद्दा ला खाए लगते। संगवारी हो एकर बार नीम के पत्ता के घोल 50 ग्राम ला प्रति लीटर पानी के दर ले छिड़काव करथन तो बने रही थे। फर भेदक ला रोके बार फेरोमेन कार्ड ला बराबर दूरिया मा पनीरी लगाए के 20 दिन के बाद लगाथन तो सुघर रही। प्रभावित हिस्सा ला नष्ट कर देवाए तो बने रही थे। फर के गलन नाव के बीमारी हर घलाओ पताल के फसल में नुकसान करे लगते। संगवारी हो हर मौसम के परिवर्तन के से तीर होते। पताल में पानी के फैलाव है धब्बा है तेन हर बने लगते। फर गले के कारण बाद में हर करिया रंग के और भूरवा रंग के हो जाते। एकर बार बीजा के बुवाई करे के पहले ट्राइकोडर्मा 5-10 ग्राम ला चाहे कार्बेंडा जिम 2 ग्राम ला प्रति किलो बीजा के दर ले उपचारित करथन तो बने रही थे। मैंकोजेब 400 ग्राम ला चाहे कापर ऑक्सीक्लोराइड 300 ग्राम के उपयोग हमन करथन तो एकर नियंत्रण हो जाते। संगवारी हो ज्यादा जानकारी लेहे बर कृषि वैज्ञानिक के सलाह लेके दवाई के हमन उपयोग करथन तो फसल के उपज हर ज्यादा मिलते आमदनी घलो हर ज्यादा होते। जय जोहार राम राम।
1: टमाटर में रोग नियंत्रण इस विषय पर जानकारी अभी हमने सुनी। जानकारी का वाचन हमारे लिए किया नंद कुमार यादव ने। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:35 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान। आज मुख्य स्वर ए हरिहरन का है।

प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम में रात्रि विश्राम के बाद श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण ने प्रातःकाल स्नानादि करके मुनि चरणों में सिर नवाया। फिर सखा निषादराज के साथ प्रस्थान को तैयार होकर उन्होंने मुनिवर से मार्गदर्शन की याचना की। भरद्वाज जी ने मन ही मन हंसकर कहा, आपके लिए तो सभी मार्ग समान रूप से सुगम हैं। उन्होंने अपने चार शिष्यों को बुलाकर मार्ग दिखलाने के लिए साथ जाने का आदेश दिया। राह में मिलने वाले गांवों के नर नारी श्री राम, सीता और लक्ष्मण के रूप दर्शन कर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। यमुना तीर पहुंचकर श्री राम ने आग्रह करके मुनि शिष्यों को वापस विदा किया और आप निषादराज के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। एक स्थान पर छोटी आयु का एक तपस्वी न जाने किस दिशा से आकर श्री राम के चरणों में आ गिरा। अपने आराध्य को पहचान कर उस तेजस्वी का शरीर पुलक से भर गया था। उसकी आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आए थे। श्री राम ने उठाकर उसे हृदय से लगा लिया।

नवविहान में आज हम आपको बता रहे हैं मेक इन इंडिया कार्यक्रम के विषय में। मेक इन इंडिया भारत सरकार का एक मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसे 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। इसका अर्थ है भारत में बनाओ। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में ही चीजों का निर्माण करना और भारत को दुनिया का बड़ा विनिर्माण केंद्र बनाना, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाना। इस पूरे कार्यक्रम के उद्देश्यों को यदि समझें तो वो ये हैं। देश और विदेश की कंपनियों को भारत में कारखाने लगाने के लिए प्रेरित करना, युवाओं के लिए नए काम और नौकरियां पैदा करना, देश के करोड़ों युवाओं के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, भारत को दुनिया भर की कंपनियों के लिए एक प्रमुख ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। इन तमाम चीजों को करने के लिए नवाचार की जरूरत है, इसलिए नई तकनीक और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना इस कार्यक्रम का एक बड़ा घटक है, ताकि लोग आ सके और नए उद्योग भारत में लग सके। और नए उद्योग भारत में लगे और पुराने उद्योगों को में नवाचार हो, इसके लिए जरूरी था कि नियम कानून आसान किए जाएं। तो नियमों को सरल बनाएं ताकि उद्योग आसानी से चल सके, उनके एस्टैब्लिशमेंट में कोई दिक्कत ना हो पाए। सकल घरेलू उत्पाद में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी बढ़ाएं ताकि लोग इसकी ओर आकर्षित हों। और ये पूरा उद्योग विनिर्माण करना और देश में ये फैक्ट्रियां लगाना, नए नए तरीके के नवाचार के स्टार्टअप तैयार करना, इन सब के बीच एक मुख्य बात यह है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना उद्योगों को विकसित करना, यानी कि इसका जो घटक है अंदरूनी वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये तमाम जो उद्योग हैं वो जिन क्षेत्रों से लेकर हैं वो हैं ऑटोमोबाइल यानी कि गाड़ियां और उनके पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि मोबाइल कंप्यूटर और इत्यादि, रक्षा उपकरण, डिफेंस की चीजें, फार्मास्यूटिकल्स हमारी रोजमर्रा की दवाइयों से लेकर क्रिटिकल दवाइयां, अक्षय ऊर्जा यानी कि सोलर और विंड पावर। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के संदर्भ में इस पूरे कार्यक्रम का एक प्रमुख बात यह है कि घरेलू उत्पादन बढ़ाने से देश की जीडीपी में तेजी से वृद्धि हो रही है, आयात में कमी होती है, आयात के ही सामान जो है वो कम होते हैं तो हमारा पैसा यहाँ रुकता है, दूसरे देशों पर निर्भरता कम होती है और निर्यात में बढ़ोतरी होती है। मेड इन इंडिया उत्पाद अब वैश्विक बाजारों में भारी मात्रा में निर्यात किए जा रहे हैं। व्यापार नियमों को आसान होने से भारत में रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आ रहा है, यानी कि जिसे FDI कहा जाता है, विदेशी मुद्रा का निवेश भारत में होता है तो भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो बढ़ता है, कौशल का विकास होता है और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता देश के रूप में इसी कार्यक्रम के अंतर्गत भारत को जाना जाता है। तो ये एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका नाम है मेक इन इंडिया, यानी कि भारत में बनाना। नवविहान इस क्रम के अंतर्गत हमने सुना मेक इन इंडिया के विषय में जानकारी। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 MHz पर। आइए अब आपको कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का प्रसारण समय होगा आज दिन में 11 बजे। तुहर गोठ अमर गीत ये फोन इन कार्यक्रम हम सुनेंगे सुबह 10 बजे से। 10:30 का समय होगा आपकी पसंद का अमराई। इस कार्यक्रम में गंगाबाई और साथियों के साथ हम सुनेंगे कौशल कुमार भानु, उर्मिला दिवांगन और उनके साथियों को। छत्तीसगढ़ी गीतों का यह कार्यक्रम अमराई, इसका समय होगा सुबह 8:30 पर। यादों के झरोखे से फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम हम प्रस्तुत करेंगे 7:30 पर। आज सुबह इस कार्यक्रम को हम प्रस्तुत करते हैं रोज सुबह 7:05 पर। तो सुनिएगा आज सुबह कार्यक्रम 7:05 पर।

आज सुबह इस कार्यक्रम को हम प्रस्तुत करते हैं रोज सुबह 7:05 पर। तो सुनिएगा आज सुबह कार्यक्रम 7:05 पर। शाम 5 बजे का समय होता है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट का। संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का अनुप्रसारण हम करेंगे आज रात 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली से। संसद समीक्षा आकाशवाणी दिल्ली से आज रात 8 बजे रिले करेंगे। रात 8:15 पर हमारे केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा।

7:30 पर ग्राम सभा में गोठ बात का विषय होगा धान फसल में कीट रोग नियंत्रण, और साथ ही इसी कार्यक्रम में भेंटवार्ता का क्रम होगा, विशेषज्ञों से बातचीत होगी, मंडी मौसम और सामयिक सुझाव भी आपको दिए जाएंगे। युवा जगत कार्यक्रम होगा 5:35 पर। आज की बात का विषय होगा पर्यावरण अनुकूल हमारी जीवन शैली, साथ ही होगा क्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी। चित्रपट संगीत सुनिएगा आज 5:05 पर। ईमेल करें गीत सुने। इस फरमाइशी कार्यक्रम के पहले भाग का समय होता है 6:20 और शेष भाग यानी कि दूसरा भाग होगा 7:00 से।

0: ये थी कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी दिल्ली से समाचारों के लिए जुड़ेंगे। पहले सुनेंगे संस्कृत में समाचार और उसके बाद 7 बजे हिंदी में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्यां स्वनिवासे 20-26 इत्यस्य राष्ट्रमंडल क्रीडायाः पदक विजेतृभिः सह मेलनं कृतवान्। संवाद समये पदक विजेतारः प्रधानमंत्रिणा सह क्रीडायाः स्वानुभवान् निवेदितवन्तः। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे श्रीमोदी अवदत् यत् तेषाम् एकैकः अपि असाधारण प्रदर्शनेन राष्ट्रं गौरवान्वितवान् तथा तेषां सफलता बहून् यूनः प्रेरयिष्यति। श्रीमोदी एकं दृश्य श्रव्य संदेशम् अपि प्रकाशितवान् अथ अवदत् यत् ये क्रीडकाः भविष्ये क्रीडासु भागं ग्रहीष्यन्ति ते प्रगतिं करिष्यन्ति। असौ नागरिकान् भारतस्य सदैव उत्साहवर्धनं कर्तुम् आहूतवान्।
2: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
1: अवसरेस्मिन् युवकार्याणां क्रीडामंत्री मनसुख मांडविया तथा युवकार्य खेल राज्यमंत्री रक्षा निखिल खडसे च उपस्थिते आस्ताम्। देशस्य सर्वेषु भागेषु हर घर तिरंगा इत्यभियानं देशभक्तेः राष्ट्रैकतायाः भारतस्य च समृद्ध सांस्कृतिक परम्परायाः प्रोत्साहनाय आयोज्यते।

0: अभियानमिदं द्वाविंशत्यधिकद्विसहस्रतमे वर्षे प्रारब्धस्य हर घर तिरंगा इत्युपक्रमस्य पञ्चवर्षम् अस्ति। अनेन अभियानेन नागरिकाः राष्ट्रध्वजं प्रस्थापयितुं तथा देशभक्तेः राष्ट्रैकतायाश्च भावनां प्रकटयिष्यन्तीषु विविधासु गतिविधिषु भागं ग्रहीतुं प्रोत्साह्यन्ते। अस्मिन् वर्षे अभियानं विशेषत्वेन महत्वपूर्णमस्ति, यतः इदं भारतस्य राष्ट्रगीतस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य सार्धैकशततम वर्षपूर्त्या सह आयोज्यते। अनेन राष्ट्रध्वजस्य राष्ट्रगीतस्य च विशिष्टः समागमः भवति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी नागरिकान् अभियाने सक्रियतया भागं ग्रहीतुम् अथ विकसितभारतस्य निर्माणे स्वप्रतिबद्धतां पुनर्नवीकर्तुं च आहूतवान्। दिल्ली मेट्रो रेल निगमेन स्वातन्त्र्य भावनायाः उत्सवस्य भागरूपेण पीतवर्णमार्गे हर घर तिरंगा इति विषयवस्तुना सुसज्जिता विशेषा मेट्रो रेल यानसेवा समारब्धा। सामाजिक संचारपटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे डीएमआरसी इत्यनेन कथितं यत् भारतस्य 80तमे स्वातन्त्र्य दिवसोपलक्ष्ये आयोज्यमानानां सप्ताहव्यापिनां कार्यक्रमाणां भागरूपेण एषा विशेषा मेट्रो रेल सेवा प्रारब्धा। ओडिशा राज्ये पुनः प्रचंड वृष्टेः अनन्तरं राज्यस्य अनेकेषु भागेषु नदीनां वर्धमानः स्तरः नूतनः जलाप्लावन प्रकोपः जनयति। बैतरणी नदी अस्य प्रावृट्कालस्य तृतीये जलाप्लावन प्रकोपे प्रविष्टवती अस्ति। एकया नूतन न्यूनचाप व्यवस्थया सम्पूर्णे राज्ये अतिवृष्टिः अभवत्। अधिकारिणः जलाप्लावन प्रवण क्षेत्रेषु नदीस्तरस्य निरीक्षणं निकटतया कुर्वन्तः सन्ति, आवश्यकान् समाह्वानान् निवारकोपायान् च कुर्वन्तः सन्ति। भारतीयः भारोत्तोलकः महाराजन अरुमुगा पाण्डियनः उज्बेकिस्तान ताश्कंद नगरे एशियन जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप इत्यस्याम् स्पर्धायाम् पुरुषाणाम् 65 किलोग्राम मिते भारवर्गे रजत पदकम् प्राप्तवान् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेता खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
2: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की
1: जय। इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास

0: आवास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा आवास बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 20 साल की उत्तराखंड कृषि कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस योजना में राज्य के सभी 13 जिले शामिल होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शिवेंद्र कुमार कश्यप को परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक ईओडी अभ्यास कल से 14 अगस्त तक दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की विशेषज्ञ गोताखोरी और ईओडी टीमों के बीच अंतर संचालन बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर जारी तनाव के बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के प्रति संयम बरत रहा है और फिलहाल कोई नया सैन्य हमला करने की योजना नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए पर्याप्त धन भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरानी सरकार की आर्थिक चुनौतियां बढ़ा दी हैं। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसनुलिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित दो रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकता है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों का अनुप्रसारण हमने आकाशवाणी दिल्ली से किया। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 7:05 हुए, प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह।

कार्यक्रम आज सुबह में आप सभी का स्वागत। आज आपका साथी मैं सुनील चिपड़े। आसपास पसरी हरियाली, पत्तों पर बारिश की बूंदें और मिट्टी, गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू चारों ओर पसरी हुई है। जी हाँ, बारिश का मौसम खुशनुमा हरियाली देता है और आसपास की फूल पत्तियां सब महक उठती हैं। लेकिन कुछ कुछ परेशानियां भी देता है, जल भराव भी देता है, मौसम जनित बीमारियां भी देता है। तो इस तमाम चीजों में हमें अपनी सहूलियत के हिसाब से सावधानी रखनी है और आस पड़ोस का भी ख्याल रखना है। आस पड़ोस के ख्याल के साथ

0: सड़क पर चलते हुए भी आस पड़ोस के यानी कि अगल बगल के राहगीरों का, गाड़ी वाहन का, सबका ख्याल रखना है, क्योंकि बारिश का मौसम है, सड़क पर फिसलन ज्यादा होती है और थोड़े मोड़े गड्ढे तो हैं ही। तो इन सब के बीच हमें ख्याल रखना है आवाजाही में साथी चलने वालों का और गाड़ी वालों का। बात को आगे बढ़ाएंगे लेकिन पहले हम आपको दे दें ट्रैफिक अपडेट ऑफ बिलासपुर।
1: बिलासपुर सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को नमस्कार। उमाशंकर पांडे का कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज सावन माह का दूसरा सोमवार अर्थात भगवान शंकर जी की आराधना का पर्व है। देवाधिदेव महादेव जी की पूजा अर्चना का सर्वत्र माहौल है। सभी शिव मंदिरों में भक्तों की कतार दिखाई दे रही है। शहर के तमाम बड़े शिवालय जिनमें अष्टमुखी शिव मंदिर मसानगंज, नंदेश्वर मंदिर सरकंडा, भगवान शंकर जी का प्राचीन मंदिर मेलापारा चाटीडी, भगवान मंदिर सरकंडा सहित प्राय सभी मंदिरों में शिव जी के जय घोष के साथ बड़ा जनसैलाब नजर आ रहा है। साथ ही इन मंदिरों में आने वाले सभी भक्तों से अनुरोध है अपने वाहन सड़क में न रखकर किनारे व्यवस्थित सुरक्षित रखें तथा भक्तगण यह भी ध्यान दें कि आपके कारण सड़कों में आवागमन किंचित मात्र भी बाधित न हो। सभी वाहन चालकों से भी अनुरोध है मंदिर के आसपास धीरे चलें, सुरक्षित चलें। ऐसे बड़े मंदिरों में प्राय पुलिस के जवान लगाए गए हैं। सुगम और सुरक्षित आवागमन हेतु इनके संकेतों का पालन करें। साथ ही सभी मंदिर प्रबंधन से भी विशेष अनुरोध है कि एक साथ एक ही दिन सभी मंदिरों में व्यवस्था हेतु पुलिस बल लगा पाना कठिन है, अतः अपने स्तर पर भी आसपास सुगम यातायात के लिए व्यवस्था करें। इसके साथ ही शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र सहित संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, वाइज हॉस्टल सिंस के सदस्यों के द्वारा अपनी मांगों के संबंध में आज रैली निकाले जाने की योजना है। इस संबंध में आज प्रातः 10 बजे सिम्स हॉस्टल से रैली प्रारंभ होगी, जो सिम्स चौक, देवकी नंदन चौक, मेन पोस्ट ऑफिस, नेहरू चौक होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा। इसके पश्चात यह रैली वापस नेहरू चौक, देवकी नंदन चौक, अरपा रिवर व्यू होते हुए सिम्स पहुंचकर संपन्न होगी। रैली के सभी सदस्य यह सुनिश्चित करें कि आप सभी सड़क के किनारे चलेंगे तथा ध्यान रहे रैली के कारण आम यातायात बाधित ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो और एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जैसे वाहनों के आने पर तत्काल उसे साइड भी देवें। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
0: जी हाँ, ये यात्रा शुभ होने का संदेश हमें रोज मिलता है और ट्रैफिक पुलिस ऑफ बिलासपुर के द्वारा ये तमाम जानकारियां हमारे माध्यम से आप तक रोज पहुंचाई जाती है। तो ये जानकारियां रोज पहुंचाई जाती हैं तो हमें ख्याल रखना है कि आसपास और सड़क बेहतर व्यवस्था के साथ जारी रहे। आवाजाही, पार्किंग, पूजा अर्चना, उत्सव, रैली, आंदोलन, दिन विशेष की रैलियां, सब कुछ जरूरी है लेकिन इन सब में संतुलन जरूरी है। जैसा कि उमाशंकर पांडे जी ने कहा कि हमारे आसपास मंदिरों के आसपास जो पार्किंग व्यवस्था होगी, गाड़ियां होंगी, वाहन होंगे, वो इस तरह रखे जाएं ताकि मंदिरों के आसपास की आवाजाही रुकने न पाए, यानी कि सभी चीजों में हमें संतुलन की बात को ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह धरती पर प्रत्येक जीव जरूरी है। प्रकृति से जिन भी जीवों की उत्पत्ति है वे सभी धरती के लिए जरूरी है। प्रत्येक जीव जंतु के आचार व्यवहार खान पान से प्रकृति का संतुलन बना हुआ है। कई जीव ऐसे होते हैं जो बेहद सेंसिटिव होते हैं। उनकी जनसंख्या पर मनुष्य के व्यवहार और प्रकृति के परिवर्तन का काफी प्रभाव पड़ता है। उनमें से ही एक है जंगल का राजा। जी हाँ, जंगल का राजा शेर। हमने शेर को अपनी कथा परंपरा

में राजा की संज्ञा जरूर दे रखी है, पर जंगल का यह राजा जितना शक्तिशाली है उतना ही उसकी उपस्थिति संवेदनशील होती है। यदि दुनिया में शेर खत्म हो जाए तो प्रकृति का पूरा चक्र बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा। प्रकृति के संतुलन की जब हम बात करते हैं तो उसका अर्थ यह है कि शेर शाकाहारी जीवों की आबादी पर नियंत्रण रखते हैं, हिरण, जेब्रा, जंगली भैंसा इन सब का शिकार करते हैं। शेर इन शाकाहारी प्रजाति का शिकार ना करें तो इन जीवों की संख्या बढ़ेगी और अनियंत्रित हो जाएगी। जंगल की घास, पेड़, हरियाली सबका खात्मा होने लगेगा। वन्य जीवों के जानकार के अनुसार शेर हमेशा अपने शिकार में झुंड में सबसे कमजोर पर हमला करता है। बूढ़े बीमार जानवर के शिकार से संक्रामक बीमारियां नहीं फैल पाती क्योंकि वो शेर का आहार बन जाते हैं। और इन शाकाहारी प्रजातियों में अनुवांशिक स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। शेरों की उपस्थिति छोटे छोटे मांसाहारी जानवरों की आबादी को भी नियंत्रित करती है। शेरों के प्रभाव से जंगलों के बीच पानी के स्रोतों, नदी, तालाब, पोखर इत्यादि के आसपास अन्य जीवों का जमावड़ा कम समय के लिए होता है, तो मिट्टी का कटाव बचता है, नदी के किनारे खराब होने से बच जाते हैं। क्योंकि जो अन्य जानवर हैं शेरों के डर से नदी के कटाव को रोकते हैं और पानी पीकर जल्दी से उस जगह से दूर हो जाना चाहते हैं, तो इस तरह नदी के किनारे खराब होने से बच जाते हैं। तो प्रकृति के संतुलन के लिए शेरों का होना जरूरी है। उनके संरक्षण और जागरूकता के ख्याल से विश्व शेर दिवस मनाया जाता है और वो विशेष दिन आज ही है, यानी कि 10 अगस्त। इसकी शुरुआत 2013 से हुई ताकि जागरूक किया जा सके लोगों को। और आज के दिन शेरों के विषय में पढ़ें और पढ़ा हुआ दूसरों तक बांटें। और वन्य जीव, पर्यावरण, जंगल इन सब की जानकारी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें तो वो हमारे लिए कितने जरूरी हैं। जंगल का एक एक कीट पतंगा जीव जंतु बेहद जरूरी है और जंगल का राजा शेर वो तो जरूरी है ही। तो बातचीत में थोड़ा सा विराम और बढ़ते हैं गीत की ओर।

जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय। जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।

आगे मैं पीछे, मैं पेड़ पे वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ, मैं डाल डाल वो पात पात, मैं पसीना वो दाल दाल, मैं सुर में वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे

और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक सूचना आपको दे दें। कार्यक्रम संबंधी ये सूचना है, श्रोताओं, कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण हर महीने के दूसरे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 11 अगस्त 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 10 अगस्त यानी कि आज के दिन सोमवार को दोपहर 3 से 3:30 के बीच की जाएगी। आप हमें फोन करके डॉक्टर से सवाल पूछ सकते हैं। हमारे कार्यक्रम में विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता। आपसे चर्चा का विषय होगा फेफड़े एवं श्वसन रोग और उपाय। आप हमें फोन कर सकते हैं इन नंबरों पर 2665592 और बिलासपुर का एसटीडी कोड है 07752। एसटीडी कोड के साथ नंबर एक बार फिर सुन लें 07752 और नंबर है 266592। आपके फोन का हमें इंतजार होगा और विषय एक बार फिर बता दें फेफड़े एवं श्वसन रोग और उपाय। सूचना समाप्त हुई। इस सूचना के बाद अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमने अभी बात की थी बाघों के संदर्भ में, शेर के संदर्भ में, प्रकृति का संतुलन कितना जरूरी है, ठीक वैसे ही हमारे जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन कर

का संतुलन बेहद जरूरी है। हमारे ईंधन के जो साधन हैं, उनका उपयोग कैसे कम हो सके, कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को हम कैसे कम कर सकें, उस दिशा में भी प्रयास जारी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हमारे लिए ईंधन के रूप में महत्वपूर्ण है, पर इसकी मात्रा भी सीमित है। कार्बन उत्सर्जन के कारक भी है ये, तो उस पर लगाम लगाई जाए और वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाए। ये टास्क इस समय पूरी दुनिया के पास है। और अभी आज के ही समाचारों में हमने सुना कि गैर जीवाश्म विद्युत उत्पादन में 54% से अधिक की वृद्धि भारत ने की है। ये एक अच्छी खबर है। तो हमारे जैविक अपशिष्ट यानी कि ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाएं, तो अपशिष्ट प्रबंधन और पारंपरिक ईंधन के साधनों का उपयोग एक बेहतर तरीके से हो सकता है, और इसका प्रबंधन भी बेहद जरूरी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस ओर व्यवस्था करते हुए जैविक सामग्री जैसे कृषि अपशिष्ट, फसल, पेड़, घास, इन सब का ईंधन के रूप में प्रयोग हो और पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता कम हो, इस दिशा में कदम बढ़ा रही है। एक जर्मन इंजीनियर हुए हैं सर रुडोल्फ डीजल। इन्होंने पहली बार मूंगफली के तेल से मैकेनिकल इंजन चलाकर दिखाया था और संकेत दिए थे कि वनस्पति तेल भविष्य का जीवाश्म ईंधन का विकल्प बन सकता है। और आज का दिन यानी कि 10 अगस्त उन्हीं के सम्मान में विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य यही है कि जीवाश्म ईंधन जैसे कच्चा तेल, कोयला के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन हरित ऊर्जा के उपयोग के प्रति जागरूक किया जाए और उसके प्रयोग की ओर हम आगे बढ़ सके। भारत सरकार का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भी इस दिन को विशेष रूप से मनाता है। जैव ईंधन पर्यावरण अनुकूल होते हैं, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करते हैं, ऊर्जा सुरक्षा के कदम के रूप में भी हम इसे देखते हैं, जिससे देश की आयातित तेल पर निर्भरता कम होती है। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत एथेनॉल, बायोडीजल और बायो सीएनजी के रास्ते खुलते हैं। आज 10 अगस्त का दिन विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरी दुनिया की चिंता यही है कि पर्यावरण प्रकृति का संतुलन बना रहे, अपशिष्ट का बेहतर प्रबंधन हो, ईंधन का ऊर्जा के रूप में हम उपयोग कर सकें और पेट्रोलियम पर निर्भरता कम की जा सके। जी हाँ, इस कार्यक्रम में एक विराम और लेते हैं और फिर संगीत की ओर बढ़ते हैं।

0: मजबूरी। बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
1: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम, आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
0: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
2: और कार्यक्रम का यानी कि आज के क्रम का अंतिम नोट यही कि प्रकृति, वन्य जीव, जीव जंतु, कीट पतंगे सबका संरक्षण बहुत जरूरी है, तभी मानव जाति का विकास है, प्रगति है और उसका शुभ है। तो हम सबके शुभ के लिए ये बात जरूर ध्यान रखें कि संतुलन हमेशा बनाए रखें। इस मीठी धुन के साथ आपसे आज विदा लेते हैं।

0: आज सुबह ये कार्यक्रम अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की झरोखे सी।
1: एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी।

0: पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: ये थी मजरूह की रचना एस डी बर्मन के संगीत में। गायक थे किशोर कुमार और फिल्म चलती का नाम गाड़ी। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बैजू बावरा से। मोहम्मद रफी के साथ लता मंगेशकर की आवाज़ है, शकील का लिखा हुआ गीत और नौशाद का संगीत।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में ये गीत अभी आप तक पहुंचा फिल्म बैजू बावरा से। ये गाना मधुमती फिल्म से है।

मधुमती फिल्म का ये गीत था, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र ने गीत लिखा था, सलील चौधरी का संगीत था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर से कार्यक्रम यादों के झरोखे से। छोटा सा विराम, फिर लौटते हैं कार्यक्रम की ओर।

0: मजबूरी। बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
1: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
0: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
1: आपकी रक्षा में पूरी।
2: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों के झरोखे से। आप समझ गए होंगे ये गीत है फिल्म श्री 420 का। मनाडा के साथ लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत और संगीत शंकर जयकिशन का।

कार्यक्रम के अगले गीत में संगीत हेमंत कुमार का है, लता मंगेशकर की आवाज के साथ और शब्द रचना राजेंद्र किशन की है और फिल्म नागिन।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की झरोखे से। दास्तान फिल्म का ये गीत है, महेंद्र कपूर के साथ आवाज है आशा भोसले की। साहिर के शब्द और सलील चौधरी का संगीत।

दास्तान फिल्म का ये गीत था, महेंद्र कपूर और आशा भोसले के स्वर में। साहिर का लिखा हुआ गीत था, और जानकारी सुधारते हुए बताना चाहेंगे कि संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का था। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.2 MHz पर, सुबह के 8 बजने को हैं। अब जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली से और सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। तो आइए जुड़ें आकाशवाणी दिल्ली से।

0: कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्यघर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे

0: समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
2: संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: तिरंगा, हर घर तिरंगा।
0: महाराष्ट्र में देशभक्ति के उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। राज्य के कई जिलों में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीड में जिला प्रशासन, जिला खेल अधिकारी कार्यालय और विभिन्न खेल संगठनों ने मिलकर जिला खेल परिसर से एक तिरंगा रैली आयोजित की। बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका नेतृत्व करेंगे।
3: कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से आयोजित ये यात्रा सुबह 10 बजे जेपी गोलंबर से रवाना होकर कारगिल चौक पहुंचेगी। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर प्रखंड को जीविका के माध्यम से 4000 तिरंगे उपलब्ध कराए गए हैं। गौरतलब है कि तिरंगा यात्रा का बिहार में विशेष महत्व है, क्योंकि 11 अगस्त 1942 में बिहार के 7 वीर विद्यार्थी तत्कालीन पटना सचिवालय पर तिरंगा लहराने के क्रम में अंग्रेजों की गोलियों से एक एक कर शहीद हो गए थे। की शान के लिए जान की बाजी लगाने वाले इन छात्रों की याद में पटना विधानमंडल के सामने शहीद स्मारक बनाया गया है। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मणिपुर में भी हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया है। ये अभियान 17 अगस्त 2026 को समाप्त होगा। अभियान के दौरान नागरिक अपने घरों पर तिरंगा ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने इम्फाल पश्चिम जिले के सिंह गाजामी स्थित अपने आवास से अभियान में भाग लेते हुए लोगों से पहले खुद को भारतीय और फिर मणिपुरी मानने का आग्रह किया। दिल्ली मेट्रो रेल ने स्वतंत्रता की भावना का उत्सव मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम से सजी एक विशेष मेट्रो ट्रेन शुरू की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डीएमआरसी ने बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के तहत इस ट्रेन को तैयार किया गया है। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश करेंगी। भारत ने गैर जीवाश्मी ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। एक रिपोर्ट।
4: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है, जिसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है। ये 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। मंत्रालय ने कहा कि 2025-26 के दौरान देश में जीवाश्म ईंधन रहित बिजली उत्पादन क्षमता में 55.29 गीगावाट की वृद्धि हुई, जिसमें सौर ऊर्जा का 44.6 गीगावाट और पवन ऊर्जा के 6 गीगावाट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये 2014-15 में लगभग 191 अरब यूनिट से बढ़कर 2025-26 में 477 अरब यूनिट से अधिक हो गई है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: झारखंड में पुलिस ने विधानसभा परिसर के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है और रांची में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
5: झारखंड में कथित भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और झारखंड सरकार के बीच लगातार 3 दौर की वार्ता में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच, प्रभावित परीक्षाओं को रद्द करने, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा

0: प्रणाली में सुधार पर चर्चा हुई। सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने, टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं की विस्तृत जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर सरकार ने कहा कि मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में है, इसलिए इसे सीधे रद्द करना संभव नहीं है। उधर छात्रों ने सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा घेराव के अपने कार्यक्रम पर कायम है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसलुनिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित दो रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार श्री खुसलुनिन ने कहा कि भारत तक पहुंच प्रदान करने के लिए तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले रेलमार्गों का पता लगाया जा सकता है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 285 किलोग्राम भार उठाया। वियतनाम के वांग थाश ने 291 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले दो दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय है। मॉनसून टर्फ और निम्न दबाव क्षेत्र के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास में मौसम विभाग ने अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश होने का अनुमान है। भोपाल और उज्जैन संभाग में रात से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में तेज बारिश का दौर अगले दो दिन तक रह सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मूसलाधार बारिश की संभावना के मद्देनजर अधिकारी कमजोर तटबंधों और निचले इलाकों पर कड़ी नजर रख रहे हैं।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है, जबकि भद्रक और जाजपुर में बैतरणी, सालंदी और कानी नदियों के पानी ने गांवों, खेतों और सड़कों को जलमग्न कर दिया है। केंद्रापड़ा के कई इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। आईएमडी ने अगले 24 घंटे के दौरान कई उत्तरी और पश्चिम जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है और मौसम प्रणाली के कारण आने वाले दिनों में भी राज्य में बारिश जारी रहने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में आज बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। आज सावन माह का दूसरा सोमवार है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने श्रद्धालुओं और कांवड़ियों के लिए व्यापक व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
4: कांवड़ यात्रा ऐप श्रद्धालुओं और प्रशासन के बीच संवाद की सीधी कड़ी बन गया है। तीर्थयात्रियों को उनके मोबाइल फोन पर जरूरी जानकारी मिल रही है। वहीं नियंत्रण कक्ष और फील्ड अधिकारी एक साथ ही जमीनी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। ये ऐप श्रद्धालुओं को एक क्लिक पर यात्रा से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी उपलब्ध करा रहा है। ऐप में पूरे रास्ते का मानचित्र, मंदिर, शौचालय, चिकित्सा सुविधाएं और भोजन की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। श्रद्धालु शिकायत या आपात स्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए भी इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा

0: विभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राजेश सिन्हा भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद विशाल। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन सभी अखबारों के मुखपृष्ठ पर है। जनसत्ता की सुर्खी है, झारखंड में झुकी सरकार, जेपीएससी के सभी सदस्यों का इस्तीफा, 3 परीक्षाएं रद्द करने पर सहमति, प्रदर्शनकारी सीबीआई जांच पर अड़े। बिहार में शिक्षा परीक्षा सुधार के लिए बनेगी समिति, नवभारत टाइम्स लिखता है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण और छात्र केंद्रित बनाने के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की। संसद के मानसून सत्र को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका के अनुसार संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टूट सकता है गतिरोध, लोकसभा में आ जाएंगे 4 विधेयक, मेटा को भारतीय कानूनों का करना होगा पालन, दैनिक जागरण की खबर है। फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की टर्बुलेंस फ्लाइट के मुख्य पायलट का ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट संदिग्ध पाया गया, दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार परीक्षण की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार, जांच और परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने तक डीजीसीए ने उड़ान चालक दल के 2 सदस्यों को ड्यूटी से हटाया। डीमैट और म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ना ही होगा, हिंदुस्तान के बिजनेस पर है। बाजार नियामक सेबी के नए नियम 1 सितंबर से लागू होंगे।
0: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अर्जेस पीपल टू जॉइन हर घर तिरंगा मूवमेंट एंड होइस्ट द ट्राइकलर एट होम्स। इंडिया क्रॉसेस 300 गीगावाट्स ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी। Indian and US Navy's explosive ordnance disposal exercise to begin today at Southern Naval Command in Kochi. Russia proposes railway route to India to reduce dependence on strategically important maritime routes like Strait of Hormuz. And Maharajan Arumuga Pandian clinches silver medal in men's 65 kg category at Asian Junior Weightlifting Championships in Tashkent. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to participate enthusiastically in the Har Ghar Tiranga movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Viksit Bharat. In a social media post, Mr. Modi said, "Our tricolour is our pride and a constant source of inspiration to always give our best for the nation." The Prime Minister said he is glad that this year's efforts are dedicated to Vande Mataram and that too at a time when we are marking its 150th anniversary. In his Man Ki Baat program on Akashvani last month, Mr. Modi urged people to hoist the tricolour at homes.
3: पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है, अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है।
2: More on this in this report.
4: Ghar ghar tiranga, har ghar tiranga.
5: The Ministry of Culture has said the Har Ghar Tiranga campaign this year would seek to bring the spirit of patriotism to streets and homes across the country through Tiranga Yatras, Tiranga Rallies, Tiranga Concerts and mass singing of Vande Mataram. The Ministry said the 150th anniversary of Vande Mataram would provide an opportunity

आकाशवाणी बिलासपुर से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अमराई। छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं गंगाबाई और साथ ही हम सुन रहे हैं कौशल कुमार भानु और उर्मिला देवांगन को। आइए अब सुनते हैं गंगाबाई और साथियों को।

0: मजबूरी।
1: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
0: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम, आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
1: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप

कार्यक्रम अब्राई में ये थी गंगा भाई और साथी। कार्यक्रम का आखिरी गीत कौशल कुमार भानु और उर्मिला देवांगन के साथ।

0: गीता कार्यक्रम अमराई हमने पेश किया आकाशवाणी बिलासपुर से। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 9 बजने को हैं, कुछ ही देर में हम जुड़ेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों से।
1: चिन्मयी श्रीपदा की आवाज में साथ दिया हेशम अब्दुल वहाब ने। गरिमा उबरा ने इसे लिखा था, हेशम अब्दुल वहाब का संगीत। और अब कार्यक्रम में वक्त है कंतराल का।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। साथियों, मुस्कान वो खूबसूरत एहसास है जो बिना कुछ कहे दिलों तक पहुंच जाता है। इसे बांटने में कोई खर्च नहीं होता, मगर किसी का पूरा खूबसूरत दिन बन सकता है। यानी कि आपकी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है। तो कभी कभी यूं ही बेवजह मुस्कुरा लेना चाहिए किसी को देखकर, ताकि उनका दिन बन जाए और आपकी मुस्कान से आपका भी दिन अच्छा शुरू हो जाए। तो चलिए इसी के साथ सुनते हैं भूल भुलैया 3। इस फिल्म का गीत सोनू निगम की आवाज, समीर की शब्द रचना और अमाल मलिक और प्रीतम का संगीत।

भूल भुलैया 3 फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आइए अब आपको सुनवाते हैं धमाल 4। इस फिल्म का गीत आवाज संजू राठौड़ की। रश्मि विराग और संजू राठौड़ ने इस गीत की रचना की है, तनिष्क बागची और संजू राठौड़ का संगीत।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं एमी विर्क और बी प्राक की आवाजों में योद्धा फिल्म का गीत। जानी ने इसके बोल लिखे हैं और बी प्राक और आदित्य देव का संगीत।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए अब आपको सुनवाते हैं सितारे जमी पर। इस फिल्म का गीत सिद्धार्थ महादेवन और शंकर महादेवन और दिव्या कुमार की आवाजों में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं शंकर एहसान लॉय का संगीत।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं तू झूठी मैं मक्कार। इस फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजों में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, प्रीतम का संगीत।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा हुजूर।
3: पति पत्नी और वो दो, इस फिल्म का गीत सुनिए उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, समीर की रचना, आनंद मिलिंद का संगीत।

Hey, I'm not.

पति पत्नी और वो दो इस फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियाँ रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुनाया करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को दे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

फिल्म संगीत के चाहने वालों में बिरला ही कोई होगा जिसने महल फिल्म का ये गीत ना सुना होगा। हम बात कर रहे हैं 40 के दशक के मशहूर संगीतकार खेमचंद प्रकाश की। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से कलाकार ऐसे हुए हैं जिन्हें समुचित सम्मान और प्रसिद्धि मृत्यु उपरांत मिली है। खेमचंद प्रकाश उन्हीं में से एक थे।

0: हेमचंद प्रकाश का जन्म 12 दिसंबर 1907 को राजस्थान के सुजानगढ़ में हुआ था। न केवल संगीत बल्कि नृत्य की भी आरंभिक शिक्षा उन्हें अपने पिता से मिली, जो राज दरबार में ध्रुपद गायक और कथक नर्तक थे। किशोरावस्था में ही खेमचंद प्रकाश को पहले बीकानेर और उसके बाद में नेपाल के राज दरबार में गायक कलाकार के रूप में नियुक्ति मिल गई थी। आगे किस्मत उन्हें कोलकाता ले आई, जहां वे सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माण कंपनी न्यू थिएटर्स में नियुक्त हुए। 1935 में बनी फिल्म देवदास के संगीतकार तिमिर बरन के सहायक के रूप में उन्होंने काम शुरू किया। 1938 की फिल्म स्ट्रीट सिंगर के लिए खेमचंद प्रकाश ने एक मजाहिया गीत भी गाया।
1: और चोट देखो आई।

0: अभी फिर जाऊं, तुम ठहरो अभी ले आओ।
1: क्या भूख से मैं मर जाऊं, ना कच्चा तुझे जमाऊं, ना माकूल रहे की धूल हुए चंदूल।
0: अब देर न होगी बच्चों, तुम बच्चो बच्चो।
2: उसके बाद खेमचंद प्रकाश मुंबई आ गए। शुरुआत हुई 1939 में। सुप्रीम पिक्चर

और फिर बहुत जल्द रणजीत मूवीटोन फिल्म स्टूडियो के नियमित संगीतकार के रूप में खेमचंद प्रकाश नियुक्त हुए। उस शुरुआती दौर में रणजीत मूवीटोन की फिल्में थीं दिवाली, होली, परदेसी, फरियाद इत्यादि। उन दिनों खेमचंद प्रकाश के गीतों में ज्यादातर स्वर होता था खुर्शीद का। इस जोड़ी ने 40 के दशक के आरंभ में बहुत से मशहूर गीत दिए। 1943 में बनी रणजीत स्टूडियो की फिल्म तानसेन जबरदस्त हिट हुई।

1948 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आई जिद्दी। इस फिल्म में एक गायक के रूप में किशोर कुमार को सबसे पहला अवसर दिया संगीतकार खेमचंद प्रकाश ने। जिद्दी का ही एक और गीत जो लता जी ने गाया था संगीत प्रेमियों द्वारा।

और फिर 1949 में आई फिल्म महल। महल के पहले बाजार में फिल्मी गीतों के जो रिकॉर्ड्स मिलते थे, उन ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स पर फिल्म की कहानी के उस गीत को पर्दे पर गाने वाले पात्र का नाम हुआ करता था। महल फिल्म का ये गीत आएगा आने वाला रिकॉर्ड पर इन बोलों के आगे नाम लिखा था कामिनी। ऑल इंडिया रेडियो से ये गीत प्रसारित हुआ। बहुत से सुनने वालों ने रेडियो के दफ्तर में फोन करके जानना चाहा कि ये आवाज किसकी है, और फिर रेडियो से गायिका का नाम प्रसारित हुआ, लता मंगेशकर। संगीतकार खेमचंद प्रकाश। इस गीत को और लता जी को बेशुमार शोहरत हासिल हुई, मगर अफसोस महल के रिलीज होने से 2 माह पूर्व 10 अगस्त 1950 को संगीतकार खेमचंद प्रकाश 42 वर्ष की अल्पायु में इस संसार से विदा हो चुके थे।

0: विविध भारती के कार्यक्रमों को हम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी रायपुर से जुड़ेंगे और सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: हमारा अगला कार्यक्रम होगा, ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर आज प्रदेश में बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा भारत के गर्व का प्रतीक है और हर नागरिक के लिए देश के प्रति अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने की एक निरंतर प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान वंदे मातरम को समर्पित है, क्योंकि देश राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूर्ण होने का पर्व मना रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा तिरंगा हमारा स्वाभिमान है और देश के लिए हमेशा अपना सर्वस्व अर्पण करने की अटूट प्रेरणा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। पार्टी द्वारा 15 अगस्त तक हर घर, प्रतिष्ठान और कार्यालयों में तिरंगा फहराने के लिए जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। वहीं राजधानी रायपुर में आज इंडोर स्टेडियम से सुभाष स्टेडियम तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें अनेक जनप्रतिनिधि सहित आम नागरिक शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से भारत के खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर आज प्रदेश में 1 से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चों और किशोर किशोरियों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। इसके लिए शासकीय और निजी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा अन्य संस्थानों के माध्यम से दवा खिलाने की व्यवस्था की गई है। कोई बच्चा आज किसी कारणवश दवा नहीं ले पाता है तो उसे मॉपअप दिवस 17 अगस्त को कृमिनाशक दवा खिलाई जाएगी। इस अभियान के तहत प्रदेश में 1,10,00,000 बच्चों और किशोरों को एल्बेंडाजोल की खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश के सूरजपुर और बलरामपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, जशपुर, कोरिया, कोरबा, सरगुजा, बस्तर और बीजापुर सहित 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के बाकी जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस बीच लगातार बारिश के चलते मुंगेली जिले में मनियारी और आगर नदी उफान पर है। 19 गांव से सड़क संपर्क टूट गया है। SDRF ने राहत और बचाव कार्य चलाकर बाढ़ में फंसे करीब 200 लोगों को सुरक्षित राहत शिविर पहुंचाया है। रायपुर के पंडरी इलाके में स्थित माता सुंदरी पब्लिक स्कूल में तृतीय सब जूनियर, जूनियर और सीनियर राज्य स्तरीय गतका चैंपियनशिप का आयोजन

0: किया गया। कल हुए इसके समापन समारोह के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री अरुण साव थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गतका हमारी संस्कृति और परंपरा से जुड़ा प्राचीन खेल है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर आज प्रदेश में बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित भीमसेन जोशी का।
2: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित कर रहे थे। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजे ही लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम तुहर गोट हमर गीत। प्रस्तुति है मानस तिवारी की।

0: तुम्हार गोठ हमर गीत कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है।
1: हेलो,
0: तुम्हार गोठ हमर गीत कार्यक्रम ले हम बोला थन।
1: हाँ भैया नमस्कार। क्या
0: कौन संगी बोला था, कहाँ ले बोला था भाई?
1: योगेश जांगड़े बोला था भैया, सिरवा बांधा बेमे करा ले।
0: नमस्कार योगेश भाई, आपके बहुत बहुत स्वागत है हमर कार्यक्रम तुम्हार गोठ हमर गीत मा। सुनावा गाँव में का चलत है योगेश भाई?
1: गाँव में तो सब भैया खेती बाड़ी के काम हवे, निंदाई कोड़ाई है, खाद वगैरह दे गई है। हाँ,
0: पानी की क्या स्थिति है आपके गांव में?
1: पानी थोड़ी बहुत कम हवे भैया,
0: अभी कम है।
1: हाँ, ट्यूबवेल वगैरह चालू करे हवन तो जैसे तैसे काम चलत है, और दो चार दिन तक नहीं आवे तब वो थोड़ा से उसमें सहायता हो जाता है। अभी तो सब धाने लगाए हम भैया, दूसरा फसल नहीं लगाए हैं अभी।
0: कौन वाला धान लगाए हैं योगेश भाई?
1: सरना लगी, सरना लगाए हैं भैया।
0: सरना ना, कौन पद्धति ले लगाए हैं, बाऊ पद्धति ले की रोपा ले?
1: हमन का है भैया, शुरू में ओनारी करत आन, अब ये दरी का हुई से ओनारी करे ना आधा खेत ओनारी हुई, चोकर बाद पानी बिकट गिरीस ना तो हम ओनारी के काम हम नहीं बन पाई, तो फिर ओला जरैया मटा के इसने जरैया छींचे गए। हाँ, तो ये दोनों तरीका ले करे हम, रोपा तो नहीं लगाए हम हमन है। हाँ,
0: बीच में बहुत पानी हो गए रहीस नहीं?
1: हाँ, लबालब हो गए रही।
0: हाँ, एकदम अतकहा पानी हो गए रही।
1: हाँ
0: है ना योगेश भैया, सुनावा हमार कौन कौन कार्यक्रम ला पसंद करता?
1: तुम्हार गोठ है, आपकी पसंद है, युवा जगत है, सब कार्यक्रम बढ़िया लगते भैया।
0: हमन से जुड़े रहा, हमार कार्यक्रम ला सुनत रहा योगेश भाई। हाँ। आप मन हमला फोन लगाए, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: हेलो।
2: हाँ हेलो,
0: तुम्हार गोठ हमर गीत कार्यक्रम ले हम।
2: मैं धमनी राजिम ले समेलाल धीवर बोला था।
0: का हाल चाल है समेलाल भैया, आपके गांव
2: धमनी? अच्छा सर भैया, हमार गांव को तीस अब अभी का है, धान पान बुआही दे, पानी गिरत है, अब बोला चाल बोला।
0: कौन वाला धान लगाए है समेलाल भाई?
2: वो सरना धान लगाने भैया।
0: सरना न, और गाँव में का चलत है अभी आपके धमनी मा?
2: धमनी में भी चलत है, सावन मास के अभी पूजा चलत मंदिर में।
0: राजिम ले कत्ता दूरिया पड़ते है आपके गाँव?
2: राजिम ले ना, हमारे यहाँ धमनी है 7 किलोमीटर में तीर में बसे है।
0: राजिम में तो बहुत बढ़िया राजीव लोचन मंदिर भी है।
2: हाँ,
0: और
2: हाँ, बहुत हाँ जी,
0: बढ़िया संगम भी है ना?
2: हाँ, संगम भी,
0: और
2: हाँ,
0: बहुत पवित्र तीर्थ है, और उन्हें ले 5-7 किलोमीटर है आपके गाँव?
2: 5-7 किलोमीटर है हमारे गाँव।
0: तो धमनी ही पंचायत है?
2: हाँ, पंचायत है, 3 गाँव थे, अभी जनपद है।
0: अच्छा, तो कौन कौन गाँव आते जनपद में आपके?
2: हमारे जनपद में आते किरवई,

0: धमनी अरन
1: अच्छा
0: सिंहेश्वर उत्तराखंड है जी। हमारा मुख्य धंधा कृषि है जी।
1: हमर ग्राम सभा किसान वाणी कार्यक्रम ला सुनता आप मन?
0: हाँ सुनता जी।
1: कैसे लागते हमर कार्यक्रम?
0: वाह ओकर से थमन फायदा लेता न जी, फायदा लेता सुनता था कृषि के बारे में ना सुनत रहता भाई।
1: चलो बहुत अच्छा लगी से जान के कि आप हमर कार्यक्रम के माध्यम से फायदा उठा था ओला सुना था। समय लाल भैया बहुत अच्छा लगी से आपले गोट बात करके। आप मन हमारा फोन लगाए, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: नमस्कार दादा, मैं चिरमिरी कुरासा कालजी से इंद्रभान सिंह बोलत हूँ।
1: इंद्रभान भैया का हाल चाल है सुनावा?
2: ठीक है दादा, मैं बढ़िया हूँ, आप भी अच्छा है। और एकदम मौसम उलट पुलट हुई से दादा, तो छत्तीसगढ़ में 6 जिले में पानी गिरे का पूरा संभावना है। पूरा सही बताई दादा। इस मौसम में जैसे उफान उफान आते, खूब पानी बहाव आते, तेज बहाव आते, तो गाड़ी बचाव के चक्कर में खुद बह जाते हैं, अपन भी बह जाते हैं। उसमें नदी नदी नाला रहते, पानी खूब बहते, उनमें से पार करते तो अपन जान जोखिम न डाले दादा, कहें कि हो सकते बह जाए तो पूरा मातम छा जाए, तो उस समय जान जोखिम में ना डाले दादा, ये सब पानी में पार ना करे।
1: बरसात के समय में नदी नाला उफान मरे थे, बहुत झी लैकन जेन है वो पानी ला देखे पर वो नदिया कति बांधा कति जाते। ऐसे मौसम में का है जेन आस पास के जमीन है ओहू में फिसलन रही थे, कीचड़ रही थे, काई रही थी, तो मैं पैर फिसले के और दुर्घटना घटे के आशंका रही। तो ऐसे मौसम में हमला चाहे कि यदि हम कहूँ घूमे ला जात हन नदी के बांधा के तीर तखार मा, तो चेत करके राखी कोनो दुर्घटना हमार संग झन हो पाए।
2: तो बात विशेष ध्यान दे, खेत में रोपा उपा करत है या धान लगाते हैं, तो जैसे पानी वानी आ बिजली चमकत है, हो सकते गाज मार जाए, तो वहाँ से पानी गिरी के पहले बूंदा बूंदी होते हट।
1: ऐसे मौसम जेन है ये पानी बारिश के मौसम मा अपन आप के स्वास्थ्य के ध्यान रखना और संगे संग कोनो प्रकार के दुर्घटना मत घट पाए, ये बात के ध्यान रखना बहुत जरूरी रही।
2: खासकर ग्रामीण भाई मन प्रति औरत मन और ये मन सब जाते हैं, गैया चराए जाते हैं, जंगल में जाते हैं, धान का काम करते हैं, तो पानी जैसे बूंदा बूंदी हो तो तुरंत वहाँ से भाग जाए, जब पानी गिरे थे गाज मारे थे तो वो खतरा।
1: बाहर माँ बिजली के पैर फिसले के पानी के खतरा रही थे, और घर भीतर बिजली के जेन उपकरण है हम जब ओला उपयोग करी तो हमार हाथ सूखा रहे, जेमा करेंट के शिकायत मत आ पाए।
2: जंगल कति कहीं पर पेड़ पर रहते तो पेड़ के नीचे भी खड़ा न रहे, हो सकते गाज मारे।
1: बहुत अच्छा लगी इंद्रभान भैया आप ले गोट बात करके। आप मन हमला फोन लगाए, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
2: राम
1: राम। अही गोट बात के संग आवाज सुनी नवलदास मानिकपुरी और संगवारी मन के गाए एक गुरतुर गीतला।
3: रात उन सपना में आए गोरी वो

0: मिला।
1: हेलो,
0: तुम्हार गोट हमार गीत कार्यक्रम ले हम बोला थन।
1: हाँ जयराम भैया, मैं महादेव दिवाकर बोला था जिला मुंगेली ले।
0: हाँ महादेव भैया, कौन गांव पड़ते आप मन के?
1: मोर गांव फरहदा पड़ते भैया, मैं जरहा गांव के पास।
0: काबू तक करता आप मन दिवाकर जी?
1: पढ़ाई करता हूँ भैया, अब फिर हाल ऐसे पार्ट टाइम जॉब करता हूँ।
0: तो का के पढ़ाई करा था अभी?
1: PSC के तैयारी करा था भैया, नेट के भी पेपर दिला रहे हूँ, हिंदी में MA करे हो तो। हाँ तैयारी चलते है, और आजकल तो जाना था मारा मारी जो हवा है के अने कंपटीशन के है ना।
0: बहुत सही बात कहे है।
1: हाँ, सबे ला नौकरी मिल जाए ऐसे भी जरूरी नहीं है के अपन पैर में खड़ा होना, अने खुद के स्वयं के मेहनत करना भी जरूरी है। नौकरी के पीछे भागबे तो सबे मिलना जरूरी भी नहीं है।
0: खर अलावा जाप का कर था अपन, कहाँ बूता करे जा था?
1: ए मुंगेली ही आस पास थोड़ा अने दूर बढ़ते 6 किलोमीटर घर से।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: हमार कार्यक्रम के आनंद
1: रेडियो सुनता हूँ, मोबाइल से सुनता हूँ रेडियो। काम चलत रही थे और रेडियो मोबाइल से ना AIR जो खुले हुए ऐप से वो खोल रहे हूँ और नेट से चलत रही थे और सुनत रही था और दोस्त मतलब ही सुनात रही था और साथ साथ रेडियो से ज्ञान बहुत ज्यादा ज्ञान मिलते। मैं तो 2007 से सुनत हूँ। मोर दोस्त है मनोज यादव, पुष्पराज साहू और सब जिला हम मतलब मस्त गाना सुना देवे तो हम सुनबो एक साथ सब दिन काम करथन। और हमार पूरा दोस्त यार और मोर तरफ से सबके तरफ से हरेली तिहार के आकर स्वाणी परिवार ला बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं।

0: बहुत अच्छा लगी इस महादेव भैया आप ले गोट बात करके, आप मन हमला फोन लगाए, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: हेलो, तुम्हार गोट हमार गीत कार्यक्रम ले हम बोला थन।
2: राम राम जय जोहार भैया।
0: राम राम भैया, कौन संगी बोला था, कहाँ ले बोला था भाई?
2: अड़ानंद घाट ले माखन वर्मा बोला था भैया।
0: का हाल चाल है माखन भैया आपके गांव अड़ार के?
2: खेती किसानी काम लग रहे भैया, रोपा के काम हो गए।
0: हाँ।
2: और कल के पानी है भैया, बहुत बारिश हो है, पूरा नदी नाला उफान में है भैया।
0: सही बात कहा, ऐसे मौसम में नदी नाला जिन्हें वो उफान में रही थे और संगे संग बहुत कीचड़ और फिसलन भरे, तो हम यदि नदी नाला के तीर में जाए तो ये चीज के हमला चेत करके रखना चाहिए कि हमार पाँव झन फिसलाए और कोनो प्रकार की दुर्घटना झन हो पावे।
2: हाँ भैया।
0: और सुनावा माँ का?
2: अब हमार छत्तीसगढ़ के पहली तिहार किसान मन के आने वाला है रैली और 15 अगस्त के पूरा आकाशवाणी परिवार और हमारे जतका श्रोता भाई बहन है उमन लगा बधाई भैया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा फहराना है भैया।
0: हमार स्वतंत्रता दिवस जिन्हें 15 अगस्त, तो देशभक्ति के परिचय दिए बर एक बहुत अच्छा माध्यम है हमार ध्वजारोहण और हर घर तिरंगा अभियान जिन्हें, ये हमला हमार देश ले हमार स्वतंत्रता ले हमला जोड़ थे, तो हम सब ला एमा बढ़ चढ़ के भाग लेना है और अपन घर मा तिरंगा फहराना है। बहुत अच्छा लगी माखन भैया आप ले गोट बात करके, आप मन हमला फोन लगाए, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप मल्ला हमार फोन कॉल शामिल करे बर बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
0: आवा सुनी लक्ष्मण मस्तूरिया के गाय एक उड़तुर गीतला।

0: हेलो,
1: राम राम मानस भाई जी।
0: राम राम। कौन संगी बोला था, कहाँ ले बोला था,
1: चेकअप बड़ा कम लड्डी है नारवानी
0: का हाल चाल है नारवानी जी, सुनावा।
1: बम बड़े हाल चले। सावन के महीना में क्या होता है, भरेले छाए हुए है हमारे घर के आस पास। बम खेत है तो खेत में तो किसान भिड़ गए अभी।
0: हाँ, खेती किसानी के काम जोर पकड़ ली, और संगे संग शिव आराधना के पर्व भी हर जगह बहुत अच्छा से हो थे, और सावन के आनंद है वो सबो जी उठावा थे।
1: कोई जो लोग आओ, मैंने कोई मंदिर में नहीं जाया, लेकिन एक महीना पूरा शिव मंदिर जाते हैं, खासकर सोमवार को तो ज्यादा भीड़ रहती है मंदिरों में।
0: सावन के महीना जेन है वो शंकर जी ला बड़ा प्रिय
1: समर्पित
0: है,
1: है
0: और
1: बिल्कुल।
0: शिव जी ला समर्पित है, तो सावन के जिन महीना है एमा शिव आराधना के विशेष महत्ता माने गए।
1: सही बात है। लेकिन हमारे घर के पास में मंदिर है, मैं तो रोज जाता हूँ। 3-4 साल हो गए, कोई दिन नहीं है कि नहीं जाऊँ।
0: अच्छा
1: सबो
0: बात
1: दिन जाता हूँ,
0: है।
1: मत्थाटे के बाद में खाना खाता हूँ।
0: बहुत अच्छा बात है। नारवानी भैया, हमार कौन कौन कार्यक्रम आप ला पसंद आते?
1: कार्यक्रम बढ़िया था। इनर की गूंज है, हेलो आपकी पसंद है, माटी की स्वाद है आपका, आपकी पसंद है, चिट्ठी मिली है, सब कार्यक्रम इस बढ़कर एक है। सब कार्यक्रम सुनते मजा लेते, दिन कैसे कट जाते पता नहीं चलते।
0: सही बात कहे, सूचना शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य लेकर ही आकाशवाणी जिन्हें वो अपन कार्यक्रम प्रस्तुत करते, और ये बहुत अच्छा बात है कि आप मन ओखर से लाभ उठावा था। नारवानी भैया,
1: बिल्कुल
0: आप मन
1: सब
0: हमरा
1: कहते आकाशवाणी कहते हैं, बहुत जनता बहुत जन सुख है
0: शुभ वाणी लाभ वाणी और सबो के आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी।
0: बहुत अच्छा लगी नारवानी भैया आप ले गोट बात करके, आप मन हमला फोन लगाए, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: हेलो,
2: राम राम मानस भाई।
0: राम राम।
2: मैं बोलत रहे भाई, निवी सुरता भाटा पर दतरंगीले हीरो राम साहब बोलत रहे मानस भैया, बहुत टाइम से लगा रहे मानस भैया, लगता लगी गया।
0: का हाल चाल है हीरो भैया दतरंगी के, सुनावा।
2: अब हाल चाल तो सब ठीक है मानस भाई, खेत खार काम लगे है ना, का है भैया हमारे छत्तीसगढ़ के का है भरली रावत है ओकरे तैयारी में लगे भैया, साथ साथ का है हमारे पूरा एक मिनट रामायण गाथन भैया हमारे गाँव भैया दू जगह रामायण।
0: अच्छा, तो ये सावना ही रामायण चलते आपके गाँव में?
2: हाँ, दू ठर मंडली है भैया गाथन भैया, अपन अपन महामायण चलते एक ठोका मंदिर में चलते।
0: कौन समय ले शुरू होते आपके गायन जेन है?
2: ये शाम के बैठन भैया 5 बजे से बैठन ते ना 7-8 बजे तक गाथन भैया।
0: बहुत अच्छा। कत्ता जी रहे थे मंडली माँ?
2: अब ऐसे एक आया 5-7 जन रहते ना भैया, तबला वाला पेटी वाला गवैया पूरा सब रहते ना भैया।
0: गाँव के मन के जुड़त हो है उमा?
2: हाँ, पारा प्लस की दुताधन सुनते ना भैया, बैठ के सुनते दुताधन पारा प्लस दाई माई मन।
0: बहुत अच्छा बात है कि आपके गांव में रामायण के पाठ आप मन करता, रामायण के गायन करता। हीरू भैया, हमार कौन कौन कार्यक्रम लाप पसंद करता?
2: मानस भैया इसे सुबह 6 बजे के सब बोल सुनता हूँ मानस भाई, मानस गानों सब सुनता भाई, खास करके तुम्हारे कार्यक्रम चलते फोन पर चला लगा है तुम्हारे गोट हमार गीत यू अच्छा लगते भैया। कौन कार्यक्रम बताओ है मोर सब अच्छा लगते मानस भाई, तो ही मन तो मोर घड़ी मोहला था।
0: नहीं, बहुत अच्छा लगी हीरो भैया ये जान के कि आप हमला सुनता और कार्यक्रम के आनंद लेता। संगे संग अभी हर घर तिरंगा अभियान चलाए गए है।
2: हाँ ना भाई, हाँ।
0: 15 अगस्त जिन्हें हमार राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस है।
2: हाँ ना भाई।
0: तो हर घर तिरंगा अभियान के उद्देश्य है हर एक भारतीय ला अपन देश ले अपन स्वतंत्रता ले जोड़ना।
2: हाँ ना भाई, हमरो काम ऐसे मनावा थे भैया, आज चालू है घर घर तिरंगा।
0: हर घर तिरंगा अभियान मा हमला शामिल होना है, अपन घर मा झंडा फहराना है, और राष्ट्र के प्रति अपन जेन भाव है ओला प्रकट करता है।
2: हाँ ना मानस भैया, राष्ट्रीय तिहार का आप जब बहुत घोषक में लगा रहा बधाई भाई मानस भैया मोर तरफ से।
0: हाँ भैया धन्यवाद। हीरो भैया, आप मन हमला फोन लगायो ते सुघर गोट बात करियो, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
2: राम राम, जय जोहर भाई मानस।
0: जय जोहर। तुम्हार गोठ हमार गीत कार्यक्रम में आपके स्वागत है। कौन संगी बोला था, कहाँ ले बोला था भाई?
3: मैं रोहासी ले डगेसर राम साहब बोला था भैया।
0: का हाल चाल है रोहासी के, सुनावा डगेसर।

0: भैया।
1: अब का भैया सब जैसे पूछा काम सब पूरा व्यवस्थान रोपा चलाई काम चला भैया यही सब व्यवस्थान भैया अभी मैं कि तुम्हारे बैठा मरीज में लगा लेना कि लगा भैया बहुत देर के ट्राई करा था।
0: हाँ तो
1: गलत गए भैया।
0: हाँ तो रोहासी माँ हर घर तिरंगा अभियान की काय स्थिति है डगेसर भैया?
1: हाँ हाँ चलत भैया वो कर रहे चलत अभी हाँ तैयारी भी चलत है हर घर तिरंगा के संबंध में हाँ।
0: तो हमला सब ला अपन अपन घर में झंडा फहराना है ना?
1: हाँ हाँ सही बात भैया
0: अपन देशभक्ति के भावना जेने ओखर परिचय हमला देना है
1: भैया। हाँ हाँ सही बात भैया।
0: और सुनावा कौन वाला धान लगाए है डगेसर भैया?
1: अब का भैया हम सब ये सरना है और एक फोर नाइन है और सब हाइब्रिड के भी है धान सभी लगाए भैया हमन है।
0: आजकल नवा नवा तकनीक आ गए है आप मन की क्या स्थिति है अभी?
1: अब का भैया हम तो रोपण नहीं रखे हम बहुत पद्धति से रखे ना सब ब्यासी घलो चलते हमारे यहाँ अब कई जन ब्यासा घलो भी चलवा देते सब ऐसे है भैया।
0: बहुत अच्छा लगी आप ले गोट बात करके आप खेती किसानी काम में जुटे रहा संगे संग हमार कार्यक्रम के आनंद लेते रहा डगेसर भैया आप मन हमला फोन लगाए आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद भैया धन्यवाद फोन लेकर आपको मन ला जय जवाहर भैया।
0: आवाज सुन लेथन आशाराम पोरते असंगवारी मन के गाए एक और तुर गीतला।

कार्यक्रम निर्माण में तकनीकी सहयोग दिहीन सौरभ केशरवानी, कार्यक्रम संयोजन करीन डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन और एकरे संग तुम्हार गोठ हमर गीत कार्यक्रम ले अनुमति देवा मानस भाईला जय जोहार।

तुहर गोठ हमर गीत। ये फोन इन कार्यक्रम अभी आपने सुना, प्रस्तुति थी मानस तिवारी की। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम आपकी पसंद का पहला गीत अभी आपने सुना फिल्म गुरु से। श्रेया घोषाल, उदय मजुमदार और साथियों की आवाज़ें थी। गुलजार का लिखा हुआ गीत था और एआर रहमान का संगीत था। और जो फरमाइशें हम तक पहुंची थी वो ये हैं, ग्राम रसेड़ा कलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार साहू, कीर्ति साहू, संध्या दिकेश कुमार साहू, वासी डॉली, पूर्वेश साहू, डगेसराम साहू, नूतन, गौरव और घनश्याम हमें रोहासी पलारी से लिखते हैं। हटौत बाजार लाहौत से हैं कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल, राजकुमारी पटेल। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा हैं। भाटापारा से श्याम रतन मुंदड़ा, रचनाकार मुंदड़ा, और रावण भाटा भाटापारा का से ही हैं बबला यादव, लिखी राम यादव, कमलेश्वरी यादव, अनिल कुमार, अंजुलता, आदि कुमार और कृष श्रीवास्तव हमें शिवाजी चौक राजिम से ये भेजते हैं। और आपके साथ हैं अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशी लाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा देबू और लबी श्रीवास्तव। बसीपार से हैं शिवनारायण नामदेव, सविता देवी, रामप्रसाद, आंचल, चंचल, चांदनी, विनय कुमार और मनेज कुमार कंवर। शांतिनगर पाली से हैं विष्णु सिंह कोराम, श्रीमती संतोषी कोराम, कुमारी आरती, पूर्वा, प्रतिभा, योगेश, नीलेश, चंद्रशेखर एवं इनका समस्त कोराम परिवार। आइए कार्यक्रम के अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत जिसे हमने लिया है CID फिल्म से। गीता दत्त, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, जानिसार अख्तर ने गीत को लिखा है और OP नैयर का संगीत है। और हमारे इस गीत के लिए फरमाइश करता ये हैं, दतरंगी भाटापारा से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार, उत्तम कुमार कौशिक, बिहारी लाल, हरीश कुमार, शिवम कुमार कौशिक, बावली मर्राकोना से हैं रामचंद माखीजा, श्रीमती सविता बेबी, स्वाति माखीजा, पूजा, शरद छुटकी, ये हैं बनियापारा धमतरी से, नोखेलाल वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारसवर्णी वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं, इंदिरानगर रायगढ़ से हैं शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम राजा, दिलीप चंदन, चोवाराम यदून, निखिल चंदन, वसुंधरा प्रांजल, यह हमें पूड़ी भाटा कलतरा से भेजते हैं। इनके साथ बिरगांव तखतपुर से हैं जेमुन कोल, दिलीप रामायणी और प्रांजल कौल। आइए आप सबकी पसंद पर CID फिल्म का ये गीत आपको सुनवाते हैं, गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं।

0: सीआईडी फिल्म का एक गीत अभी आपने सुना, गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, जानिसार अख्तर का लिखा हुआ गीत और ओपी नैयर का संगीत। आकाशवाणी बिलासपुर से आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और कार्यक्रम के बीच में छोटा सा अंतराल और आपको दे दें आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: यातायात संबंधी दैनिक प्रसारण ट्रैफिक अपडेट साफ बिलासपुर सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को नमस्कार। उमाशंकर पांडे का कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज सावन माह का दूसरा सोमवार अर्थात भगवान शंकर जी की आराधना का पर्व है। देवाधिदेव महादेव जी की पूजा अर्चना का सर्वत्र माहौल है। सभी शिव मंदिरों में भक्तों की कतार दिखाई दे रही है। शहर के तमाम बड़े शिवालय जिनमें अष्टमुखी शिव मंदिर मसानगंज, नंदेश्वर मंदिर सरकंडा, भगवान शंकर जी का प्राचीन मंदिर मेलापारा चाटीडी, भगवान मंदिर सरकंडा सहित प्राय सभी मंदिरों में शिव जी के जय घोष के साथ बड़ा जनसैलाब नजर आ रहा है। साथ ही इन मंदिरों में आने वाले सभी भक्तों से अनुरोध है अपने वाहन सड़क में न रखकर किनारे व्यवस्थित सुरक्षित रखें, तथा भक्तगण यह भी ध्यान दें कि आपके कारण सड़कों में आवागमन किंचित मात्र भी बाधित न हो। सभी वाहन चालकों से भी अनुरोध है मंदिर के आसपास धीरे चलें

सुरक्षित चले। ऐसे बड़े मंदिरों में प्रायः पुलिस के जवान लगाए गए हैं। सुगम और सुरक्षित आवागमन हेतु इनके संकेतों का पालन करें। साथ ही सभी मंदिर प्रबंधन से भी विशेष अनुरोध है कि एक साथ एक ही दिन सभी मंदिरों में व्यवस्था हेतु पुलिस बल लगा पाना कठिन है, अतः अपने स्तर पर भी आसपास सुगम यातायात के लिए व्यवस्था करें। इसके साथ ही शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र सहित संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, वाइज हॉस्टल सिम्स के सदस्यों के द्वारा अपनी मांगों के संबंध में आज रैली निकाले जाने की योजना है। इस संबंध में आज प्रातः 10 बजे सिम्स हॉस्टल से रैली प्रारंभ होगी, जो सिम्स चौक, देवकी नंदन चौक, मेन पोस्ट ऑफिस, नेहरू चौक होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा। इसके पश्चात यह रैली वापस नेहरू चौक, देवी नंदन चौक, अरपा रिवर व्यू होते हुए सिम्स पहुंचकर संपन्न होगी। रैली के सभी सदस्य यह सुनिश्चित करें कि आप सभी सड़क के किनारे चलेंगे तथा ध्यान रहे रैली के कारण आम यातायात बाधित ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो और एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जैसे वाहनों के आने पर तत्काल उसे साइड भी देवें। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।

0: कार्यक्रम आपकी पसंद का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मनचली से, किशोर कुमार की आवाज़, आनंद बख्शी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।
1: ओ मन

मंचली फिल्म का गीत अभी आपने सुना, किशोर कुमार की आवाज़, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और इस संगीत के लिए जो फरमाइशें हमारे पास पहुंची, जो खत आपके पहुंचे हैं वो ये हैं। भाटापारा से हैं बचकामल, मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चिवाराम, सूरज बारीकर, नारायण यदु, लेखराम यदु, राधेश्याम, जितेंद्र साहू। मारवाड़ी कुआं भाटापारा से सियाराम टेलर, अश्विनी पांडे, सोनाडी से सुब्रत चौधरी, बेबी अनिशा, रायपुर से हैं नीलू मेघ, हरिओम मेघानी। और ये हैं नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज़, लूथरा खमरिया से हैं, मोती गार्डन भाटापारा से मोतीलाल झेरिया, कल्पना झेरिया, बिट्टू कुमार, चिंटू युग कुमार हैं भाटापारा से ही, राम कुमार राउत, अमेरिका राउत, गणेश कार्तिक, युवराज राउत। रुआबादा भिलाई से हैं सुशील जैन, कल्पना जैन, सेया जैन, सौरभ जैन, शौर्य शुभम। और अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म प्रेम रोग से लता मंगेशकर के साथ सुरेश वाडकर की आवाज़ है, नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और प्रेम रोग फिल्म के लिए जो फरमाइशें हम तक पहुंची है उनमें मिली जुली फरमाइश भी हैं। भाटापारा से धान सिंह रावत दानू, पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ और नीरज रावत का है ये, रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति बुड़गहन से हैं, सूरजपुर से हैं सुरेंद्र कुमार, श्रीमती प्रीति, योगी कुमार, मोक्ष कुमार यादव हैं, और मोतीलाल भटपरिया, संतोष कुमार, मुंडुल यादव भाटापारा से हैं, कामता यादव, सोनमत यादव, निकिता यादव भाटापारा से, और महारानी चौक भाटापारा से ही परश शर्मा, श्रीमती निधि, रुचि और इनके साथी एमएल यादव, अजय कुमार यादव, अमित अमीन, गिरीश करण, युवेश ठाबेश यादव हैं, सुभाष वार्ड भाटापारा से, हतबंध नेवता से हैं सेवक राम, टुपेंद्र कुमार, तुलेंद्र कुमार, देव कुमार यादव, बिलगहना से शक्ति बेहरा से श्याम कंवर, श्याम शंकर, बाबा विजय पायलट, रागिनी गीता देवी, कैलाश चंद्रावती, कुसुम काशीपुरी और राधा पटवार, जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलौदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतरी बाई, मोतिम बाई, गणेश धाम मरसुली से हैं। और आप सबकी पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म प्रेम रोग का ये गाना।

क्रम अभी हमने पेश किया। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 11 बजे हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर, रतनमाला सुरेलकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: पेड़ जितना फलदार होता है उतना ही विनम्र होकर झुक जाता है, और सफलता भाग्य से नहीं बल्कि सही सोच, निरंतर मेहनत और धैर्य से ही मिलती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। आप हमारे चिर परिचित श्रोता हैं। लिखते हैं, विमलेश जी और अजीत जी आपको प्यार भरा नमस्कार। हमें दिनांक 21/7/2026 और 22/7/2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया। आगे आपने लिखा है,
2: जिसमें आपने ये भी जानिए के तहत भारत के अनूठे मेलों की जानकारी दी। इसमें आपने असम और नागालैंड के मेलों की जो दुर्लभ जानकारी दी वो हमें बेहद पसंद आई
0: जी।
2: दिनांक 22 जुलाई 2026 के ही प्रसारण में आपने सुंदरिया की कहानी सुनाई, वो भी हमें बेहद पसंद आई। ऐसा लगा मानो पूरा दृश्य आंखों के सामने दिख रहा हो। बहुत अच्छी कहानी थी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक शिकायत भी है हमारा संदेश प्रोग्राम में शामिल नहीं किए जाने की। कोई नाराजगी है तो माफ करें।
0: तो राजेश जी, आपको कहना चाहते हैं कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, हमने आपका संदेश आज के प्रसारण में सबसे पहले शामिल कर लिया
2: जी। कुलगांव जम्मू कश्मीर से मोहम्मद असलम मीर,
0: और राजा जी नगर बेंगलोर से हमारे चिर परिचित श्रोता NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी ने लिखा है,
2: अजीत जी, विमलेश जी, मिट्टी की पुस्तकों से भोजपत्र से लेकर तालपत्र और ई पुस्तकों तक, पुस्तकों पर आधारित ये विषय सुनना वाकई शानदार था। वास्तव में आपकी चर्चाएं इतनी उत्कृष्ट थीं कि हमें ऐसा लगा मानो हम उन्हें ई पुस्तकों से ही पढ़ रहे हों
0: जी।
2: आपके वर्णन करने का तरीका और उन्हें सरल भाषा में समझाना बहुत ही बढ़िया था।
0: बहुत बहुत धन्यवाद NR प्रसाद जी और अखिला जी, आपको हम अपना आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे जी का, और साथ में वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी का।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया?
2: ये नारा दिया था प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI का आविष्कार किसने किया था?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। AI के आविष्कार का श्रेय जाता है अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी को।
0: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, मेघालय के मावली नोंग गाँव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है, क्यों?
2: इसका उत्तर है, मावलीनोंग गांव के पास जो पुल है वो जीवित पेड़ों की जड़ों से बनाया गया है, इसलिए इसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है।
0: तो श्रोताओं, प्रश्नोत्तरी में आप सबकी प्रतिभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है?
0: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
2: श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए विकल्पों और निर्देशों का पालन कीजिए और मनचाही पाठ्य पुस्तक को डाउनलोड कीजिए।
0: जी हाँ, और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ऑडियो बुक्स यानी ध्वनि पुस्तकों के रूप में सुनना चाहते हैं तो टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ उमंग कार्यक्रम

0: में प्रसारित कार्यक्रम भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम,
0: वीर कुंवर सिंह।
1: ये कार्यक्रम महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी देशभक्त राजा वीर कुंवर सिंह के जीवन और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी वीरता की गाथा प्रस्तुत करता है। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने बिहार के शाहाबाद में गंगा नदी के तट पर अंग्रेजों से लोहा लिया।
2: हमका सिपाहियन के साथ मिलकर लड़क चाहिए, महाजनन के बही खातों को जरा डालो।
3: अठारह भारतीय इतिहास का वो समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण और दमन के खिलाफ हिंदुस्तान के राजाओं, जमींदारों, किसानों, काश्तकारों और जनता ने विद्रोह कर दिया था। बैरकपुर में 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे लड़ते लड़ते फांसी पर चढ़ गए थे। ये देखकर अंग्रेजों के खिलाफ पूरा देश धधक रहा था और विद्रोह की लहर फैल गई थी। भारत माता के कई सपूत आगे आए, जैसे जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए जान की बाजी लगा दी। मेरठ में 10 मई को विद्रोह का बिगुल बजा और 3 जुलाई को पटना में हुई पीर अली की फांसी की सजा ने आग में घी डालने का काम किया। जगदीशपुर, दानापुर और आरा पर पीर अली की फांसी का गहरा असर पड़ा। जनता बगावत करने लगी। कहा जाता है कुंवर सिंह और जगदीशपुर के लोगों ने पीर अली की याद में एक मजार बनवाई, जिससे अंग्रेज और खफा हो गए। पटना के कमिश्नर ने कुंवर सिंह को मना किया, पर कुंवर सिंह कहां रुकने वाले थे।
2: अगर तुम लोगों ने फौज को इकट्ठा किया तो हम तुम्हारा काम तमाम कर देगा, अंडरस्टैंड?
3: उनकी रगों में तो देशभक्ति का जज्बा उफान ले रहा था।
4: मस्ती की थी छिड़ी रागनी, आजादी का गाना था, भारत के कोने कोने में होता यही तराना था। उधर खड़ी थी लक्ष्मीबाई और पेशवा नाना था, इधर बिहारी वीर बांकुड़ा खड़ा हुआ मस्ताना था। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। सत्रह सौ 77 ईस्वी में कुंवर सिंह का जन्म साहबजादा सिंह के घर हुआ। लाड़ प्यार से पालन पोषण हुआ। पिता के निधन के बाद कुंवर सिंह ने सन 1826 ईस्वी में जगदीशपुर की जमींदारी की बागडोर संभाली। कुंवर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वे एक बड़े नेक दिल इंसान थे। जो किसान समय पर लगान नहीं दे पाते थे या मुसीबत में पड़ जाते थे, वे उनकी दिल खोलकर मदद करते थे। इसी कारण कई बार वे लगान की पूरी राशि जमा नहीं करा पाते थे। उनके ऊपर धीरे धीरे कंपनी की बकाया राशि का कर्ज बढ़ता गया। अंग्रेज उनसे खफा थे, पर आम जनता बहुत खुश थी।
5: सुना तुमने?
6: क्या?
5: पूरे देश में लोगों ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया है।
6: हैं?
5: अब हमारे कुंवर सिंह क्या करेंगे?
6: मेरा तो मन कहता है कि कुंवर सिंह लड़ेंगे, वो समझौता करने वालों में से नहीं है।
5: ठीक कहते हो भाई। अभी देखा नहीं, जब पीर अली की मजार पर गए थे तब उनका मन कितना भारी हो गया था। अमर सिंह तो एकदम गुस्से में थे।
6: हाँ, मुझे भी लगता है कुंवर सिंह जरूर लड़ेंगे, कोई साथ दे या ना दे।
3: कुंवर सिंह चार भाई थे, वो सबसे बड़े थे। दूसरे भाई का नाम दयाल सिंह और तीसरे का नाम राजपति सिंह। अमर सिंह उनके सबसे छोटे भाई थे, वे हमेशा उनके साथ रहते।

0: थे। जब दानापुर की 40वीं देशी पलटन के सिपाहियों ने विद्रोह किया तो जगदीशपुर के लोग एकजुट हो गए। दानापुर के विद्रोही सिपाही नेता हरकिशन सिंह की चारों ओर चर्चा होने लगी।
1: बड़ बहादुर वा हरकिशन वा, अरे कैसे दानापुर में अंग्रेजन के छक्का छुड़ा दे। अरे का हो अब हमार कुंवर सिंह का करी।
2: अरे सुने में आयल बा कुंवर सिंह के सब खबर हो गई बा, कभो कुछ हो सके ना। हाँ
3: चाहिए कि जिसके बारे में जाने
1: सब। हुजूर अभी अभी खबर मिली है कि दानापुर की देशी पलटन ने विद्रोह कर दिया है, अंग्रेजों से सिपाही लड़ते हुए आरा की ओर बढ़ रहे हैं, हमें क्या आदेश है?
4: क्या कहते हो अमर सिंह? ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है, सिपाहियों का मनोबल बढ़ाना जरूरी है। हमारे जाबाज अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपकी क्या राय है?
5: भैया सभी अंग्रेजों से मुक्ति चाहते हैं और समय आ गया है अंग्रेजों से दो दो हाथ हो जाएं। काफी समय से कैप्टन डनवर हमारे किसानों पर अत्याचार कर रहा है, अंग्रेज सैनिक हमारी खड़ी फसलों को रौंद देते हैं।
4: ठीक कहते हो अमर सिंह। रहीम खान
1: जी हुजूर,
4: सिपाहियों को संदेश भेजो कि हमसे आरा कोठी में मिले।
1: जी हुजूर।
4: तो ठीक है, आरा चलने की तैयारी करो।
6: छब्बीस जुलाई 1857 आरा में कुंवर सिंह की कोठी, चारों ओर सैनिकों की चहलकदमी। दानापुर से आए सैनिकों के सामने कुंवर सिंह खड़े हैं।
4: सैनिक भाइयों और बहादुर साथियों, अब समय आ गया है कि हम कंपनी की गुलामी की जंजीरें काटकर फेंक दें। आप सबने विद्रोह करके हिम्मत और साहस का परिचय दिया है। हरकिशन सिंह और रंजीत राम दोनों बहादुर सिपाही हैं, इनका युद्ध करने का कौशल और क्षमता सबसे उत्तम है। ये दोनों सैनिकों का नेतृत्व करेंगे। आगे बढ़िए, सबसे पहले हमें अंग्रेजों को आरा से बाहर निकालना है, फिर पूरे देश से। मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और बेगम हजरत महल को खबर भिजवाई है, शीघ्र ही हम सारे देश में एकजुट होकर लड़ेंगे।
7: कुंवर सिंह जिंदाबाद, अमर सिंह जिंदाबाद, हरकिशन सिंह जिंदाबाद, कुंवर सिंह जिंदाबाद, रंजीत राम जिंदाबाद।
6: सैनिकों के नारों से आरा कोठी का प्रांगण गुंजायमान हो उठा, सैनिकों की चहल पहल बढ़ गई। तभी सैनिकों की तरफ से हरकिशन सिंह आगे बढ़े और कुंवर सिंह की बगल में आ खड़े हुए। अदब से उन्हें सलामी देते हुए वो सैनिकों की तरफ मुखातिब हुए।
8: साथियों, आप सब ने दानापुर में अंग्रेजी फौजों और अफसरों के द्वारा किया गया शोषण और दमन देखा है। उनके यहाँ रहते हुए हम स्वाधीन नहीं रहे। हमारे किसान भाई कर्ज के बोझ से दब गए हैं। अब जंग शुरू होती है। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, भारत माता की।
6: कहा जाता है कि कुंवर सिंह और हरकिशन सिंह के भाषण का सिपाहियों पर गहरा प्रभाव पड़ा।

0: 27 जुलाई को कुंवर सिंह के नेतृत्व में देशी सिपाहियों ने अंग्रेजी फौजों की आरा में घेराबंदी की। लड़ाई जमकर हुई। कई अंग्रेज सैनिक लड़ाई में मारे गए। कुंवर सिंह ने कैप्टन डनवर की फौज को पराजित किया। इतिहास में इसे कुंवर सिंह द्वारा आरा फतेह के नाम से जाना जाता है।
1: अंग्रेजी फौजों ने दोबारा तैयारी की और कुछ ही दिनों बाद मेजर आयर के कमांड में बीबीगंज के स्थान पर एक और युद्ध हुआ। कुंवर सिंह को अपने सिपाहियों के साथ जगदीशपुर लौटना पड़ा। 12 अगस्त को एक घमासान युद्ध हुआ। कुंवर सिंह की सेना पराजित हुई। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। कुंवर सिंह और उनके सिपाहियों को जगदीशपुर छोड़ना पड़ा। फिर फौज संगठित की। देश को आजाद कराने के लिए नौजवान स्वयं फौज में आगे आए। लोगों का जोश देखकर मिर्जापुर, रीवा, बांदा और कानपुर आदि स्थानों पर अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए कुंवर सिंह की सेना लखनऊ पहुंची। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कुंवर सिंह और उनके सहयोगियों का जोरदार स्वागत किया।
2: अल्लाह की मेहरबानी से आज हमारे बीच शाहबाद के बाबू कुंवर सिंह मौजूद हैं। इन्होंने अंग्रेजी फौज को कई जगह बड़ी शिकस्त दी है। अंग्रेज हुक्मरान इनसे घबराते हैं। हमने कुछ फैसले लिए हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करें। खुदा जानता है कि आजमगढ़ से अंग्रेजों को हटाना कितना मुश्किल काम था। हम आजमगढ़ की मिल्कियत बाबू कुंवर सिंह के सुपुर्द करते हैं। हम चाहते हैं कि बाबू कुंवर सिंह आजमगढ़ के बाकी इलाकों से अंग्रेजों को निकालकर बाहर करें।
3: बेगम साहिबा, आपके इस सम्मान से हम आपके एहसानमंद हैं। आपने एक नई जमीन दी है। अल्लाह को मंजूर होगा तो हम आजमगढ़ से भी अंग्रेजों को निकाल बाहर करेंगे।

ये एक ऐतिहासिक क्षण था। जगदीशपुर पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। कुंवर सिंह को एक नई रियासत का मालिकाना हक देकर बेगम हजरत महल ने उन्हें राज सम्मान प्रदान किया था। कहते हैं कि वहीं से लोग कुंवर सिंह को राजा कुंवर सिंह के नाम से संबोधित करने लगे। कुंवर सिंह ने बेगम हजरत महल के विश्वास को नहीं तोड़ा। 17 मार्च को कुंवर सिंह और देशी सिपाहियों की टुकड़ियां अतरौलिया के मैदान में इकट्ठा हुईं। 22 मार्च को आजमगढ़ जिले में तैनात कर्नल मिलमैन ने कुंवर सिंह के सिपाहियों पर भारी हमला किया।

0: अतरौलिया का मैदान सिपाहियों के खून से लथपथ हो गया। छब्बीस मार्च को मिलमैन को पराजित करते हुए कुंवर सिंह ने आजमगढ़ और अन्य इलाकों पर कब्जा कर लिया।
1: आजमगढ़ पर विजय के बाद कुंवर सिंह जगदीशपुर लौटने लगे। रास्ते में ब्रिगेडियर डगलस की सेना के साथ घमासान युद्ध हुआ। ब्रिगेडियर डगलस की हार हुई। अंग्रेजी सेना फौजी सामान छोड़कर भाग गई। दूसरी ओर जनता ने राजा कुंवर सिंह का स्वागत किया।
2: अरे देखो देखो, अरे घोड़े पर सवार होकर हमारे राजा कुंवर सिंह कैसे जा रहे हैं।
1: कुंवर सिंह गाजीपुर पहुंचे पर डगलस ने उनका पीछा जारी रखा। कहा जाता है शिवपुर घाट से गंगा नदी पार करते हुए राजा कुंवर सिंह की दाहिनी बांह में गोली लगी, जिसे बाएं हाथ की तलवार से काट कर उन्होंने गंगा में बहा दिया।

0: दे, आज तुझको ही देता हूँ ये।
1: दुश्मन तट पर पहुंच गए जब कुंवर सिंह करते थे पार, गोली आकर लगी बाह में, दायां हाथ हुआ बेकार। हुई अपावन बाहुजान, बस काट दिया लेकर तलवार। ले गंगे ये हाथ, आज तुझको ही देता हूं उपहार। वीर भक्त का वही जानवी को मानो नजराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था।
2: कहते हैं कुंवर सिंह को अपना हाथ काटते देख ब्रिगेडियर डगलस अवाक रह गया।
3: ओह माय गॉड, देखाओ शाहबाद खबर करो कि कुंवर सिंह नदी पार कर गया है।
4: यस सर।
2: घायल अवस्था में कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंचे। कंपनी ने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में तोपों से लैस एक बड़ी फौज जगदीशपुर भेजी। ये 1857 के संग्राम का चरम सीमा का समय था, जब पहली बार देशी फौज ने कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों की एक बड़ी संगठित फौज को पराजित किया था। कहते हैं जगदीशपुर के लोगों ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को हरा दिया, लेकिन लंबी लड़ाई में कुंवर सिंह घायल हो गए। उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया। इस युद्ध में वे और भी घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया। पूरा शाहबाद शोक में डूब गया। इस तरह 1857 के अमर सेनानी वीर कुंवर सिंह की स्मृतियां दर्ज हैं। वहां के लोकगीतों के वे नायक हैं। ऐसे नायक बार बार जन्म नहीं लेते।

0: सकते हैं ओज और वीर रस से परिपूर्ण सुंदर कविता वीर तुम बढ़े चलो।
1: हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि द्वारका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित ये कविता बच्चों और युवाओं को साहस, संकल्प और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां और प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों न हों।
0: जी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वीर तुम बढ़े चलो। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
3: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT हम अभी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 MHz पर।

0: आवाजें थी साबरी ब्रदर्स की, शब्दकार निदा फाजली, संगीत आदेश श्रीवास्तव का एल्बम तरकीब।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। अगला गाना आपको सुनवाते हैं तन्हा दिल, इस एल्बम का गाना, आवाज, गीत और संगीत शान का।

उस्ताद सुल्तान खान और चित्रा की आवाजों में पिया बसंती इस एल्बम का गाना संगीत है संदेश शांडिल्य का।

रंग तिरंग कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए सपना अवस्थी की आवाज में परदेसिया एल्बम का ये गाना। गीत और संगीत है पी के मिश्रा का।

विविध भारती के कार्यक्रम हम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 11:55 होने को हैं। रायपुर से जुड़ेंगे प्रादेशिक समाचार के लिए।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर आज प्रदेश में बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा भारत के गर्व का प्रतीक है और हर नागरिक के लिए देश के प्रति अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने की एक निरंतर प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान वंदे मातरम को समर्पित है, क्योंकि देश राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूर्ण होने का पर्व मना रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा तिरंगा हमारा स्वाभिमान है और देश के लिए हमेशा अपना सर्वस्व अर्पण करने की अटूट प्रेरणा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। पार्टी द्वारा 15 अगस्त तक हर घर, प्रतिष्ठान और कार्यालयों में तिरंगा फहराने के लिए जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके तहत राजधानी रायपुर में आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी शामिल होंगे। तिरंगा यात्रा इंडोर स्टेडियम से सुभाष स्टेडियम तक निकाली जाएगी। इस तिरंगा यात्रा में जनप्रतिनिधि, आम नागरिक और छात्र बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 15 अगस्त को राजधानी रायपुर के पुलिस मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। बिलासपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, दुर्ग में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और बस्तर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ध्वजारोहण करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह राजनांदगांव में ध्वजारोहण करेंगे। प्रदेश के अन्य जिला मुख्यालयों में मंत्री, सांसद और विधायक स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। सभी मुख्य अतिथि इस अवसर पर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर आज प्रदेश में 1 से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चों और किशोर किशोरियों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। इसके लिए शासकीय और निजी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा अन्य संस्थानों के माध्यम से दवा खिलाने की व्यवस्था की गई है। कोई बच्चा आज किसी कारणवश दवा नहीं ले पाता है तो उसे मॉपअप दिवस 17 अगस्त को कृमिनाशक दवा खिलाई जाएगी। इस अभियान के तहत प्रदेश में 1,10,00,000 बच्चों और किशोरों को एल्बेंडाजोल की खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश के सूरजपुर और बलरामपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, जशपुर, कोरिया, कोरबा, सरगुजा, बस्तर और बीजापुर सहित 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के बाकी जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर आज प्रदेश में बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: ये था प्रादेशिक समाचार रायपुर से। हम आकाशवाणी बिलासपुर से बोल रहे हैं। 12 बजे हैं, विविध भारती से जुड़ते हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन के 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी एनके प्रेमचंद्रन ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया और इस पर गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग की। शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही दिन के 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों और राज्य सरकार के बीच तीन दौर की वार्ता के बावजूद गतिरोध जारी है। विद्यार्थियों ने सरकार के प्रस्तावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा का घेराव करने के अपने फैसले पर कायम है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1 लाख 55 हजार करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं। इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। 42,000 से अधिक स्टार्टअप भी पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने डिजिटल खरीद के माध्यम से जवाबदेही मजबूत की है। भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो गई है। 31 जुलाई तक हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष के समारोहों का प्रमुख आकर्षण सूर्य पथ तिरंगा होगा। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। अभी समाचार मिला है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि एशियाई शेर के संरक्षण में भारत की सफलता वन्य जीव और जैव विविधता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का गौरवशाली प्रमाण है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश में एशियाई शेरों की संख्या 2015 में 523 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के भारोत्तोलक महाराजन अरुमुंग पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश में भी आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको परवरिश फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह की आवाजें हैं। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: चलती का नाम गाड़ी, इस फिल्म का गाना किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाजों में आपको सुनवा रहे हैं। मजरू सुल्तानपुरी के बोल और संगीत SD बर्मन का।
1: बाजू।

अंतराल का समय पूरा हो चुका, अब आपके लिए लेकर आए हैं पड़ोसन फिल्म का गाना, किशोर कुमार, मन्ना डे और महमूद की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है आरडी बर्मन का।

हसत जात हम हसत जात अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार।

पड़ोसन फिल्म का ये गाना आपने सुना। आज यादों की महफिल कार्यक्रम में जो गाने आप सुन रहे हैं, अगर उन पर आपने गौर किया होगा तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज के कार्यक्रम में या तो पुरुष आवाजों में जो युगल गीत हैं वो, या तीन पुरुष आवाजों में जो गाने हैं वो हम आपको सुनवा रहे हैं। बैजू बावरा फिल्म का गाना उस्ताद अमीर खान और पंडित डी वी पलुस्कर की आवाजों में। लीजिए अब सुनिए शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
3: अरे सुनो आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा 3 बज रहे हैं 3।
0: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
3: सखी सहेली?
0: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
3: अच्छा तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
4: सखी सहेली।
5: ये है मासूम फिल्म का गाना, भूपिंदर सिंह और सुरेश वाडकर की आवाजों में गुलजार के बोल, संगीत आरडी बर्मन का।

0: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये समझौता फिल्म का गाना मुकेश और मोहम्मद रफी की आवाजों में, गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।
1: बड़ी दूर।

0: आ रही हैं
1: महबूबा महबूबा महबूबा
0: विविध भारती पर
1: सुंदरा
0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत आर डी बर्मन का, फिल्म का नाम शोले।

सागर फिल्म का गाना आइए सुनते हैं, किशोर कुमार और एस पी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। जावेद अख्तर के बोल संगीत है आर डी बर्मन का।

यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आज की यादों की

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस सुरीला सफर कार्यक्रम में। कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। आज की इबारत आपको पढ़ के सुना दें। विविध भारती के फेसबुक पेज पर हमने पोस्ट की, बहुत सारे श्रोताओं ने पढ़ ली है, और जिन श्रोताओं ने फेसबुक पर जाकर इस इबारत को नहीं पढ़ा है तो उनके लिए हम पढ़ के सुना देते हैं। सजना संवरना स्त्रियों का अधिकार है, खासतौर पर जब मौसम सुहाने हो तो सजना और भी मन को भाता है। बिंदिया, काजल, कजरा, गजरा, पायल, मेहंदी, चुनर, ये सब श्रृंगार के साधन हैं। हरे कांच की चूड़ियां बड़ी सुहावनी लगती है, पर इन्हें किसी का दिल समझकर आहिस्ता आहिस्ता हाथों में डालिए। चांद जैसे मुखड़े पर बिंदिया सजाइए, जब बिंदिया चमकेगी आंखों में कयामत ढाने वाला काजल होगा। गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रचाकर धानी चुनरी पहन जब जाओगी तो साजन कहेंगे ही ना, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए। क्या पता ये भी कह दें, तेरी बिंदिया रे के आए हाय तेरी बिंदिया रे। तो सज धज कर आइएगा जरूर विविध भारती का कार्यक्रम सुरीला सफर में। ये आज की इबारत है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने पढ़ी और बहुत सारी बातें उन्होंने श्रृंगार के बारे में लिख करके भेजी है। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि वाह क्या खूबसूरत इबारत है, आज सावन की दूसरी सोमवारी स्त्रियां सोलह श्रृंगार, हरी चूड़ियां, हरी साड़ी, मेहंदी, आलता से सजे हाथ पांव, हाथ में फूलों की डलिया, जल भरा कलश लेकर भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करने के लिए मंदिरों में जा रही है। भगवान भोलेनाथ का और माँ गौरी का खूब श्रृंगार किया गया है, आज उसी श्रृंगार की बात सुरीला सफर में। एक साथी हमारी लिख रही है कि भारतीय संस्कृति में नारी का श्रृंगार केवल बाहरी रूप को सजाना नहीं है, ये संस्कार सौभाग्य, पारिवारिक परंपरा और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। सोलह श्रृंगार स्त्री के जीवन के अलग अलग चरणों और उसकी पहचान को दर्शाते हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक महोत्सव भाग्य का प्रतीक, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, पति की लंबी उम्र की कामना और वैवाहिक बंधन को दिखाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा, चूड़ियां, बिछियां और पायल शरीर के एक्यूप्रेशर बिंदुओं पर असर डालते हैं, ये शरीर में ऊर्जा को संतुलित रखते हैं। भारतीय परंपरा में नारी को शक्ति या लक्ष्मी का रूप माना जाता है, श्रृंगार उसी दिव्य सम्मान को प्रकट करता है। सजना संवरना स्त्री के मन में खुशी और सकारात्मकता लाता है, परिवार और समाज के उत्सवों में उल्लास और जुड़ाव का माध्यम बनता है। जी, आपने स्त्री के श्रृंगार की बातें की, और जब श्रृंगार की बात आती है तो अक्सर श्रृंगार को स्त्रियों से ही जोड़ करके देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं, पुरुष भी तो अपना श्रृंगार कर सकते हैं, वो भी अपने आप को सजा संवार सकते हैं, बालों को अच्छी तरह से उन्हें कटवा करके और जिस तरीके से भी आपको पसंद हो वो स्टाइल, और चेहरे पर भी आजकल तो पुरुष भी जाते हैं पार्लर में और वो भी अपना श्रृंगार करवाते हैं। तो श्रृंगार सभी का अधिकार है, लेकिन हाँ, स्त्रियों से इसे खास तौर पर जोड़ करके देखा जाता है। तो और भी हम इस विषय पर बातें करेंगे और कुछ सवाल भी हैं आज हमारे, तो वो भी हम आपसे पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले सजने संवरने का, सजना के लिए जो गीत है वो आपको सुनवा देते हैं। सौदागर फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज, गीत और संगीत रविंद्र जैन का, कौन सी अभिनेत्री पर फिल्माया गया है ये आप बताइए।

सजने संवरने की प्रक्रिया या सजने संवरने का जो जज्बा है उसको कितनी खूबसूरती के साथ इस गाने में बयान किया गया। गीत और संगीत ये रविंद्र जैन का है तो उनकी तारीफ तो हमें जरूर करनी होगी। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि पुरुष भी श्रृंगार करने से पीछे नहीं है, बालों में स्टाइलिश जेल, चेहरे पर हर तरह के मेकअप, मसाज, फेशियल, अच्छे कपड़े, और क्यों ना रहें, जब नायिका सजेगी तो नायक को भी सजा रहना चाहिए। असल में तो नायक ही नायिका को सजाता संवारता है, इसकी नायिका सुंदर दिखे और नायिका भी इसलिए सुंदर होना चाहती कि नायक उसकी खूब खूबसूरती का व्याख्यान करे। ये प्यार और समर्पण का एक रूप।

है। जी हाँ, सजना सवरना, ये सभी का अधिकार है। एक हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि आज आपकी जो इबारत है, मेरी धर्म पत्नी पर कल ही सार्थक हुई, जब हम बाबा अमरनाथ जी के दर्शन के बाद श्रीनगर कश्मीर में डल लेक में शिकारे में हम बैठे थे, जहां धर्म पत्नी ने कश्मीरी सलवार कुर्ता पहना था, बिंदिया, काजल, पायल, कश्मीरी चुनरी आदि साधनों का श्रृंगार किया हुआ था। श्रीनगर का शाम का मौसम तो सुहाना था ही, मैं शिकारे में ये गीत भी गा रहा था, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। वाह क्या बात है, कितना सुनहरा वो वातावरण रहा होगा। और आपने इसको पूरी एकदम डिटेल जानकारी आपने दी है, धन्यवाद आपका। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि आज हमारे बीच परिपूर्णता के लिए श्रृंगार रस में सजे गीतों की माला होगी। जिस प्रकार सावन के आने से प्रकृति धीरे धीरे अपने को संवारने लगती है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, पूरे शबाब पर है, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे सभी बड़े खुश नजर आते हैं। नारी मन भी इन्हीं सावन के पूरे सोलह श्रृंगार में रची बसी होती है। और कुछ गीतों का इन्होंने जिक्र किया है। एक साथी हमारी लिख रही है कि सजना संवरना हमें हमेशा से अच्छा लगता है, शायद इसलिए नहीं कि कोई हमें देखे, बल्कि इसलिए कि आईने में खुद को देखकर मन थोड़ा मुस्कुरा दे। सावन आए, हरी चूड़ियां खन के माथे पर बिंदिया सजे और बालों में गजरा महके, तो लगता है जैसे छोटी छोटी खुशियों ने आकर हमें फिर से थोड़ा सा संवार दिया हो। जी हाँ, ये बड़ी मुद्दे की बात है कि सजना संवरना ये दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने मन के लिए भी बहुत जरूरी है। जब हम आईने में देखते हैं, अपने आप को खूबसूरत देखते हैं, तो मन वाकई में प्रफुल्लित हो जाता है और आत्मविश्वास भी मन के अंदर आता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, मौसम की बात करते हैं। मौसम सुहाना हो तो सजना भी अच्छा लगता है। जुदाई फिल्म का ये गाना है, और हाँ, ये जो सौदागर फिल्म का ये गाना है, पद्मा खन्ना पर फिल्माया गया। आपके जवाब हम तक पहुंच गए, उसके लिए धन्यवाद। और अब जुदाई फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया, ये आप हमें बता सकते हैं।

जितेंद्र और रेखा पर फिल्माया गया ये गाना है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि आजकल तो पुरुष वर्ग भी पीछे नहीं, 16 श्रृंगार में से कुछ श्रृंगार तो वो भी सजना सवरना करते ही हैं, पीछे नहीं है वो। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि सावन में तो हर कुंवारी लड़कियां भी सजती है, पर शादी के बाद हमारे जमाने में बहू को इतना ज्यादा सजना सवरना पड़ता था, भारी साड़ी, उसके पल्लू, सिंदूर और उतनी ही भर भर के हाथ में चूड़ियां, हर समय सज धज के रहना, और उसके बाद जब रोटी बनाते समय या काम करते समय उन चूड़ियों से इतनी दिक्कत होती थी कि बाद में धीरे धीरे आदत हो जाती है। सजती संवरती है आजकल की लड़कियां भी, बहुएं भी, पर उनका स्टाइल हमारे जमाने से अब बहुत भिन्न हो गया है। साड़ियों की जगह सलवार सूट, रंगीन चुनरिया हो गई है, चूड़ियों की जगह एक एक कड़े हो गए हैं, झटपट वाली मेहंदी हो गई है, और एक दिन मिलकर सावन मिलन पूरा हो गया, पूरा सावन संपन्न हो गया। एक साथी लिख रही है कि मेरी बात करूं तो पहले मैं भी इतनी फैशन में नहीं रहता था, लेकिन वाइफ के कहने पर अब मैं सुधर गया हूं। चलिए, अच्छी बात है कि आप भी थोड़ा सज धज कर रहते हैं। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि नारी की खूबसूरती उसके श्रृंगार और व्यवहार दोनों पर निर्भर रहती है। अगर वह कितना भी श्रृंगार कर ले, लेकिन उसका व्यवहार परिवार और समाज में उचित नहीं है तो सब बेकार है। इसलिए दोनों का सामंजस्य बना रहना बहुत जरूरी है। ये जो आपने बात कही है, ये 100% की बात कही है। जी हाँ, श्रृंगार अपनी जगह जरूरी है, लेकिन व्यवहार की सुंदरता भी उतनी ही आवश्यक होती है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपकी सुंदरता भी देखी जाएगी और उसे पसंद किया जाएगा। लेकिन आपने बहुत श्रृंगार किया, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन व्यवहार ठीक नहीं है तो आपकी वो सुंदरता किसी काम की नहीं रह जाएगी। एक हमारे साथी ने यह बात लिखी कि ज्योतिष शास्त्र में हरा रंग बुद्धि और संतुलन के कारक हैं, बुध ग्रह से जुड़ा है। हरा श्रृंगार करने से मानसिक शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जी, हमारा जो अगला गीत है ये हरे रंग से संबंधित है और इसीलिए हमने आपकी ये बात अभी इस वक्त पढ़ी है। पढ़ना तो हम आपकी सारी बातें चाहते हैं। आप हमें बताइए कि सावन के महीने में हरे रंग का इतना महत्व क्यों है, क्या महत्व है इसका? हरे रंग की चूड़ियां, हरे रंग की चुनर और बाकी भी जो श्रृंगार के साधन हो, उसमें ज्यादातर जो है हरे रंग का चुनाव किया जाता है, तो इस बारे में आप हमें बताइए। और जिन लड़कियों की अभी नई नई शादी हुई है और वो अपने ससुराल से मायके आई है, तो वहां से ससुराल से भी कुछ उनके लिए तोहफे भेजे जाते हैं, उसमें भी हरी रंग की चूड़ियों का चुनाव खास तौर पर किया जाता है, तो इस बारे में भी आप हमें बताइए। चलिए, अब हरे कांच की चूड़ियां इस फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज, गीतकार और संगीतकार कौन है ये आप हमें बताइए। बिस्वजीत और नैना साहू पर फिल्माया गया ये गाना।

हरे कांच की चूड़ियां इस फिल्म का गाना सुना, शैलेंद्र का लिखा हुआ, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ। एक साथी लिख रहे हैं कि आज आप श्रृंगार की बातें कर रही हैं, कभी हमारी पत्नी साथ थी तो हमें इस सावन में मेघों, बिजलियों, बरसात को देखते थकते नहीं थे, उसके साथ भीग भी जाते थे। आज ये हरियाला सावन हमें घर में बंद रहने को मजबूर कर रहा है, क्योंकि वो चूड़ी बिंदी वाली नहीं रही। क्या कहें इस बारे में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक हमारे साथी की ये बात है कि जब पति शाम को थका हुआ घर पर आता है तो घर पर पत्नी इंतजार करती है, अगर पत्नी सजी संवरी मिलती है तो अच्छा लगता है, सारी थकावट और परेशानी समाप्त हो जाती है और फिर शुरू होती है श्रीमती जी की फरमाइश, जो कि उनका हक है। एक साथी लिख रहे हैं कि सावन के महीने में हरा रंग, प्रकृति के सौंदर्य, सुख समृद्धि और भगवान शिव के प्रति अटूट शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए सावन में हरे रंग का बहुत महत्व है। और एक साथी ये लिख रही है कि सावन के महीने में हरा रंग प्रकृति में प्रेम, सौभाग्य और भगवान शिव की उपासना से जुड़ा है, बारिश के कारण चारों तरफ हरियाली छा जाती है और हरा रंग जीवन में नई शुरुआत, शांति

और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं से भगवान शिव को प्राकृतिक वातावरण और बेलपत्र प्रिय है। हरा रंग प्रकृति का रूप है, इसलिए इसे पहनकर भक्त शिव के प्रति अपना प्रेम और भक्ति प्रकट करते हैं। इसलिए नारियां हरे रंग से श्रृंगार करके भोलेनाथ की पूजा करती है। धन्यवाद आपका। और हाँ, एक साथी ने बात लिखी कि क्षेत्रवार सजने संवरने की प्रथा अलग अलग है, यानी जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहां के कुछ अलग रिवाज होते हैं। सजी सवरी जो स्त्रियां हैं वो अलग अलग उनका जो रूप होता है वो दिखाई देता है। एक साथी लिख रहे हैं कि माथे की बिंदिया में सपनों की चमक, आंखों के काजल में अनकहे जज्बात है, चूड़ियों की खनक में बसी है यादें, पायल के रुंझुन में दिल की सौगात है। नारी जब स्नेह और मुस्कान से श्रृंगार करती है तो केवल उसका रूप नहीं संवरता, उसके साथ घर, आंगन, रिश्ते और कई बिखरे हुए एहसास भी खिल उठते हैं। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि सावन हरेक के लिए मनभावन होता है, धरती साथ श्रृंगार करके हरी भरी बन जाती है। उसी तरह महिलाएं हरी भरी साड़ी और हरे कांच की चूड़ियां पहनकर सजधज कर उनके मुख पर निखार आता है। उसी तरह विविध भारती भी प्रसारण तरंगों पर निखार आ जाता है और गीत बज उठता है। चांद जैसे आकाशवाणी के मुखड़े पर विविध भारती जैसा सितारा नहीं भूलेगा, मेरी जान नहीं भूलेगा। जी, आप मत भूलिए, याद रखिए विविध भारती का ये कार्यक्रम सुनते रहिए। विविध भारती के और अन्य कार्यक्रम भी है, उन्हें भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक सवाल यहाँ करते चलते हैं कि जो नई नई बेटियों की शादियां हुई हैं और वो अपने ससुराल से मायके आई हैं, तो ससुराल से कुछ भेंट उनके लिए भेजी जाती, उसे क्या कहा जाता है और उसमें खास तौर पर क्या होता है जो उन बेटियों के लिए, नई शादी जिनकी हुई है, जिनका पहला साल है, ये पहला सावन है, तो उनके लिए भेजा जाता है, तो इस बारे में आपके यहाँ क्या रिवाज है और क्या भेजा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, इस बारे में आप हमें बताइए। चलिए, गैम्बलर फिल्म का गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ है, नीरज के बोल है, संगीत किसका है ये आप हमें बताइए।

गैम्बलर फिल्म का ये गाना आपने सुना, इसमें संगीत एस डी बर्मन का। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि मंजू जी प्यारी सी इबारत लेकर आप आई हैं और आपने हमें सज धज के विविध भारती के इस प्रोग्राम में बुलाया है, वो भी इतने प्यार से, और अगर हम सज धज के ना आए तो क्या करेंगे आप, शामिल नहीं करेंगे हमें? ऐसा नहीं हो सकता, जैसे ज्यादा सजना तो हमें पसंद नहीं है, पर चूड़ी बिंदी बहुत प्रिय है। बिंदी तो हमने लगाना अब छोड़ दी है क्योंकि अब हम बिंदी नहीं लगाते हैं, लेकिन हाँ सजना संवरना ये हर स्त्री का अधिकार है, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। धन्यवाद आपका। और हमने आपसे सवाल किया था कि जिन बेटियों की अभी शादी हुई है उनके लिए क्या भेजा जाता है ससुराल की तरफ से, तो हमारे एक साथी ने लिखी है कि हम लोगों के यहाँ उसे सावनी कहते हैं, जिसमें राखी, रुमाल, कपड़े, श्रृंगार सामग्री और मिठाइयाँ भेजी जाती है। एक साथी लिख रहे हैं कि श्रावण में समूची धरती की वर्षा ऋतु के परिणाम से अपने सब धर्मी गुण से हरी भरी चादर ही ओढ़ लिया करती है, फिर ऐसे में हरे रंग का प्रयोग कोई क्यों ना करे। और एक साथी ने लिखा है कि साल होने पर जो तोहफा भेजा जाता है उसे शगुन कहा जाता है। और एक साथी ने ये बात लिखी कि हरा रंग सृजन का प्रतीक है, सावन में धरती और पर्जन्य का मिलने से नव चैतन्य, हरी फसल, पेड़ पौधे, फूलों फलों का सृजन हो जाता है, इसलिए व्रत वैकल्य में भी हरा रंग शुभ माना जाता है और हरे रंग का श्रृंगार किया जाता है। जी धन्यवाद आपका। चलिए एक सवाल तो हमने आपसे किया था और कि क्या भेजा जाता है, लेकिन हमने जहां तक हमारी जानकारी है उसके अंदर एक लहरिया भी भेजा जाता है। लहरिया किसे कहते हैं? लहरिया कौन कौन से प्रदेशों में इसका ज्यादा उपयोग होता है और लहरिये में कौन से जो रंग है वो प्रधानता लिए होते हैं, इसके बारे में अगर आपको जानकारी हो तो हमें बताइएगा। और अब सावन को आने दो, इस फिल्म का गाना, येसुदास की आवाज, राजकमल का संगीत, कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया आप बताइए हमें।

अरुण गोविल और जरीना वहाब पर फिल्माया गया ये गाना है। हमारे साथी की बात है कि जिस कपड़े पर तिरछी लाइंस बनी हो उसे लहरिया कहते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि राजस्थान में नवविवाहिता बहू के लिए लहरिया भेजा जाता है, वह मुख्यतः पचरंगी या रानी कलर में होता है और उसके साथ श्रृंगार का सामान, लहरिए का चूड़ा और घेवर मुख्य रूप से भेजे जाते हैं। एक साथी ये लिख रहे हैं कि पति पत्नी का जो आपस का प्यार होता है वही सच्चा श्रृंगार होता है। एक साथी लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ इसे सावनी कहते हैं और इसमें न्यूली मैरिड जो लड़कियों के लिए नई साड़ी, चूड़ियाँ और पूरा सुहाग का सामान, खिलौने, मिठाइयाँ और छोटे भाई बहनों के लिए भी कपड़े लाते हैं और मेरी बेटी के लिए भी सावनी अभी आएगी। और एक साथी लिख रहे हैं कि ससुराल से आने वाला उपहार जो हमारे यहाँ आता है उसे हरियाली कहते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि पहले सावन पर दुल्हन को, चाहे वो मायके में हो या ससुराल में, भेजे जाने वाले सामान को हमारे यहाँ संधारा कहते हैं। इसमें एक खास मिठाई, फिरनी और घेवर, तीन रंगों से बना झूले के लिए रस्सा, कपड़े, बर्तन और एक दो आभूषण भेजे जाते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि शादी के बाद पहले सावन या हरियाली तीज पर सिंजारा, नवविवाहिता स्त्री के मायके से जो उपहार भेजा जाता है उसे कहा जाता है, उसे सिंधारा हम यहाँ पर कहते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं। जी हाँ, लहरिया के बारे में हमने बात की, खास तौर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी इसे पहना जाता है और विभिन्न रंगों में ये होता है और बहुत सारे रंगों की लाइनें, आड़ी एक तिरछी लाइनें होती है और इस तरह से वो लहरिया सावन के महीने में मुख्य रूप से पहना जाता है और बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। चलिए अब हम अगला गाना आपके लिए लेकर आए हैं, दो रास्ते फिल्म का गाना, लता जी की आवाज़ से, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

दो रास्ते फिल्म का ये गाना हमने सुना। एक साथी हमारी लिख रही है कि मौसम कोई भी हो, त्योहार कोई भी हो, इस सवाल सदियों से सभी के मन में रहता है कि स्त्रियां इतना क्यों सस्ती है। घर में कितना भी काम धाम हो, वे सजने के लिए वक्त निकाल ही लेती है। स्त्रियों के अधिकार के अलावा एक मुख्य तथ्य यह है कि सजने से स्त्रियों में आत्मविश्वास की एक अलग अनुभूति प्रकट होती है। सलीके से लगाया गया काजल, बिंदी, मेहंदी, चूड़ी में स्त्रियों का सौंदर्य निखर कर सामने आता है। सादगी के सौंदर्य में नहाई हुई किसी स्त्री को देखिए, वे नेह में नत और विनीत लगती है। किसी भी मौसम में नेह की तरह बरसती हुई स्नेह और संवेदना के रस में सिंचित नारी का असल सौंदर्य यही है। जी हाँ, सादगी का भी अपना आकर्षण होता है। ये सवाल हम आपसे करने ही जा रहे थे। सजना तो अच्छा लगता ही है, लेकिन सादगी का भी अपना आकर्षण होता है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं ये हमें बताइएगा। चलिए, अगला गाना परिणीता फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज और अरुण कुमार मुखर्जी का इसमें संगीत है। गीत किसका है ये आप हमें बताइएगा। कौन सी अभिनेत्री पर फिल्माया गया है ये भी बता सकते हैं।

भरत व्यास का लिखा हुआ ये गाना है और मीना कुमारी पर फिल्म आया गया है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज तो गानों की हरियाली ही हरियाली है जी, एक के बाद एक अपने लिस्ट तो सुपर हिट है, बहुत आभार विविध भारती का। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हर एक स्त्रियों को सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है, बिंदिया काजल कजरा गजरा पायल मेहंदी चुनर हरी हरी चूड़ियां ये सब पहनकर अपने आप खुश होती है और सोचती है साजन भी जरूर कहेंगे कि तेरी बिंदिया रे, और गजरा लगा के गजरा सजा के ये वो कहेंगी जी। धन्यवाद आपका। चलिए अब मधु फिल्म का गाना हम आपको, देखिए हमने सोचा था कि कौन सी फिल्म का गाना है ये आपसे पूछेंगे, लेकिन हमने ही बता दिया। मधु फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, नक्श लायलपुरी के बोल है, संगीत किसका है आप बताइए।

एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि लता मंगेशकर द्वारा गाया गया धानी चुनर मोरी हाय रे मधु फिल्म का ये गाना एक कालजयी गीत है। नक्श लायलपुरी द्वारा रचित इस फिल्म में चुनरी के माध्यम से यौवन और प्रेम की चंचलता को दर्शाया गया है। रोशन का संगीत और लता मंगेशकर की आवाज़ इस क्लासिक को और भी मनमोहक बना देती है। एक साथी लिख रहे हैं कि महाराष्ट्र में श्रावण महीने से त्यौहार शुरू हो जाते हैं। पहले के जमाने में स्त्रियाँ 9 गज की साड़ियाँ पहनती थी, बाद में वो 5 गज पर आ गई है। सज धज कर त्यौहार में हर्षोल्लास के साथ वो शामिल होती है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एक फूल चार कांटे इस फिल्म का गाना है, मुकेश की आवाज है, शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप बताइए।

सुनील दत्त और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गाना एक साथी की ये बात कि हमारे शहर में बरखा रानी बड़े प्यार से धरती का साथ सिंगार कर रही है और सुरीला सफर में हम नारी के आंतरिक

और बाह्य साज श्रृंगार की बातें कर रहे हैं, उस पर सुंदर से गीत सुन रहे हैं। ऐसी प्यारी अनुभूति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक साथी ये लिख रहे हैं कि सजने संवरने के लिए तो शहरों में आज पार्लरों की बाढ़ सी आ गई है, घर पर सस्ती महिलाओं का अब मन कहाँ भरता है। काम से फुर्सत मिलते ही बैग टांग कर, पर्स लिए, एक हाथ में मोबाइल, और आज जा पहुंचती है शहर के व्यस्ततम पार्लर में और नख से शिखर तक पूरा मेकअप कराकर ही लौटती है। वे ये जो पतिदेव हैं बड़े नाराज हमें लग रहे हैं, तो श्रृंगार

पार्लर में और नख से शिखर तक पूरा मेकअप कराकर ही लौटती हैं। वे ये जो पतिदेव हैं बड़े नाराज हमें लग रहे हैं, तो श्रृंगार जरूरी है लेकिन सीमाएं तय करना भी बहुत जरूरी है। चलिए कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना अभिमान फिल्म से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत किसका है आप बताइए।

अभिमान फिल्म का ये गाना आपने सुना, और इसमें बहुत खूबसूरत सा जो ये संगीत है, ये एस डी बर्मन का संगीत है। बहुत सारे श्रोताओं ने हमें सही जवाब लिख करके भेज दिए हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे बिल्कुल साथ साथ रहे, हर बात का आपने जवाब दिया, और खूबसूरत आपके कमेंट्स थे, और आपने ये भी लिखा कि गीत आपको पसंद आए, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमारी मुलाकात होगी। आज का ये कार्यक्रम बस यहीं तक। आज्ञा दीजिए मंजू द्विवेदी को। नमस्कार।

यारों में न जाने अपने दिल की कितनी बातें कह जाते हैं। तभी तो सुप्रसिद्ध मध्यकालीन कवि बिहारी लाल नायक नायिका के इशारों भरे प्रयासों के लिए कहते हैं, कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। सच में इशारों की भाषा अनूठी होती है।

नमस्कार दोस्तों, कई बार जो बात हम अपनी जुबान से नहीं कह पाते वो हम संकेतों में या इशारों में व्यक्त करते हैं। कई बार हमारे संकेत स्पष्ट नहीं होते तो समझने वालों को उलझन हो जाती है या अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। मानव तो मानव, पशु पक्षी तक संकेतों में बातें करते हैं। मधुमक्खियां तो नृत्य के संकेत से अपना संदेश देती हैं। हम लोग भी तो इशारों

भाषा के अतिरिक्त इशारों से हम अपनी भावना को और स्पष्ट एवं प्रभावशाली बना देते हैं। कई बार सर को हिलाकर या हाथों के इशारों से हम कई बातें बिना बोले भी स्पष्ट कर देते हैं। कहते हैं, आंखें हमारे मन का दर्पण होती हैं, और इसीलिए आंखों के इशारों का क्या कहना। आंखों के विभिन्न प्रकार के संकेतों से हम क्रोध, घृणा, प्रेम, हर प्रकार की भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। कई बार तो दो दिलों का रिश्ता भी मासूम से आंखों के इशारों से ही तो शुरू होता है।

0: दुनिया संकेतों या इशारों से भरी हुई है। जिंदगी को सही ढंग से जीने के लिए हर प्रकार के इशारों को समझकर उसके अनुसार काम करना ही तो समझदारी है ना? कवि की कविता हो या जिंदगी में कुदरत का इशारा या ट्रैफिक सिग्नल का लाल हरी पीली बत्तियों का इशारा, इसलिए इशारों को सही ढंग से समझना भी तो जरूरी है।
1: बाजू।

कहते हैं समझदार को इशारा ही काफी होता है, यानी समझदार लोग थोड़ी सी बात से ही पूरी बात समझ लेते हैं। इशारों को समझकर जीवन को बेहतर बनाना भी एक कला है। इशारों से मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति को पूर्णता मिलती है। आज का त्रिवेणी का सफर आपने पूरा किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील, गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया, 3 अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है।

0: अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि सरकार विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
1: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की थी।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया गया। दिन के 12 बजे तक स्थगित रहने के बाद सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता तथा नियुक्ति में एकरूपता सुनिश्चित करने और प्रशासन तथा कामकाज में कुशलता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खदान और खनिज विकास तथा नियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक 1957 के संबंधित अधिनियम में संशोधन करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम संशोधन विधेयक 2026 सदन के समक्ष रखा। ये विधेयक केरल राज्य के नाम में परिवर्तन का प्रावधान करता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसके माध्यम से 1962 के संबंधित अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संबंधित हितधारकों से परामर्श पूरा होने के बाद राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा अंतिम रूप देने के चरण में है। फिलहाल दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। केंद्रीय मंत्री और रांची से सांसद संजय सेठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच का आदेश देने में राज्य सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है। संसद भवन परिसर में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री सेठ ने कहा कि यदि विद्यार्थी ये परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वे इससे मानने से क्यों इनकार कर रही है।
3: छात्र अडिग हैं कि हम तो जाएंगे और विधानसभा घेरेंगे। कई मांग है कि सीबीआई जांच करा दो और जेएसएससी के एग्जाम कैंसिल करा दो, जो दोषी है उनको पकड़ो और ईडी जांच करा दो। सरकार को क्या आपत्ति है।
0: भाजपा सांसद तरुण चुघ ने विपक्ष के कुछ नेताओं पर झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को जानबूझकर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये नेता इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है जबकि राज्य में उनके गठबंधन सहयोगियों की सरकार है।
4: मेरा निवेदन है कि छात्रों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए और मेरा सभी से निवेदन है आंदोलन हम सब का राइट है, सत्याग्रह हम सब की ताकत है, लेकिन हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।
0: उधर झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में जारी विद्यार्थी आंदोलन का आज 17वां दिन है। विद्यार्थी विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने तथा कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन छात्र अपनी प्रमुख मांगों पर अड़े हुए हैं। के दौरान छात्रों

0: ने पुरानी विधानसभा के पास बैरिकेडिंग पार की और सातवें तथा आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। छह छात्र अब भी अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। तीनों जेपीएससी सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन और तेज हुआ है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
2: श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देशभर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। मंत्रालय ने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करेगी। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कश्मीर के सभी जिलों में तिरंगा यात्राएं और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: अभियान की शुरुआत के साथ ही पुलवामा के त्राल इलाके, अनंतनाग, बारामुल्ला और कई दूसरी जगहों पर तिरंगा यात्राएं निकाली गई, जिनमें युवाओं, छात्राओं, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। श्रीनगर में भी इस अभियान के तहत एक बड़ी तिरंगा रैली की तैयारी चल रही है। कश्मीर भर में जिला प्रशासन आने वाले दिनों में कई तिरंगा यात्राएं और जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। स्थानीय लोग भी इस अभियान के तहत तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उत्साहपूर्वक इसमें भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज राजधानी पटना में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गांधी मैदान स्थित जेपी सर्कल से शुरू यह यात्रा कारगिल चौक के पास समाप्त हुई। यात्रा में स्कूली बच्चों, एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स और आम लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। इस दौरान पूरा शहर तिरंगे के रंगों में सराबोर होने के साथ ही वंदे मातरम और हर घर तिरंगा के नारों से गुंजायमान रहा। इधर तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से इस अभियान के तहत जिला, नगर निकाय और पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली यात्राओं में शामिल होने का आग्रह किया। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उधर नागालैंड के कोहिमा में आज भारतीय जनता पार्टी की नागालैंड इकाई ने हर घर तिरंगा दोपहिया रैली का आयोजन किया। अभी अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं, इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ, असम और मेघालय में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और

0: आंध्र प्रदेश में कल तक बिजली चमकने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा आज शाम दिल्ली के कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन से राज्य के कई हिस्सों में 100 से अधिक सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर लोगों को एहतियात बरतने और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इस बीच भारी वर्षा से हुए भूस्खलन के कारण राज्य में 100 से अधिक सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 255 बिजली ट्रांसफार्मर और लगभग 20 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हैं। कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी से वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशेष प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। श्री भूपेंद्र यादव ने अपने आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
2: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। दुनिया के विभिन्न देशों में कश्मीरी प्रवासी समूहों के ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक बढ़कर 78,585 जबकि निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ 24,599 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील। गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया। 3 अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और आज विश्व सिंह दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का जो पहला गाना है तूफान और दिया। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, संगीत है वसंत देसाई का।

लता मंगेशकर की आवाज में ये मीरा भजन आपने सुना, संगीत वसंत देसाई का, फिल्म का नाम तूफान और दिया। और अब श्रीमती 420 इस फिल्म का गाना आपको हम सुनवा रहे हैं। गीता दत्त की आवाज, जानेसार अख्तर के बोल, संगीत है ओपी नैयर का।

0: गाड़ी रंगीली जिंदगी है, हंसी है जिंदगी है, मजा ये जिंदगी है, तुम मुस्कुराए जा। बड़ी रंगीली जिंदगी है, हंसी है जिंदगी है, मजा ये जिंदगी है, तुम मुस्कुराए जा।
1: एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है आपकी

0: जादू
1: आ रही है।
0: महबूबा महबूबा महबूबा
1: विविध भारती पर
0: सुंदरा सोनिए सुंदरा
1: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। अब जो गीत आपके लिए लेकर आए हैं ये लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में शतरंज फिल्म का गाना है। राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है सी रामचंद्र का।

रंगीन रातें, ये फिल्म का नाम है जिसका गीत अब आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज़ में। केदार शर्मा के बोल, संगीत है रोशन का।

शर्माए कोई हाथ छुड़ा।

0: और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: राजहट फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत।

लीजिए अब सुनिए सीआईडी फिल्म का गाना गीता दत्त की आवाज में, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर।

आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना अब आपको सुनवाते हैं, पॉकेट मार फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और साथियों के आवाजों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, संगीत है मदन मोहन का।

आज के सदाबहार नगर में कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना अब आपको सुनवाते हैं। पटरानी फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में, शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत, शंकर जयकिशन का।

इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सखी सहेली कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

0: सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी
1: और सोनाली पाठक का नमस्कार। क्या
0: कैसी हो
1: हालचाल है?
0: देखिए, हम किसी से जब बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि क्या हालचाल है, क्या हो रहा है आजकल, क्या चल रहा है आजकल। और ये हालचाल पूछना बहुत ही ज्यादा जरूरी है,
1: बहुत जरूरी बात है। और आजकल ऐसे हो रहा है मंजू जी,
0: हाँ?
1: कि ये बात जो है ना, ये युवा के ना पीछे भी छूटता जा रहा है।
0: अच्छा,
1: कि लोग मोबाइल में इतने व्यस्त हो गए, इतने झुके रहते हैं कि वे हालचाल पूछना भी भूल रहे हैं।
0: बहुत गलत बात है ना ये।
1: तो हालचाल पूछते रहना चाहिए, फिर आपस में हो या फिर बुजुर्गों का हो।
0: हाँ बिल्कुल, सभी का हालचाल पूछ लेने से क्या होता है कि सामने वाले के मन में भी एक बात आ जाती कि हाँ, मेरी परवाह करने वाला कोई है। और जब ये बात बुजुर्गों के संदर्भ में आती है तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप उनके बारे में जानते रहिए, उनके हालचाल के बारे में जानते रहिए, और अगर उन्हें कोई समस्या है तो बड़े प्यार से उसे सुलझाइए, क्योंकि आखिर वे हमारे घर के बुजुर्ग हैं, यानी हमारे घर की नींव हैं। और अगर हम उनकी चिंता नहीं करेंगे, उनकी परवाह नहीं करेंगे, उनकी कद्र नहीं करेंगे या उन्हें सम्मान नहीं देंगे तो ये बहुत गलत बात होगी।
1: और ऐसा है ना, हर किसी को इस अवस्था से गुजरना है।
0: बिल्कुल,
1: अगर हम बुजुर्गों की परवाह करेंगे, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो देख के वो भी बुजुर्गों की परवाह करना सीखेंगे।
0: हाँ।
1: अगर हम उनके साथ में बुरा व्यवहार करते हैं तो यही हमारे साथ भी हो सकता है।
0: आज सीढ़ी के जिस पायदान पर बुजुर्ग खड़े हैं, कल हम भी उसी पायदान पर खड़े होंगे। तो इस बात का हमें ज्ञान होना चाहिए, इसीलिए आज हमने विषय चुना है कि बढ़ती उम्र और बुजुर्गों का हठीलापन। तो ये हट वाली जो बात है, तो ऐसा नहीं कि सभी में होती है, लेकिन कई कारण होते हैं इसके पीछे,
1: जिसके पीछे वो हटेले हो जाते हैं।
0: शारीरिक अवस्था भी होती है और बाहर के भी बहुत सारे कारण होते हैं। आसपास का वातावरण हो सकता है, आसपास के लोग हो सकते हैं, परिस्थितियां हो सकती, कोई भी कारण हो सकता है। तो उन कारणों का आज हम विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा
1: कथा सुधा, जिसका सारे श्रोतागण, सारी सखियां इंतजार कर रहे हैं, 73 भाग 1, इसे हम सुनेंगे। और व्यंजन,
0: ये तो एक बहुत ही एक मुख्य हमारा जो कहते हैं सेक्शन हो सकता है या होता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि खाना पीना सभी को पसंद होता है। तो आज कौन से व्यंजन हम खिलाएंगे?
1: पश्चिम बंगाल के व्यंजन में बसंती पुलाव और संदेश, ये इसे सौंदेश भी कहते हैं।
0: जी हाँ। तो हमारा सौंदेश ये है कि आप सुनते रहिए विविध भारती सखी सहेली कार्यक्रम, सुनिए। और ये जो व्यंजन हम थोड़ी देर में बनाने वाले हैं या इसकी रेसिपी जो बनाने वाले हैं, तो इसके बारे में आप बिल्कुल सजग रहिएगा कि किस, देखिए एक व्यंजन होता है लेकिन रेसिपी जो है बहुत अलग तरह से, अलग अलग जगहों पर अलग तरीके से बनाई जाती है। उसका स्वाद भी जैसे जैसे हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं थोड़ा थोड़ा सा अलग होता
1: बदलता जाता है।
0: हाँ।
1: और तो, उसकी जो उसकी मिट्टी की खुशबू है ना,
0: हाँ,
1: वो उस व्यंजन में नजर आती है ना।
0: लेकिन विविध भारती एक ऐसा मंच है कि जहाँ पर हर क्षेत्र के श्रोता इसे सुनते हैं और अपने अपने क्षेत्र के बारे में वो बताते हैं कि वहाँ इसे किस तरह से बनाया जाता है, कब खाया जाता है, इसका रंग कैसा होता है, इसका स्वाद कैसा होता है, इसकी सुगंध कैसी होती है।
1: तो हम श्रोताओं से कहेंगे आप भी लिखकर भेजिए,
0: हाँ?
1: कि आपने ये बसंती पुलाव या सौंदेश बनाया है या नहीं बनाया है,
0: हाँ?
1: और अगर नहीं बनाया तो बनाने वाले हैं क्या, या फिर जिनके घर में बनता है तो वो लिखकर भेजिए। साथ ही बुजुर्गों वाली जो बात कही हमने, तो आपके घर में बुजुर्ग है क्या और किस तरह से उनका हट होता है, कभी बाल हट की तरह भी होता है उनका हट, तो आप उनका हट पूरा करते हैं या नहीं, इस तरह से कमेंट्स हमें जरूर लिखकर भेजिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार है।
0: बिल्कुल, फिलहाल हमें गीत का इंतजार कर
1: सुनते
0: रहे
1: हैं।
2: देख लिया कहां रहता हूं, जहां मौत जिंदगी पर हंसती है।
3: वो दिन दूर नहीं दीपक जब जिंदगी मौत पर हंसेगी।
2: लेकिन कब, कैसे
3: मालूम नहीं। चलो मुझे घर पहुंचा दो।

0: सोनाली, गाना हमने सुन लिया और अब कथा सुधा का वक्त हो गया है। तो आज की जो कहानी है तेतर, इसका पहला भाग हम सुनेंगे। इसके बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने कुछ बातें लिखी है कि इस ये जो शब्द है तेतर, इसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में लिखा है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि तेतर महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध मार्मिक कहानी है, जो 3 पुत्रों के पश्चात पैदा होने वाली कन्या और उससे जुड़े समाज के अंधविश्वासों पर आधारित है। और कहानी का परिचय और मुख्य बिंदु कथानक 3 बेटों के बाद घर में बेटी यानी कि तेतर का जन्म होता है, तो उसके बारे में जो बातें हैं, बहुत मान्यताएं हैं उसके बारे में ये कहानी है। हमारे श्रोताओं ने ये जानकारी हमें लिख करके भेजी, सुन लें अपन।
1: सुनते हैं। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
2: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। कहना न होगा कि प्रेमचंद ने अपने समय के समाज में जो कुछ भी देखा उसका हूबहू सजीव चित्रण भी किया, जो आज के समय में हमें रास्ता दिखाने का भी काम करता है। लड़कियों के जन्म को लेकर बनी हुई मानसिकता और घोर निराशा व चिंता को देखते हुए एक लेखक ने इस कहानी के माध्यम से सभी को आगाह करने का प्रयास किया है। तेतर नाम की कहानी में लेखक ने 3 लड़कों के बाद जन्म लेने वाली लड़की का उल्लेख किया है, जिसे पहले से ही हमारे पुरुष प्रधान समाज में एक आफत और चिंता के रूप में देखा जाता है। कहानी में मुख्य रूप से समाज में एक तेतर लड़की को लेकर फैले हुए अंधविश्वास पर चोट की गई है, जो कहीं न कहीं हमारे बीच के कुछ लोगों द्वारा प्रसारित किया जाता है और इस अंधविश्वास को पुख्ता करने के लिए तरह तरह का स्वांग किया जाता है। जो व्यक्ति इन अंधविश्वासों में यकीन नहीं करता उसे भी इन अंधविश्वास

0: से भरे समाज में डर लगने लगता है। जैसे कि कहानी में लड़की का पिता, जिसका नाम दामोदर है, वो इन अंधविश्वास पर यकीन नहीं करता, पर कहीं न कहीं वो भी अपनी माँ की बातों से थोड़ा घबराया हुआ था। तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। आज आपको सुनवा रहे हैं इस कहानी का पहला भाग।
1: आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसकी चिंता में घर के सभी लोग, विशेषतः प्रसूता पड़ी हुई थी। तीन पुत्रों के पश्चात कन्या का जन्म हुआ। माता सौर में सूख गई, पिता बाहर आंगन में सूख गए और पिता की वृद्धा माता सौर द्वार पर सूख गई। अनर्थ महा अनर्थ, भगवान ही कुशल करे तो हो, ये पुत्री नहीं राक्षसी है। इस अभागिन को इसी घर में आना था, आना ही था तो कुछ दिन पहले क्यों ना आई। भगवान सातवें शत्रु के घर में भी तेतर का जन्म ना दे। पिता का नाम था पंडित दामोदर दत्त, शिक्षित आदमी थे, शिक्षा विभाग में ही नौकर भी थे, मगर इस संस्कार को कैसे मिटा देते जो परंपरा से हृदय में जमा हुआ था कि तीसरे बेटे की पीठ पर होने वाली कन्या अभागिन होती है, या पिता को लेती, या माता को, या अपने को। उनकी वृद्धा माता लगी नवजात कन्या को पानी पी पी कर कोसने।
2: अरे कलमुही है कलमुही, न जाने क्या करने आई है यहाँ। अरे किसी ऐसे के घर जाती जिसके औलाद नहीं है तो उसके तो दिन फिर जाते।
1: दामोदर दत्त दिल में तो घबराए हुए थे, पर माता को समझाने लगे।
3: अम्मा तेतर वेतर कुछ नहीं, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है, ईश्वर चाहेंगे तो सब कुशल ही होगा। गाने वालियों को बुला लो अम्मा, नहीं तो लोग कहेंगे तीन बेटे हुए तो कैसे फूली फिरती थी, एक बेटी हो गई तो घर में कोहराम मच गया।
2: अरे बेटा तुम क्या जानो इन बातों को, मेरे सिर तो बीत चुकी है, प्राण तो उसी में समाया हुआ है। तेतर ही के जन्म से तुम्हारे दादा का देहांत हुआ, तभी से तेतर का नाम सुनते ही मेरा कलेजा कहां उठता है।
3: अम्मा इस कष्ट के निवारण का कोई तो उपाय होगा।
2: उपाय बताने वाले तो बहुत तेरे हैं, और पंडित जी से पूछो कोई ना कोई उपाय बता ही देंगे, पर इससे कुछ होता नहीं है। मैंने कौन से अनुष्ठान नहीं किए, पर पंडित जी की तो मुठ्ठियां गर्म हुई, यहां जो सिर पर पड़ना था वो पड़ ही गया, अब टके के रह गए पंडित जी, जजमान मरे या जिए उनकी बला से, उन्हें दक्षिणा मिलनी चाहिए बस। लड़की तो जरा देखो दुबली पतली भी नहीं है, तीनों लड़कों से हृष्ट पुष्ट है ये, बड़ी बड़ी आंखें हैं, पतले पतले लाल लाल होंठ हैं, जैसे गुलाब की पत्ती, गोरा चिट्टा रंग तो देखो, लंबी सी नाक। कलमुही नहलाते समय रोई भी नहीं, ठुकुर ठुकुर ताकती रही, ये सब लक्षण कुछ अच्छे थोड़े ही हैं। हाँ
1: दामोदर दत्त के तीनों लड़के सांवले थे, कुछ विशेष रूपवान भी ना थे, लड़की के रूप का बखान सुनकर उनका चित्त कुछ प्रसन्न हुआ। बोले,
3: अम्मा तुम भगवान का नाम लेकर गाने वालियों को बुला भेजो, गाना बजाना होने दो, भाग्य में जो कुछ है वो तो होगा ही।
2: क्या बताएं, जी तो हुलसता ही नहीं, लेकिन करूं क्या।
3: अम्मा गाना न होने से कष्ट का निवारण तो होगा नहीं कि हो जाएगा, अगर इतने सस्ते में जान छूटे तो न कराओगा ना।
2: अब बुलाए लेती हूँ बेटा, जो कुछ होना था वो तो हो ही गया।
1: इतने में सौर में से पुकार कर लक्ष्मी ने कहा,
4: अम्मा जी, ओ अम्मा जी, बहू जी कहती हैं गाना वाना कराने का कोई काम नहीं है।
2: भला उनसे कहो चुप बैठी रहें, बाहर निकलकर मनमानी करेंगी, 12 ही दिन हैं, बहुत दिन नहीं है, बहुत इतराती फिरती थी, ये ना करूंगी वो ना करूंगी, देवी क्या है देवता क्या है, मर्दों की बातें सुनकर वही रट लगाने लगती थी, तो अब चुप से बैठी क्यों नहीं रहती हैं।

मैंने तो तेतर को अशुभ नहीं मानती, और सब बातों में जब मेमों की बराबर करती हैं तो इस बात में भी करें, कहो चुप बैठी रहें। और सुनो लक्ष्मी, जाओ जरा गाने वालियों को बुला लाओ, और हाँ सब जगह न्योता दे दो, और पड़ोस में भी कहती जाना। हाँ।

0: सवेरा होते ही लड़का सोकर उठा और आंखें मलता हुआ जाकर दादी से पूछने लगा,
1: बड़ी अम्मा बड़ी अम्मा, कल अम्मा को क्या हुआ बताइए ना।
2: अरे लड़की तो हुई है बेटा।
1: क्या? ओहो हो हो हो, पैजनिया पहनकर छुन छुन चलेगी? जरा मुझे दिखा दो दादी जी, थोड़ा दिखा दो ना।
2: अरे तो क्या सौर में जाएगा है, पागल हो गया क्या? चल बाहर चल, लड़के नहीं जाते अंदर।
0: लड़के की उत्सुकता न मानी, सौर के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया और बोला,
1: अम्मा अम्मा जरा बच्ची को मुझे दिखा दो, एक बार दिखा दो अम्मा।
3: कहाँ जाते हो, बच्ची भी सोई है, चलो बाद में आना।
1: बच्ची को मुझे दिखा दो, जरा दिखा दो, गोद में लेकर देखूंगा।
0: लक्ष्मी ने कन्या उसे दिखा दी तो वहां से दौड़ता हुआ वो अपने छोटे भाइयों के पास पहुंचा और उन्हें जगा जगा कर खुशखबरी सुनाने लगा।
1: अरे छोटू सुनो, अरे छोटू सुनो, उठो उठो। अरे मैं अभी गुड़िया देखकर आ रहा हूँ।
4: कोई लगाओ भैया, नन्ही सी होगी?
1: अरे बिल्कुल नन्ही सी, एकदम गुड़िया जैसी है, गोरी तो ऐसी कि क्या किसी साहब की लड़की होगी। ये लड़की तो मैं लूंगा।
4: हम भी देखेंगे, कोई लगाओ।
1: देखा कैसी सुंदर है,
4: कैसा के मन करके सोए, देखो ना भैया, हमको भी दिखाओ। नहीं नहीं, हमें तो हम भी देखेंगे।
1: खूब द्वार पर बारात आएगी, हाथी घोड़े आतिशबाजी, क्या मजा आएगा,
4: बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा।
0: मंझला और छोटा ऐसे मग्न हो रहे थे मानो वो मनोहर दृश्य आंखों के सामने है। उनके सरल नेत्र मनोल्लास से चमक रहे थे।
4: फूल आया भी होंगे, फिर सारे फूल होंगे, हम भी फूल लेंगे, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, कितनी सुंदर है।
0: छठी भी हुई, बरही भी हुई, गाना बजाना, खाना खिलाना, देना दिलाना, सब कुछ हुआ, पर रस्म पूरी करने के लिए दिल से नहीं, खुशी से नहीं। लड़की दिन दिन दुर्बल और अस्वस्थ होती जाती थी। माँ उसे दोनों वक्त अफीम खिला देती और बालिका दिन और रात नशे में बेहोश पड़ी रहती। जरा भी नशा उतरता तो भूख से विकल होकर रोने लगती। माँ कुछ ऊपरी दूध पिलाकर अफीम खिला देती। आश्चर्य की बात यह थी कि अब की उसकी छाती में दूध ही नहीं उतरा। यूं भी उसे देर से उतरता था, पर लड़कों की बेर उसे नाना प्रकार की दूधवर्धक औषधियां खिलाई जाती। बार बार शिशु को छाती से लगाया जाता, यहां तक कि दूध उतर ही आता था, पर अब की ये आयोजनाएं न की गईं। फूल से बच्ची कुमलाती जाती थी। मां तो कभी उसकी ओर ताकती भी न थी। हां लक्ष्मी कभी चुटकियां बजाकर चमकारती तो शिशु के मुख पर ऐसी दयनीय ऐसी करुण वेदना अंकित दिखाई देती कि वो आंखें पोंछती हुई चली जाती थी। बहू से कुछ कहने सुनने का साहस ना पड़ता था। बड़ा बेटा सिद्धू बच्चे को बाहर ले जाकर खिलाने के लिए बार बार जिद करता तो मां उसे झिड़क देती।

0: हो गए। दामोदर दत्त रात को पानी पीने उठे तो देखा कि बालिका जाग रही है। सामने ताक पर मीठे तेल का दीपक जल रहा था। लड़की टकटकी बांधे उसी दीपक की ओर देखती थी और अपना अंगूठा चूसने में मग्न थी। चुप चुप की आवाज आ रही थी। उसका मुख मुरझाया हुआ था, पर वो ना रोती थी ना हाथ पैर फेंकती थी। बस अंगूठा पीने में ऐसी मग्न थी मानो उसमें सुधा रस भरा हुआ है। वो माता की ओर मुंह भी ना फेरती थी, मानो उसका उन पर कोई अधिकार नहीं, उसके लिए वहां कोई आशा नहीं। बाबू साहब को उस पर दया आई।
1: अरे बच्चे, कितनी प्यारी है गुड़िया। इस बेचारी का मेरे घर जन्म लेने में क्या दोष है? मुझ पर या इसकी माता पर जो कुछ भी पड़े उसमें इसका क्या अपराध? हम कितनी निर्दयता कर रहे हैं। कुछ भावी अनिष्ट की आशंका के कारण उसका इतना तिरस्कार कर रहे हैं। माना कि कुछ अमंगल हो भी जाए तो क्या उसके भय से इसके प्राण ले लिए जाएंगे? अगर अपराधी है तो मेरा प्रारब्ध है। इस नन्हे से बच्चे के प्रति हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी? आ जाओ गुड़िया, आ जाओ।
0: उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे। लड़की को कदाचित पहली बार सच्चे स्नेह का ज्ञान हुआ। वो हाथ पैर उछालकर गुंगुंग करने लगी और दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसे जीवन ज्योति सी मिल गई।

0: प्रातःकाल दामोदर दत्त ने लड़की को गोद में उठा लिया और बाहर लाए।
1: अरे यहाँ क्यों ले आए, पड़ी रहने दो ना वहीं पर। ऐसी कौन सी बड़ी सुंदर है, अब आगन कहीं की, रात दिन तो प्राण खाती रहती है, अब मर भी नहीं जाती कि जान छूट जाए।
2: अरे बस भी करो, मैं से बाहर ले जाता हूँ।
0: दामोदर दत्त उसे बाहर लाए और अपने बच्चों के साथ बैठकर खिलाने लगे। उसके मकान के सामने थोड़ी सी जमीन पड़ी हुई थी, पड़ोस के किसी आदमी की एक बकरी उसमें आकर चरा करती थी। इस समय भी वो चर रही थी। बाबू साहब ने बड़े लड़के से कहा,
2: सिद्धू सिद्धू जरा उस बकरी को पकड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ला ला ला ला ला, लाओ तेरी बहन को दूध पिलाएंगे, शायद भूखी है बेचारी। देखो तुम्हारी नन्नी से बहन है ना, इसे रोज हवा में खिलाया करो।
0: सिद्धू को दिल लगी हाथ आई, उसका छोटा भाई भी दौड़ा। दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ा और उसका कान पकड़े हुए सामने लाए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के थन में लगा दिया। लड़की चुबलाने लगी और एक क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ जाए। लड़की का मुंह खिल उठा, आज शायद पहली बार उसकी शुधा तृप्त हुई थी। वो पिता की गोद में हुमक हुमक कर खेलने लगी। लड़कों ने भी उसे खूब नचाया कुदाया।

कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। आज आपने सुना इस कहानी का पहला भाग। पिता का प्यार, भाइयों का दुलार मिलने से नन्ही बच्ची दिन ब दिन निखरती जा रही है। आगे क्या होता है इसके लिए सुनिए इस कहानी का दूसरा भाग। इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। कहानी में भूमिका सहित पात्रों का परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार जी श्याम, वृद्ध दादी रेणु चतुर्वेदी, दामोदर दीपक के सावलेकर, दामोदर की स्त्री स्वप्निल श्रीवास्तव, लक्ष्मी चंचल वर्मा, बाल कलाकार

0: सोनाली, हमने बरखा फिल्म का ये गाना सुन लिया और उससे पहले हमने मुंशी प्रेमचंद की कहानी तेतर उसका पहला भाग भी सुन लिया। अगला भाग हम जरूर सुनेंगे अगले सोमवार के दिन, लेकिन अभी
1: अब ब्रेक लेते हैं।
0: हाँ

0: ब्रेक का समय पूरा हो चुका है और हम फिर से हाजिर हैं सखियों से बातचीत करने के लिए। और अब अपने विषय पर आते हैं, उससे पहले तुम कुछ कहना चाहती हो?
1: एक हमारे साथी ने लिखा है
0: हाँ
1: मंजू जी कि इस समय मेरी धर्म पत्नी और मैं स्वयं डल लेक के सामने श्रीनगर के होटल के रूम में आनंद ले रहे हैं और अपने शहर अजमेर से लगभग 1,500 किलोमीटर दूर ये हमारी दीवानगी विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम सुन रहे
0: क्या बात है, क्या बात
1: हैं।
0: है। जो सुबह सुरीला सफर जो प्रोग्राम चल रहा था ना, तब भी हमारे इन्हीं श्रोता का फोन आया, मैसेज
1: मैसेज
0: आया था, और उसमें भी उन्होंने कुछ इसी तरह की बात लिखी थी कि वो घूमने गए हैं और वहां पर जो नजारे हैं उसके बारे में लिखा था। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह के अपडेट्स जो है वो हमें देते
1: देते
0: रहते
1: रहते
0: हैं।
1: हैं।
0: और आज हमारा जो विषय है, बुजुर्गों में बढ़ता हठीलापन, इसके बारे में हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें लिखी है।

0: पहले कुछ बात हम अपनी यानी जो हम कहना चाहते हैं वो करते हैं कि कहा जाता है कि बचपन और बुढ़ापा जीवन के दो ऐसे पड़ाव होते हैं जहां व्यक्ति को सबसे अधिक स्नेह, धैर्य और अपनापन चाहिए होता है। फर्क केवल इतना ही होता है कि बचपन की जो जिद होती है वो मासूमियत भरी होती है, लेकिन बुढ़ापे की जो जिद होती है वो कई बार हट का रूप ले लेती है। यानी बच्चों की जिद तो हमें समझ में आती है, हमें ऐसा लगता है कि हाँ बच्चे हैं जिद तो करेंगे, लेकिन वही जब बुजुर्ग व्यक्ति करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, इन्हें ये कैसे हट कर
1: ये
0: सकते
1: क्यों
0: हैं।
1: ऐसा कर रहे हैं, है
0: हाँ
1: ना। वैसे मंजू जी, आज के समय में ये शिकायत अक्सर सुनने को मिलती है कि हमारे पिताजी या माताजी बहुत जिद्दी हो गए हैं, लेकिन यदि इस व्यवहार के पीछे के कारणों को अगर समझा जाए तो पता चलता है कि उनका हठ केवल स्वभाव नहीं बल्कि परिस्थितियां, अकेलापन और भावनात्मक असुरक्षा का ये परिणाम हो सकता है।
0: तो हमें इन कारणों को जानने के बारे में सोचना चाहिए या जानना चाहिए। तो हठीलापन वो स्थिति होती है जब व्यक्ति अपनी बात, अपनी आदत या अपने निर्णय पर अड़ जाता है और दूसरे के विचारों को स्वीकार करने में उसे कठिनाई महसूस होती है। बुजुर्गों में ये जो व्यवहार, ये अक्सर उम्र, अनुभव, स्वास्थ्य और बदलते सामाजिक परिवेश के कारण दिखाई देते हैं। यानी कारण कोई भी हो सकता है,
1: बहुत
0: हमें
1: सारे
0: समझ
1: कारण होते हैं ना।
0: हाँ हमें समझना पड़ेगा।
1: अब जैसे बदलते समय में ये जो स्वीकारना है, इस बदलते समय में खुद को यानी उसके हिसाब से ढालने, इसमें उन्हें कठिनाई आ सकती है। और जिस समाज में उन्होंने जीवन बिताया, आज वही समाज पूरी तरह बदल चुका होता है। नई तकनीक है, नई सोच है, नई जीवन शैली है और नई पारिवारिक मूल्य उनके लिए सहज नहीं होते हैं।
0: बिल्कुल। और जैसे कि इसके बारे में अगर हम एक उदाहरण दें तो हमारे घर में कोई भी बुजुर्ग हो सकते हैं, दादा, दादी, नाना, नानी, ससुर, कोई भी हो सकते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि पूरा परिवार जो है वो रोज एक साथ बैठ करके भोजन करे। लेकिन होता क्या है कि आजकल जिस तरह से नौकरी लोग कर रहे हैं और उनका समय बहुत ज्यादा होता है, नौकरी का, पढ़ाई है या अलग अलग समय के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि परिवार टूट रहा है। जबकि अगर वास्तविकता की तरफ अगर हम नजर डालें तो यही कहा जा सकता है कि दिनचर्या सबकी अलग अलग है, तो परिस्थितियां कुछ बदल गई हैं, लेकिन कुछ लोगों को इन परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है उनके हठीलेपन का।
1: पर हम एक उसमें बीच का एक रास्ता चुन सकते हैं कि भाई ठीक है, दादाजी का मन है, उनकी इच्छा है, तो हम हफ्ते में एक बार या दो बार तो हम कर ही सकते हैं,
0: हाँ, जब
1: कोशिश तो
0: संभव
1: कर
0: हो।
1: ही सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: तो होता यूं है कि लोग खाना खाने बैठे हैं, उस वक्त भी उनका ध्यान नहीं होता है कि खाने में नमक ज्यादा है या कुछ कम है या कुछ है, वो तो उस मोबाइल देखते हुए खाते हैं।
0: हाँ, और या तो टीवी देखते हुए या मोबाइल देखते हुए, जबकि पहले के समय में ऐसा नहीं होता था, पूरा परिवार साथ में बैठ करके एक दूसरे से बातचीत करते हुए भोजन करते, तो उसमें सुख दुख का बंटवारा भी हो जाता था, सब अपने मन की बात कहते थे, दिन दिन उस घर में एक विशेष था, तो वो एक बहुत ही तो कई बार लोगों को ये बात ठीक नहीं लगती है।
1: तकलीफदायक एक बात है मंजू जी, कि आजकल ना सम्मान थोड़ा सा कम देने लगे हैं लोग, कि दादाजी

और पहले के ज़माने की तुम बात कर रही हो तो जो बड़े लोग होते थे ना, एक बार अगर उन्होंने कह दिया कि ये होना है यही होगा, तो हमारे जो पिताजी थे वो उनकी बात को बिना सोचे समझे मान लिया करते थे। लेकिन अब शायद थोड़ी सी परिस्थितियां बदली हैं और लोग ये सोचते हैं कि नहीं, नए ज़माने या नई तकनीक या नए जो चाल चलन या जो तरीका जो है चलन में जो तरीका है उसके बारे में शायद बुज़ुर्गों को इतना पता ना हो, तकनीक बहुत कुछ बदल गई है तो हमें क्या करना है ये हमें ही ज़्यादा अच्छी तरह से मालूम है। शायद इस सोच की वजह से भी हम पूछते नहीं हैं उनसे, और ये भी एक कारण है कि ये उनके मन में कुछ इस तरह की

0: भावनाएं पैदा करते हैं बुजुर्गों के मन में कि अरे अब हमारी तो कोई आवश्यकता ही नहीं बच्ची, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। और फिर वो अपने महत्व को शायद ये चाहते हैं कि हमारा भी कुछ महत्व बताने के लिए भी हो सकता है, ये एक कारण कि उनमें हठीलापन आ जाए
1: और कभी कभी रूट भी जाते हैं वो।
0: बिल्कुल, तो उन्हें मनाना ये भी हमारी जिम्मेदारी होती है। गीत सुन लें यहाँ पर,
1: सुनते हैं गीत।

0: मंजू जी,
1: हुँ?
0: हमारे एक सखी ने लिखा है, मैं इस समय बेटी के घर बर्लिन से सखी सहेली कार्यक्रम सुन रही हूँ। इस समय यहाँ 12:05 हुए हैं, इंडियन टाइम से 3.5 घंटे पीछे हैं।
1: क्या
0: कितना
1: बात
0: अच्छा लगता है
1: है।
0: ना।
1: हाँ, समय कोई भी हो, लेकिन अगर आप विविध भारती सुन रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी आनंद की बात
0: बात
1: है।
0: है।
1: चलिए, हमारा जो विषय है उस पर हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारी बातें लिखी। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज के मोबाइल और डिजिटल युग में सबसे बड़ा बुरा हाल जो है वो उम्र दराज और बुजुर्गों का है। जो कभी समाज के ऊपरी पायदान पर होते थे, उसे आज समाज कोई पूछता भी नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा जीवन का अनुभव उनके पास होता है और उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहले समाज और परिवार के सभी बड़े काम जिन वडिलों को पूछे, वडिल यानी बड़े लोगों से पूछे
0: बुजुर्ग
1: बिना नहीं होता था, आज उनको पूछा नहीं जाता है। तो ये गलत है। अगर आप किसी भी घर में ऐसा होता है
0: तो वो
1: तो ये
0: गलत
1: नहीं
0: है
1: होना चाहिए।
0: जी। एक साथ ही लिखते हैं मंजू जी कि मैं भी 75 साल का बुजुर्ग व्यक्ति हूँ, मुझ में कोई हठीलापन नहीं है, घर के सभी सदस्य मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मैं उन सभी की खबर ख्याल रखता हूँ। सुबह विविध भारती पर जागो, सुबह हो गई सुनते हुए व्यायाम प्राणायाम कर लेता हूँ, शाम को इवनिंग वॉक करने चला जाता हूँ। इन सभी के अलावा विविध भारती फेसबुक पेज से कई श्रोता मित्र, उनसे जुड़ा हुआ हूँ मैं और उनके लिए

0: विविध भारती के लिए यही कहता हूँ कि तेरे पास आकर मेरा वक्त गुजर जाता है, दो घड़ी के लिए नहीं, जिंदगी की हर घड़ी के लिए गम जाने किधर चला जाता है पता ही नहीं
1: क्या
0: चलता।
1: बात है, जिंदगी के प्रति हमारा जो नजरिया होता है ना
0: जी,
1: वो बहुत महत्वपूर्ण होता है।
0: सकारात्मक होना चाहिए।
1: बिल्कुल, शारीरिक अवस्था चाहे कुछ भी हो, चाहे हम जवान हो या ढलती उम्र हो या बुढ़ापा हो, लेकिन जब हमारा नजरिया सही होता है तो जो शारीरिक परिस्थितियां हैं उनमें भी कुछ तो बदलाव आ ही
0: आ
1: जाता
0: ही
1: है।
0: जाता है, यानी और है ना छोड़ देने की आदत कि ठीक है उनके हिसाब से चलो, या फिर है ना कि हर चीज को दिल से लगाने की जरूरत नहीं है।
1: हमें भी ये सोचना चाहिए कि अगर हमारी उम्र इतनी बड़ी है तो परिस्थितियों में बदलाव आना स्वाभाविक बात है। उन परिस्थितियों से अगर थोड़ा सा सामंजस्य बनाने की कोशिश की जाए, अपने नजरिए को थोड़ा बदल दिया जाए कि हाँ ये बदलाव तो होगा ही, हमारे जमाने में ऐसा होता था लेकिन इस जमाने में ऐसा हो रहा है, तो हमें भी इस समय के अनुसार चलना है, ये अगर सोच थोड़ी सी कर ली जाए तो भी बहुत सारी परेशानियों से हम बचे रह सकते हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं कि बढ़ती उम्र और बुजुर्गों का हठीलापन। भाई, बढ़ती हुई उम्र एक तो वैसे ही खतरे की घंटी है, ऊपर से उनका हठीलापन, यह तो ऐसे ही हुआ जैसे सोने पे सुहागा नहीं। ये हमारा सोचना ऐसा है कि ऐसी बात नहीं है, सोने पे सुहागा वाली बात नहीं है ये। तो इन्होंने ऐसा कहा है कि हठीले लोगों से लगता है कि आप सभी का पाला पड़ा नहीं है, और इस तरह की बात लिखी है। हमारा इनसे ये कहना है कि बुजुर्गों के बारे में आप इस तरह से ये लिखना थोड़ा ठीक नहीं है, उन्हें थोड़ा आदर भाव से
0: वे सिर्फ
1: कहें। उनकी
0: सम्मान
1: समस्या,
0: चाहते।
1: बिल्कुल, उनकी जो समस्या है उसकी तरफ हमारी नजर होनी चाहिए, और उसे कैसे दूर किया जा सकता है और उनकी समस्या को समझने का प्रयास हमें जरूर करना चाहिए। कि जैसे कई बार होता है कि उम्र के हिसाब से हमारे जो सिर के बहुत सारे अंग होते हैं वो थोड़े से मंद पड़ने लग जाते हैं, सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लग
0: भूलने
1: जाती है,
0: लगते हैं।
1: भूलने लगते हैं, तो इस तरह के जो बदलाव आते हैं उससे भी ये समस्या होती है। हमें ऐसा लगता है कि हठीलापन है, जबकि ऐसा वो करते नहीं है, बल्कि ऐसा हो जाता है कि वो अपनी एक बात से चिपक जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो हठीलापन कर रहे हैं, तो हमें इन बातों को समझना होगा।
0: एक साथी लिखते हैं कि बुजुर्गों की जिद से निपटने के उपाय धैर्य से सुने, उनकी बातों को काटे नहीं, उन्हें महसूस कराए कि उनकी राय क्या में महत्वपूर्ण क्या है, सम्मान दे, उनके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाए, आदेश देने के बजाय प्यार से सुझाव दे, सक्रिय रखे उन्हें, सैर योग या पारिवारिक गतिविधियों में शामिल करे।
1: बिल्कुल, एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि बुजुर्गों का हठीलापन कोई बीमारी नहीं बल्कि उनके जीवन के इस पड़ाव की एक पुकार है, जो अपनों का साथ और सम्मान चाहती है। उन्हें बदलने की कोशिश करने के बजाय उनके इस व्यवहार को धैर्य और प्रेम से संभालना ही एक परिपक्व समाज और परिवार की पहचान होता है। तो ये बहुत सारे श्रोताओं ने बातें लिखी है, और भी कोई बात अगर तुम्हारे पास है तो तुम पढ़ के बता सकती हो हमें।
0: जी, एक साथी लिखते हैं कि बढ़ती उम्र में बुजुर्गों में हठीलापन आना एक बहुत ही मुख्य समस्या है या आम समस्या है। मुख्य कारणों में बढ़ती उम्र तो है, इसके चलते मुख्य कारणों में स्वतंत्रता खो देने का डर होता है, शारीरिक या संज्ञात्मक कमी, डिमेंशिया के कारण पराधीन होने का मनोवैज्ञानिक डर बना हुआ रहता है, जिसके कारण हमें उनमें बच्चों की तरह हठीलापन का एहसास होने लगता है। खासकर जब बढ़ती उम्र में उनकी उपेक्षा होने लगती है तब उनके स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। इसलिए उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, प्यार से समझाकर उनकी भावनाओं का सम्मान करें।
1: बिल्कुल, अब हम संगीत का भी सम्मान करते हैं, एक गीत सुन लेते हैं यहाँ
0: सुनते
1: पर।
0: हैं गीत।

0: ये फिल्म अगर देखी हो ना, तो इसमें जो ये गाना है ना, दादी अम्मा मान जाओ, तो दादी के जो पोते होते हैं वो किस तरह से बड़े प्यार से दादी अम्मा को मनाते हैं, तो वो वाकई में देखने लायक है।
1: और ऐसे ही अगर दादी को या दादा को मनाया जाए तो दादी या दादा रूठेंगे ही नहीं, बिल्कुल से मान जाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही प्यार और ऐसा ही सम्मान उनके प्रति होना बहुत आवश्यक है। अब कुछ खाने पीने की बातें हो जाए।
1: आज हम पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाले हैं।
0: हाँ, जो बसंती चावल और सौंदेश की हम बात कर रहे हैं, एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बसंती चावल पंजाब के बहुत सारे प्रांत में बसंत पंचमी के दिन बनाया जाता है, जिसमें बासमती चावल को घी में पकाते हैं और उसमें केसर, ड्राई फ्रूट और चीनी का सिरप मिलाकर बनाते हैं। और मैंने अपने पड़ोसी के घर ये खाया है और बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी के साथ एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि सौंदेश तो खाने के लिए मिठाई की दुकानों से मिल जाता है, बंगाली सहेली के घर पर बहुत सारे हमने बंगाली व्यंजन खाए हैं।
1: एक ने सौंदेश की रेसिपी लिखकर भेजी है हमारे एक साथी ने। इसकी सामग्री और तैयारी, तो दूध 1 लीटर फुल क्रीम दूध लेना है, चीनी 3 से 4 बड़े चम्मच लेना है, इलायची पाउडर छोटा आधा चम्मच और नींबू का रस या सिरका 2 बड़े चम्मच दूध को फाड़ने के लिए।
0: बिल्कुल।
1: बनाने के लिए छेना भर छोटा आधा चम्मच और नींबू का रस या सिरका 2 बड़े चम्मच दूध को फाड़ने के लिए।
0: बिल्कुल।
1: बनाने के लिए छेना बनाए, दूध को उबाले, फिर गैस बंद कर दे और नींबू के रस या सिरके में थोड़ा सा पानी मिलाकर धीरे धीरे दूध में डाले ताकि वे आराम से फट जाए। अब पानी निकाल ले। अब फटे हुए दूध को सूती कपड़े में छान ले और साफ पानी से धोकर अतिरिक्त पानी निकालकर उसे निचोड़ ले। अब उसको अच्छे से मैश करना है, उसको मसलना है। छेने को प्लेट में निकालकर हथेलियों से 7 से 8 मिनट तक चिकना होने तक मस ले। अब इसको पकाना है। इसमें अब पकाने के लिए इसमें पीसी चीनी डालना है मसलने के बाद में, और इलायची पाउडर मिलाए और मिश्रण को पैन में धीमी आंच तक 3 से 4 मिनट तक नरम होने तक पकाए और ठंडा करें और इसे आकार देना है। हाथों में घी लगाकर मिश्रण की छोटी छोटी लोइयां बनाएं और मनचाहा आकार देकर पिस्ता से या फिर काजू या फिर बादाम से सजा दे।
0: बिल्कुल सही बात तुमने कही है कि किस तरह से सजाया जाए। लेकिन सोनाली, एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि पहले के जमाने में चाहे कोई त्योहार आए या कोई पर्व हो, कोई उत्सव हो, तो घर में ही सारी मिठाइयां
1: बनाई जाती थी।
0: हाँ, और वो बड़ी स्वादिष्ट भी लगती थी और कई कई दिनों तक हम उसे खाते थे। स्वाद मुंह से जाता ही नहीं था। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं कि बनाने का समय ही नहीं है तो बस बाजार से ले आओ और खा लो
1: और फ्रिज में रख दो।
0: हाँ, फ्रिज में रख दो। तो इसकी बजाय हम कभी कभी ये बनाने की अगर कोशिश करें तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि घर की बनी हुई जो मिठाइयां होती है उसका स्वाद एकदम अलग होता है और शुद्धता की भी तो बात है ना। हमें पता है कि हमने कौन कौन सी सामग्री इसके अंदर मिलाई है, किस तरह से बनाया। और अगर घर में बनता रहेगा तो ये जो रेसिपी है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये
1: ट्रांसफर होती रहेगी।
0: अन्यथा अगर आगे हम नहीं बनाएंगे तो आगे वाली पीढ़ी को तो पता ही नहीं चलेगा कि इन पर्वों पर, इन उत्सवों पर क्या बनता था हमारे घर में और कैसे बनाया जाता है।

0: तो ये भी एक बात है ना।
1: और जब हम घर में बनाते तो अच्छे हाइजीन का ध्यान रखते हैं,
0: हाँ
1: साफ हाथ धोकर फिर हम ढक कर रखते हैं कि उसमें कुछ कीड़ा ना लग जाए, इसलिए हम कितना ध्यान रखते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये
0: और
1: ध्यान रख के बनाना बहुत जरूरी
0: हाँ,
1: है।
0: और पहले के जमाने में तो मैंने ये भी देखा है कि जब ये ऐसे पर्व उत्सव आते थे तो अपने घर में क्या बना है एक प्लेट भर के हम अपने पड़ोसियों के और रिश्तेदारों के घर भी देने के लिए जाते थे, और वहां से भी प्लेट
1: उनके
0: भर के
1: आते
0: आता
1: थे।
0: था, तो हमें ये पता चलता था कि वहां क्या बनता है और उनकी उसी जो मिठाई है उसका स्वाद वहां का कैसा है। अगर हमें ऐसा लगता था कि नहीं ये हमारे स्वाद से ज्यादा अच्छा है तो हम कोशिश करते थे कि
1: वैसा
0: वैसा
1: बनाया,
0: बनाया जाए।
1: यानी संस्कृतियों का भी आदान प्रदान पहले हुआ
0: बिल्कुल
1: करता था।
0: होता था, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि घर में इस तरह की रेसिपी बनाना
1: बहुत
0: चाहिए हमें।
1: जरूरी।
0: चलिए बसंती पुलाव किस तरह से बनाया जाए, हमारे श्रोता ने ये बात लिख करके भेजी है। तो बसंती पुलाव एक पीले सुनहरे रंग का सुगंधित मीठा सा चावल का व्यंजन है। बसंती नाम इसके सुंदर पीले रंग से जुड़ा है। इसे विशेष अवसरों, पूजा और पारिवारिक समारोहों में बनाया जाता है। मुख्य विशेषताएं उन्होंने लिखी कि आमतौर पर सुगंधित चावल का इस्तेमाल किया जाता है। घी, हल्दी या केसर से इसका आकर्षक रंग और खुशबू आती है। इसमें किशमिश और काजू जैसे मेवे डाले जा सकते हैं। इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता आदि मसाले इसकी सुगंध बढ़ाते हैं, और बंगाली भोजन में इसे अक्सर आलू की या दम या अन्य सब्जियों के साथ परोसा जाता है। और बसंती पुलाव की खासियत यह है कि इसमें मीठे और मसालेदार स्वाद का एक सुंदर संतुलन मिलता है। ये बात इन्होंने लिख करके भेजी है, और अगर इसकी रेसिपी भी हमारे साथियों ने लिख करके भेजी है तो वो भी हमें बताना चाहिए।
1: कितना उसमें, यानी 2 कटोरी चावल है तो उसमें कितना तेल लेना है, फिर कौन से खड़े मसाले का इस्तेमाल किया जाता है, फिर पानी कितना डालना है, इस तरह से भी अगर लिख के भेजे ना तो अन्य श्रोता जो घर में सुन रहे हैं उन्हें भी और भी सहूलियत होगी बनाने में।
0: बिल्कुल। और यहाँ एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे इन व्यंजनों की इन्होंने बात की कि इसमें गरम मसाले भी मिलाए जाते हैं और मीठा भी स्वाद आता है, तो जो गरम मसाले एक संतुलित मात्रा में मिलाए जाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बड़े हितकर होते हैं। तो पहले के जमाने के जो भी मीठे व्यंजन, चाहे कोई भी और व्यंजन हो, तो उनमें स्वाद के साथ सेहत का भी पूरा
1: बहुत
0: खजाना
1: ध्यान
0: छिपा
1: रखना
0: हुआ
1: चाहिए।
0: था। तो ये इसलिए भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि घर में बनाएंगे तो हम इन बातों का भी ख्याल रखेंगे
1: और है ना,
0: जो
1: घर
0: हमारे
1: में मंजू जी जो बनाए जाते हैं ना मौसम के हिसाब से बनाए जाते हैं, कि जैसे सर्दियों में गोंद के लड्डू सबके घर में बनते ही बनते थे उस जमाने में, फिर अभी बारिश का मौसम आएगा तो अभी मकई आ रही तो मकई के व्यंजन बनते ही थे, क्योंकि हम साल भर उस वक्त सब चीजें नहीं मिलती थी।
0: बिल्कुल। तो इन बातों का ख्याल रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, चलो एक गीत सुनते हैं।
1: सुनते हैं।

0: चंचल।
1: सोनाली, इस गाने में जो एक शब्द है ना, धीरे से तेरा ये मुस्काना, बड़ा प्यारा लगता है। घर में भी जब कोई अच्छी सी कोई मिठाई मम्मी दादी नानी के हाथ से बनती है और वो हमें पसंद हो, तो धीरे से एक मुस्कुराहट हमारे भी चेहरे पर आती है ना।
2: और वो खुशबू है ना,
1: हाँ?
2: वो खुशबू से ही हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। खाने के पहले, चखने के पहले ही उस खुशबू से जो घर में इतनी खूबसूरत महक आ जाती है ना, कि हमें ऐसा लगता है अरे वाह, आज तो कुछ अच्छा खाने को मिलेगा हमें।
1: बिल्कुल।
2: और एक हमारी सखी ने भी लिखा है कि हम जो संदेश है वो हम गुड़ का हमारी सहेली बनाती है।
1: अच्छा,
2: तो आजकल जो हेल्दी ऑप्शन लोग चुन रहे हैं कि शक्कर के बजाय गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। उसमें स्वाद भी बहुत अच्छा होता है और सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और कहते हैं कि रसोई घर तो एक प्रयोगशाला होती है, जितने प्रयोग करेंगे उतनी नई नई बातें हमें पता चलेगी। चलिए, अब एक बात हमें ये पता चल गई कि कार्यक्रम का समय पूरा हो चुका है, तो अब हमें सखियों सखाओं से आज्ञा लेनी होगी। तो आज्ञा दीजिए आप सभी को मंजू द्विवेदी
2: और सोनाली पाठक का
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: इसको सिक्रीट करती है, और ये बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, लेकिन इसका असर बहुत ही सीरियस होता है। चाहे वो कम हो जाए तो भी उसका असर बहुत सिग्निफिकेंट होता है, और वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो भी उसका असर काफ़ी गंभीर होता है। तो एक तरह से एक बैलेंस होना चाहिए हार्मोन के लेवल में। अगर हार्मोन्स के लेवल का बैलेंस ख़राब हो गया तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होंगे, और ये बहुत सारे हार्मोन्स से बॉडी के अंदर और नए नए और निकलते जा रहे हैं, जैसे जैसे रिसर्च हो रहा है, साइंस प्रोग्रेस कर रहा है वैसे वैसे।
1: महिलाओं में ये समस्या आमतौर पर ज्यादा देखी जाती है।
0: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर अब मैं बोलूँगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। तो जो हमारे वार्ड में एडमिशंस होते हैं उसमें भी फीमेल पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू मेल पेशेंट्स के।
1: जी डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आने से पहले जब मैं आपसे कुछ बातें कर रहा था तो आपने कुछ दिलचस्प बिंदु उठाए थे अपने अनुभव के, और उसमें हार्मोन्स के जरिए हड्डियों पर होने वाले असर की आपने बातें की, तो हम सब इसे सुनकर चौंक गए। तो मुझे लग रहा है कि क्यों ना इस कार्यक्रम में वो बातें आप बताएं कि ये कितना महत्वपूर्ण है, हार्मोन्स आपकी हड्डियों पर सीधे असर करते हैं।
0: बहुत ही अच्छा सवाल है, और इस सवाल का जवाब देने में मुझे बहुत मज़ा आएगा,
1: जी
0: क्योंकि ये जो एरिया आपने चूज़ किया या अपन ने जो चूज़ किया कि कैसे बोन्स हार्मोन्स को अफेक्ट करती है, तो इसके बारे में जो जानकारी, तो सबसे पहले मैं इसमें आपसे और हमारे विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हॉर्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। और सबसे सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे महिलाओं में महीना बंद हो जाता है जिसको हम मीनोपॉज बोलते हैं या माहवारी का बंद होना बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हार्मोन्स बनता है उसका नाम होता है एस्ट्रोजन, वो एस्ट्रोजन का हार्मोन का लेवल एकदम कम आने लग जाता है, और उसकी वजह से जो कॉमन सिम्टम्स तो महिलाओं में होता ही है कि जैसे चेहरे पे पसीना आना है, घबराहट होना है, मन उदास होना है, ये सारे सिम्टम्स उस टाइम पे होते हैं। इस्ट्रोजन हार्मोन का इफेक्ट बोन्स पे भी बहुत होता है, तो अगर वो हार्मोन का जो एक पर्टिकुलर लेवल चल रहा है अचानक हार्मोन्स लेवल गिर जाता है तो उससे बोन्स वीक होना शुरू हो जाती है, और उससे जो प्रॉब्लम होती है उसको हम बोलते हैं पोस्ट मीनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये बहुत ही कॉमन बीमारी है और ऑलमोस्ट 30-40%, 50% महिलाओं को होता है, और वो पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जबकि उस टाइम में उसको इंटरवीन करके उनकी बोन हेल्थ को अपन अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं।
1: क्या ये मुमकिन है कि इस तरह के मरीज पहले ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के पास जाएं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उनकी समस्या की जड़ क्या है और चीजें दूसरी दिशा में चली जाएं?
0: बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, और उसका एक रीजन है कि आम पब्लिक को एंडोक्राइन डिपार्टमेंट के बारे में ज्यादा पता नहीं है, और ज्यादा पता है तो उनको यही जानते हैं कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मतलब है कि वो डायबिटीज को देखता है, थायराइड डिसऑर्डर्स को देखता है या मोटापे को देखता है, तो ये एक तीन डिसऑर्डर्स के लिए उनको पता है कि ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट देखते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो आपकी बोन्स की देख रेख करते हैं, उसमें जैसे एक हार्मोन का नाम होता है पैराथायरॉयड हार्मोन, एक होता है विटामिन डी, एक होता है और भी कुछ कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो तो मैं यहाँ पे बताने का फायदा नहीं, पर ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं, और इन दोनों इंपॉर्टेंट हार्मोन के बारे में जो इनका कैसे बनता है, ये कैसे काम करता है, इसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो, उसके अंडरस्टैंडिंग जो पढ़ाई जाती है, समझी जाती है, वो एंडोक्राइन डिपार्टमेंट वालों के थ्रू होती है। तो अगर इससे कोई बीमारी होती है तो अगर आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का कंसल्ट करेंगे तो वो बीमारी जल्दी से पता चल सकती है और जल्दी से उसका इलाज हो सकता है, उसका आउटपुट बहुत अच्छा हो सकता है। पर आम पब्लिक को ये पता है कि ये हड्डी का बीमारी, तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का इसमें कोई रोल नहीं है, बट ऐसा नहीं है। मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आपको हड्डी का किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, आप एक बार जरूर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। और जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने सुना है या देखा है हमने कि जो छोटे बच्चे होते हैं 2 साल के, 4 साल के, या जन्म के तुरंत बाद उनको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो इस तरह के फ्रैक्चर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं हॉर्मोन्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, तो उसका अगर टाइम पे पता चले तो उसका बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। ऐसे एक दूसरा डिसऑर्डर्स होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड की वजह से, जब हार्मोन ज़्यादा बन जाता है तो उसकी वजह से आपके शरीर के अंदर कैल्शियम ज़्यादा बनता है, आपको रीनल स्टोन्स हो जाते हैं, आपको बार बार पथरी बनती है, और आप बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं, पथरी का ऑपरेशन करके निकलवाते हैं, पर आप उसके जड़ में नहीं पहुंच रहे, और उसकी जड़ में नहीं पहुंचने की वजह से कि आपका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है,

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। सेहतनामा कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर संजय भदादा से, जो एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, यानी ऐसे विशेषज्ञ जो हार्मोन्स, ग्रंथियों और एंडोक्राइन सिस्टम के विशेषज्ञ होते हैं। तो चलिए करते हैं बातें डॉक्टर संजय भदादा से। इनसे बातचीत आपके इस दोस्त यूनुस खान ने ही की है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और इस समय सेहतनामा कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय भदादा, जो चंडीगढ़ के पीजीआई में एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं और इस दिशा में उन्होंने बहुत सारा रिसर्च का काम भी किया है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में।
1: धन्यवाद बुलाने के लिए विविध भारती से।
0: जी डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, जिसका नाम लेना ही बड़ा मुश्किल है, इसका काम क्या है?
1: सो अगर आपको मैं सिंपल शब्दों में समझाना चाहूंगा तो एंडोक्राइन डिपार्टमेंट या एंडोक्राइन जो ब्रांच है, हार्मोन से डील करती है।
0: जी।
1: और हार्मोन्स एक तरह से एक पदार्थ है जो आपके शरीर में है, जो बहुत सारी ग्लैंड्स

0: उसका सही इलाज नहीं हो रहा तो आपको प्रॉब्लम चलता ही रहता है, और अल्टीमेटली इसकी वजह से किडनी खराब हो जाती है, आपको किडनी डिजीज होता है, किडनी फेलियर हो जाता है। तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आपको, जैसे मैंने एक और चीज बता दी एक तरह से, कि आपको बार बार पथरी बन रही तो आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। ये
1: यहां
0: दूसरा
1: मुझे
0: इंजन
1: एक कंफ्यूजन हो रहा है, और वो ये हो रहा है कि अब जैसे आपने कहा कि हड्डियों की समस्याएं हैं, तो अब अमूमन क्या होता है कि हड्डियों के डॉक्टर के पास व्यक्ति जाता है, तो कैसी परिस्थितियों में व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि ये पथरी की समस्या है तो मुझे किडनी स्टोन के डॉक्टर के पास नहीं जानी है, ये हड्डियों की समस्या है तो मुझे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास नहीं जाना है, ये यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना है, ये डिसाइड कैसे होगा?
0: तो मैं सबसे पहले ही आपको बोलता हूँ, अपन एक ही क्वेश्चन में तीन चार आंसर पूछे हैं तो वन बाय वन लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपको हड्डी के फ्रैक्चर के बारे में।
1: जी,
0: तो मैं ये बोलूँगा कि कोई भी फ्रैक्चर जो कि ट्रोमा की वजह से हुआ है, जैसे रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, जैसे और किसी वजह से चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, तो उसका बेस्ट डॉक्टर है ऑर्थोपेडिक सर्जन। वो
1: जो
0: उसके
1: टूट फूट हुई है।
0: टूट फूट हुई उसके लिए जाना, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट का नाम ही हड्डी जोड़ तोड़ विभाग है
1: अच्छा
0: ना, तो उनके पास जाना है। लेकिन सपोज आप बाथरूम में स्लिप कर गए,
1: जी,
0: फ्रैक्चर हो गया, या हल्का धक्का लग गया, फ्रैक्चर हो गया, दो सीढ़ी स्किप हो गए, गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, या अपने आप फ्रैक्चर हो गया, इन सब के लिए आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो अगर फ्रैक्चर एक्सटेंसिव ट्रॉमा की वजह से हुआ तो आपको जाना है ऑर्थोपेडिक्स के पास। पर जो माइनर ट्रॉमा से फ्रैक्चर हो रहा है, अपने आप हो रहा है, फैमिली में फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, उसके लिए आपको जाना है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के।
1: बिल्कुल साफ कर दिया आपने
0: बिल्कुल।
1: इस मामले को।
0: अब उसके बाद दूसरी बात जो आती है कि आपने पूछा पथरी के बारे में,
1: जी
0: तो पथरी क्या होता है कि आमतौर पे पथरी 2-4% लोगों को पानी कम पीने की वजह से बन जाती है। पर अगर पथरी बार बार बन रही है, अगर जिंदगी में किसी को पथरी एक बार बन गई ठीक है, वो बन सकती है, लेकिन आपको बार बार पथरी बन रही, बार बार दर्द हो रहा है, इमरजेंसी जाना पड़ रहा है, या आपके यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, वो आपको ऑपरेशन करके पथरी निकाल रहे हैं, 3 साल बाद फिर पथरी बन गया, इस तरह का तो प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब है कि वो यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि उसका इलाज लेना हो सकता है, लेकिन उसको क्यों बन रहा है उसका कारण जानने के लिए आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा।
1: जी, मेनोपॉज की बात चल रही थी और आपने कहा कि कुछ खास लक्षण होते हैं जिनसे हर महिला को उस समय गुजरना पड़ता है, अचानक वजन बढ़ जाना, वाटर रिटेंशन, है ना, ये तमाम चीजें हैं, तो क्या ऐसे समय में ये दौर अपने आप निकल जाता है या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की मदद लेनी जरूरी होती है?
0: इसका आंसर ऐसा हो सकता है कि बहुत बार जो ये सिम्टम्स होते हैं सभी महिलाओं को एक जैसे नहीं होते हैं,
1: जी
0: कुछ महिलाओं को पता भी नहीं चलता कि उनका मेनोपॉज हुआ और निकल गया, तो उनको लिए कुछ करने का जरूरत नहीं है, बट उनके लिए करना है कि अच्छा एक्सरसाइज करना चाहिए। अक्सर अमूमन ये होता है कि हमारे घर परिवार में माताएं बहनें अपने आप को इग्नोर करती है अपनी हेल्थ को, और घर के सब लोगों के हेल्थ का ध्यान रखती है कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, बेटे ने खाना खाया कि नहीं खाया, पोते ने दूध पिया कि नहीं पिया, लेकिन वो अपने दूध पीने का ध्यान नहीं रखती है, अपना दही खाने का ध्यान नहीं रखती है, अपनी एक्सरसाइज नहीं करती, वो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अगर बिना किसी सिम्टम के लिए निकल जाए तो कुछ नहीं करना, अपना एक्सरसाइज चालू रखो, अपना कैल्शियम विटामिन डी का डाइट अच्छा रहो और वजन नहीं बढ़ने दो। लेकिन कुछ लोगों को बहुत मूड स्विंग होता है, अचानक पसीना आ जाता है, घबराहट होता है
1: जी
0: और ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा, इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो इस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी से होते हैं। तो इस तरह के लोगों को आपको कंसल्ट करना चाहिए विदाउट टाइम वेस्टिंग। जैसे हम हमारे मैं एक इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ, तो हमारे जो रेसिडेंट्स आते हैं उनको पढ़ाने के लिए जब बात चलती तो किसी महिलाओं की हिस्ट्री लेनी होती है, तो मैं उनको पहला एक सवाल पूछता हूँ कि उनको उनके महीने के बारे में आप जरूर पूछें कि माहवारी कैसी चल रही है। माहवारी ठीक चल रही है तो उनको कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने का चांस है। इसलिए हम बोलते हैं कि वुमेन्स के अंदर माहवारी रेगुलर होना एक बैरोमीटर ऑफ हेल्थ है। अगर आपकी माहवारी ठीक चल रही है तो आपका हेल्थ बिल्कुल ठीक है। और हमने ऐसा देखा भी हमारे घर परिवार में, बचपन में मम्मी कहती थी कि अरे महीना एक महीना भी चूक गया तो आगे लग गया तो घर वालों को टेंशन रहता है ये क्यों हो रहा है, होना नहीं चाहिए। तो सेम चीज है यहाँ पे भी, वो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उस हिस्ट्री से बहुत सारी डिजीज आपको पता चल सकती है। अगर किसी का महीना गड़बड़ हो रहा है तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर से बहुत कॉमन होता है,
1: तो डॉक्टर के पास तुरंत जाना
0: बिल्कुल
1: चाहिए।
0: जाना चाहिए, बताना चाहिए ये, और बहुत सारी चीजें शक्ल देख के डायग्नोज कर सकते हैं हम।
1: तो इस बारे में बात करेंगे कि शक्ल देख के आप कैसे डायग्नोस
0: बिल्कुल
1: करते हैं,
0: बिल्कुल
1: बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि आप कहीं नहीं जाइएगा,
0: बिल्कुल
1: पहले डॉक्टर साहब से एक गाने की फरमाइश करते हैं।

0: बाद शक्ल देख के कैसे आप मरीज पहचानते हैं ये बात होगी।
1: हाँ, तो हम इसमें माताओं बहनों की बात कर रहे हैं, तो एक अच्छा फेमस गाना है, फूलों का तारों का सबका कहना है मेरी एक बहना है।
0: क्या
1: तो
0: बात है, हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी की बोल, आर डी बर्मन की तर्ज, सुनते हैं ये गाना।

0: रुक साहब, ये तो बहन को समर्पित गाना, और आप इस गाने से पहले कह रहे थे कि आप चेहरा देखकर मर्ज भांप लेते हैं, ये तो बड़ी चमत्कारिक बात
1: और
0: है।
1: बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली मैं जब उदयपुर मेडिकल कॉलेज में ग्रेजुएट था तो हमारे प्रिंसिपल होते थे डॉक्टर सूरवीर सिंह,
0: जी,
1: तो उनके बारे में ये फेमस था कि वो इतने बड़े डॉक्टर हैं, इतने अच्छे डॉक्टर, कि जब मरीज उनके कमरे में घुसता तभी बीमारी बता देते हैं।
0: अरे गजब
1: तो अब वो उस
0: ऑब्जर्वेशन।
1: ऑब्जर्वेशन उस टाइम हमारा इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था कि ये कैसे बता देते बीमारी। लेकिन जब मैं एंडोक्रिनोलॉजी के अंदर मेरा सुपर स्पेशलाइजेशन किया तो मुझे पता चलता है कि हाँ, कुछ ऐसी बीमारियां हमारी हैं जो हम बता सकते हैं कि ये मरीज अंदर घुस रहा है, इसको ये बीमारी होने की संभावना है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि हम 100% बता देंगे, ऐसा नहीं, लेकिन 80% 90% बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन को ये बीमारी होने की ज्यादा संभावना है, इसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे।
0: जी,
1: जैसे अभी आपने एक दो बीमारियां होती है कि ऑस्टियोपोरोसिस का एग्जाम्पल देता हूँ, बोन की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई पर्सन जिसको कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, कोई हिस्ट्री नहीं है ट्रॉमा की, और वो ऐसे झुक के चलने लग जाए, आगे झुक करके चलने लग जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका स्पाइन का हाइट कम हो गया।
0: अच्छा।
1: उसका स्पाइन का हाइट कम होने की वजह से वो आगे झुक गया, तो ये बीमारी क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस है। और आपने
0: जी
1: बहुत बार देखा होगा अपने आस पड़ोस में महिलाएं बहुत झुक जाती है, हम जनरली ये समझते हैं तो उम्र के हिसाब से हो गया, ये कोई बीमारी नहीं है, बट वो एक्चुअली ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी की वजह से हो गया।
0: जी
1: अगर
0: जी
1: उनका टाइम पे इंटरवेंशन किया जाए

0: ऐसे नहीं झुकेंगे
1: जी। कई बुजुर्गों को दिखा है कि उनकी कमर दोहरी हो जाती है, और ये पुराने जमाने में
0: ज्यादा होता था,
1: देखा जाता था।
0: और दूसरा बीमारी होता है हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, जो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल।
1: जी जी
0: तो वो हार्मोन जब ज्यादा बनता तो शरीर भारी हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, गोल हो जाता है, और कहीं भी छोट हल्का चोट लगी तो निशान बनने लग जाते हैं, नील पड़ जाती है। ये सारी बीमारियां आप बहुत बार शक्ल देख के बता सकते हैं इस पर्सन को ये बीमारी है।
1: कॉर्टिसोल तो हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस है ना?
0: ये बिल्कुल कॉर्टिसोल स्ट्रेस का हार्मोन है कि
1: जी
0: अगर
1: जी
0: आपका जब भी स्ट्रेस होगा तो ये बढ़ जाएगा।
1: हाँ, तो वो कम हो तब हैप्पी है आदमी।
0: हाँ, वो उसका ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए।
1: जी
0: जैसे कि मैं इसको लाइन को शायद मैं बार बार जब भी अपना डिस्कशनों को बोलूंगा कि हमारे सारे हार्मोन के लेवल ऑप्टिमम होने चाहिए। अगर आप बढ़ गया तो भी खतरनाक है। कोर्टिसोल कम हो गया आपका ब्लड प्रेशर चला जाएगा।
1: ओके
0: हाँ,
1: ओके
0: तो इसलिए हर चीज बैलेंस में चलती है। इसलिए एंडोक्राइनोलॉजी को हम बोलते हैं ब्रांच ऑफ डिसिप्लिन।
1: क्या
0: सब
1: बात
0: चीज
1: है,
0: वैसे रहना चाहिए,
1: अनुशासित एकदम।
0: अनुशासित। जैसे डायबिटीज भी एक ऐसा बीमारी जिसमें अनुशासन रहना चाहिए।
1: हाँ
0: अगर आप
1: एकदम,
0: अपना खाना ठीक से नहीं करेंगे, आप अपना एक्सरसाइज ठीक से नहीं करेंगे, दवाई ठीक से नहीं लेंगे, तो आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन अगर आप ये तीन चीजों को प्रॉपर करेंगे तो आप जितना जी सकते हैं उतना जिएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: और चेहरा देख के कौन कौन सी चीजें समझ में आ जाती हैं?
0: और चेहरा देखने से जैसे कि हॉर्मोन्स होते हैं, जिन हॉर्मोन्स को मेल हार्मोन्स और फीमेल हॉर्मोन्स बोलते हैं,
1: जी
0: तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि महिलाओं के अंदर फेशियल हेयर नहीं होंगे।
1: जी
0: पर अगर महिलाओं में फेशियल हेयर आना शुरू हो गए तो इसका मतलब उनको ये पर्टिकुलर जो मेल हार्मोन्स का लेवल बढ़ गया है। तो वो मेल हार्मोन्स लेवल बढ़ने के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। वो कितना सीवियरिटी है, जैसे बहुत सारी महिलाओं में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फेशियल हेयर आ जाते हैं, तो इसका मतलब वो कोई ट्यूमर हो सकता है जो कि ये हार्मोन ज़्यादा बना रहा है,
1: ओके
0: तो वो पता कर सकते हैं। फिर उसके बाद में कि कोई पुरुष है उसके चेहरे पे बाल नहीं है, तो वो इसका मतलब उसके अंदर मेल हार्मोन है वो नहीं है, उसकी वजह से चेहरे पे बाल नहीं आ रहे हैं, तो वो हम बीमारी बता सकते हैं, कह सकते हैं कि इसको ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी। फिर एक हार्मोन होता है जिसको हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, वो आपकी
1: जी
0: ग्रोथ को रेगुलेट करता है। अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो जाए तो बंदा
1: 6 फुट के
0: सवा
1: ऊपर,
0: छः नहीं 7 फीट का हो सकता है, और चेहरा बड़ा हो जाएगा, हाथ बड़े हो जाएंगे। जैसे
1: अच्छा
0: आपने WWF में कुछ लोगों को देखा होगा, मैं नाम नहीं
1: जी
0: लेना चाहता हूँ, बट वो जैसे बहुत बड़े हो
1: हाँ
0: जाते हैं, हेल्थ लंबा चौड़ा, तो वो उनको बेसिकली एक तरह से वो ग्रोथ हार्मोन का एक बीमारी वो ज़्यादा है, उसकी वजह से वो ज़्यादा बढ़ गए हैं।
1: क्या बात। मध्य प्रदेश में एक पुलिस के व्यक्ति हुआ करते थे जो
0: हाँ,
1: एशिया के सबसे
0: वो
1: लंबे।
0: पंजाब में भी कुछ है, वो
1: जी
0: भी है। और दूसरा उसका उल्टा है, अगर आप वो हार्मोन नहीं बना आपको तो आपका हाइट कम रह जाएगा। तो इसलिए फिर मैं बोल रहा हूँ हार्मोन ऑप्टिमम इज रिक्वायर्ड टू हैव ए नॉर्मल। अगर कम है ग्रोथ हार्मोन तो आपका लंबाई नहीं बढ़ेगा, अगर ज़्यादा हो गया तो आपका बहुत लंबाई बढ़ जाएगा, वो भी ठीक नहीं। तो ये हर हार्मोन जैसे ज़्यादा है तो अलग प्रॉब्लम करता है, कम है तो अलग प्रॉब्लम करता है, और नॉर्मल है तो ठीक रहता है। तो आप बहुत सारी चीज़ें इसलिए देख के पहचान सकते हैं कि इसको क्या पॉसिबिलिटी है बीमारी होने की।
1: बिल्कुल, बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई है। और यहाँ एक चीज जो हड्डियों से जुड़ी बातें हो रही हैं, हड्डियों और हार्मोन्स के रिलेशन की बातें, तो कुछ केसेस जो आपने देखे हैं जिनके जरिए हमारे सुनने वालों को मदद मिलेगी कि ये क्या सिम्टम्स थे और इनका क्या उपाय हुआ।
0: तो ऐसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और
1: जी
0: उदयपुर मेडिकल कॉलेज से मेरी अपनी पढ़ाई करी। तो जब मैं एक किसी कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे गया तो मेरे टीचर थे डॉक्टर DC शर्मा साहब, तो उन्होंने कोई पेशेंट उनके पास गया तो उनको समझ नहीं आया, उन्होंने बोला कि यहाँ पे फैसिलिटी नहीं कि हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। तो संजय तुम अगर ठीक समझते हो तो इसको वहाँ भेज देता हूँ। वो वहाँ पे आ गए पेशेंट। जब उन पेशेंट का हमने हिस्ट्री लेना शुरू किया तो पता कि मैं पूरे सब जगह में गया हूँ, दिल्ली बॉम्बे सब जगह, पर कोई बीमारी का ठीक से पता नहीं चला। तो फिर वो पेशेंट हमारे पास आ गया, वो जब आया था स्ट्रेचर पे आया था, हमने उसको एडमिट करा और उसको हम धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। हम 1-1.5 महीने में उसका बीमारी का हम पता लगाए कि ये बीमारी है, और दुनिया में उस बीमारी केवल उस टाइम में 25 केसेस थे केवल पूरी दुनिया के अंदर,
1: इतनी दुर्लभ।
0: इतनी दुर्लभ। अब दुर्लभ बीमारी है तो उसका बारे में ज़्यादा पता नहीं है, दुर्लभ बीमारी उसका इलाज भी नहीं है, तो अब
1: जी
0: इलाज कैसे किया जाए।
1: जी
0: तो हमने उसको स्टडी करके एक प्लान किया कि भाई ये दवाई कोशिश करना चाहिए, और भगवान की दया से गॉड्स ग्रेस वो बीमारी के अंदर वो दवाई लग गई और चल गई, और वो पेशेंट हमारे पास से लेट के आया था और चल के गया। फिर उसका छोटा भाई भी आया, उसको भी यही बीमारी थी, वो भी ऐसे ही चल के गया। और उसके जब हिस्ट्री पूछा तो उसकी मदर और उसकी मामी मामा जी उनको भी ये बीमारी थी। तो एक तरह से एक काइंड ऑफ

0: जेनेटिक हो सकता है या एक एनवायरनमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो पेशेंट को हमने ग्रोथ हार्मोन से ट्रीट किया और वो बिल्कुल ठीक होके गए।
1: महिलाओं में इस तरह के कुछ केसेस जिनका जिक्र आप करना चाहें?
0: महिलाओं में इस तरह की बीमारियों में अगेन मैं अगर बोन्स की बात करूंगा तो क्या होता है कि मीनोपोज के टाइम पे बोन्स खराब होना शुरू होता है,
1: जी
0: और अगर उनको पहले से कोई बीमारी अंडरलाइंग चल रही बोन की तो वो एकदम एक्जेजरबेट हो जाती है।
1: ओ
0: जैसे आपको ऑलरेडी मीनोपोज में कैल्शियम कम होना शुरू हो जाएगा, एस्ट्रोजन चला गया, और आपको ऑलरेडी कुछ बीमारी है, जैसे हमारे एक पेशेंट थी सीलिएक डिजीज जिसको हम बोलते हैं व्हीट एलर्जी, मे बी नॉर्थ इंडिया में काफ़ी कॉमन है जहाँ पे व्हीट मेन डाइट है, साउथ इंडिया में उतना कॉमन नहीं होगा। तो उसमें उस लेडी को क्या हुआ कि 45 साल की उम्र में जब महीना बंद होना शुरू हुआ तो उसको अचानक बोन्स वीक होना शुरू हो गई, और बोन्स इतनी वीक हो गई कि वो बेड पे आ गई और उसकी मालिश करने से उसकी फ्रैक्चर हो गया हाथ का।
1: ये
0: मालिश
1: मालिश
0: करने से,
1: करना कितना गलत हो गया।
0: हाँ मतलब मालिश करने से ही फ्रैक्चर हो गया, मतलब हल्का ही किया होगा ये तो पता नहीं, बट उससे फ्रैक्चर हो गया, तो उसका बोन्स इतना वीक हो गया। और जब उसको हम भर्ती करके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उसमें पता चला कि उसको वीट एलर्जी है, और वीट एलर्जी पहले भी होगी लेकिन जब महीना बंद होना तब वीट एलर्जी और महीना बंद होना दोनों साथ जुड़ गए, तो एक और एक 2 की जगह 1 और 1 11 हो गया और उसको फ्रैक्चर हो गया। उसको फिर एडमिट करा और उसका इन्वेस्टिगेट किया, उसका कुछ नहीं किया हमने, उसका केवल वीट बंद कर दिया,
1: जी
0: और वो 3 महीने बाद में हमारे पास चलती हुई आई। तो पहले हम उसका वजन कम हो रहा उसके लिए इलाज कर रहे हैं, उसके मोटापे का इलाज करना पड़
1: तो
0: रहा
1: ऐसे दिलचस्प मामले भी आते हैं, लेकिन यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि हार्मोन्स का असर
0: है।
1: हड्डियों पर भी पड़ता है, जो आज के इस कार्यक्रम का फोकस है।
0: बिल्कुल,
1: और डॉक्टर साहब, अब एक गाने पर फोकस किया जाए, आपकी पसंद का अगला गाना बताइएगा।
0: तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था।
1: क्या बात है, ये गाना सुनते हैं, चांद सी महबूबा हो।
0: तुम
1: आनंद
0: भी
1: बख्शी साहब के ये बोल हैं, सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, बातें हो रही हैं हार्मोन्स और हड्डियों के कनेक्शन की, और आपने बताया कि किस तरह से बीमारी कुछ और है और उसको समझा कुछ और जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: ये आम आदमी के लिए भी उतनी ही बड़ी चुनौती है जितनी डॉक्टर्स के लिए?
1: या एक्चुअली मैं कह सकता हूँ कुछ हद तक, पूरे तरह से नहीं पर कुछ हद तक, बिकॉज बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज होती है जिसके बारे में लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं होता है
0: जी
1: या उसका प्रॉपर रेफरल समझ में नहीं आता। उसका रीजन ये भी हो सकता है, अगर बीमारी पता नहीं तो कैसे रेफर करें, किसको रेफर करें। तो ऐसा डॉक्टर्स में भी हो सकता है, आम आदमी में तो होता ही है पर डॉक्टर्स में भी हो सकता है। और दूसरा, बोन्स की प्रॉब्लम का एक दूसरा दिक्कत उसमें है कि एक कहावत आपने सुना होगा, राजस्थानी में बोलता हूँ मैं, बहुत मामे के भांजे भूखे रह जाते हैं, समझ गए?
0: जी
1: मतलब उसमें ऐसा होता है कि भाई वो भांजा उस मामा जी के यहाँ खाना खा लेगा, उसके यहाँ खा लेगा, उसके यहाँ खा लेगा, और अल्टीमेटली भूखा रह जाता है कोई। तो उसी तरह से हड्डी भी की बहुत सारे डिपार्टमेंट देखते हैं इसको। अब
0: जी
1: जैसे आपने बताया मीनोपॉज का जिक्र कर रहे, तो अभी ऑब्वियसली मीनोपॉज पे महिला गायनी वाले के पास जाएंगी,
0: जी
1: फ्रैक्चर की बात करें तो पर्सन ऑर्थोपेडिक्स वाले के पास चला जाएगा, और हो सकता है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास।

0: आ जाए, या कभी कभी वो रिमेटोलॉजी की बीमारी से कंफ्यूज हो जाता है कि जोड़ में दर्द हो रहा है
1: संधिवात
0: शायद
1: जैसी कुछ
0: संधि है,
1: चीज है।
0: तो उस तरह से बंदा कंफ्यूज रहता है, उसको खुद तो पता नहीं होता कहाँ जाना होता है, तो वो फिर चक्कर लगाता रहता है। तो
1: जी
0: उसमें वो अगर सही डॉक्टर के पास पहली बार ही पहुंच गया तो बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं पहुंचा घूमते घूमते लास्ट में उस डॉक्टर के पास आया जिसका ये बीमारी है, तो उसमें उसको काफी टाइम लग जाता है और बीमारी काफी बढ़ भी जाती है, तो उसको फिर नियंत्रण करने के लिए भी थोड़ा और ज्यादा टाइम लग जाता है।
1: एक सही मार्गदर्शन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है।
0: बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरे को लगता है आपका ये जो प्रोग्राम आप जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हॉर्मोन्स एंड डायबिटीज, इससे हमारे श्रोताओं को काफी समझ में आएगा और वो सही जगह पे सही डॉक्टर से कंसल्ट कर पाएंगे।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, हड्डियों की बातें तो हमने की, अब दो चीजों की बातें मुझे लगता है कि करना चाहिए, एक तो डायबिटीज की बात और दूसरी थायराइड की बात।
0: बिल्कुल
1: ये बताइए कि किन हार्मोन्स से ये तब्दीली आती है और किसी को थायराइड उभर के आता है, दोनों तरह के थायराइड, और इसको पहचाना कैसे जाए अर्ली स्टेज पर?
0: थायराइड हार्मोन का भी ऐसा होता है, ऑप्टिमम रहना चाहिए,
1: जी
0: अगर कम हो गया लेवल तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म,
1: जी
0: और अगर लेवल ज्यादा हो गया उसको हम बोलते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म,
1: दो तरह के हो
0: दो
1: गए
0: तरह
1: ये।
0: के हो गए। अब इनमें हाइपोथायरॉयडिज्म काफी कॉमन होता है, ज्यादा कॉमन होता है, और जैसा कि हमने पहले भी बताया महिलाओं में काफी कॉमन होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, और उसका प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, जो कि पहले आज के कुछ सालों पहले ज्यादा उसके बारे में ध्यान नहीं होता था। और उसकी वजह से क्या होता था कि माँ को तो प्रॉब्लम है पर बच्चे को भी प्रॉब्लम होता, होने वाले बच्चे को, तो इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड का टेस्टिंग और उसका इलाज बहुत ही जरूरी होता
1: ये
0: है,
1: बहुत याद रखने वाली बात
0: बहुत
1: है
0: ही
1: सभी
0: जरूरी होता है।
1: श्रोताओं के लिए।
0: बिल्कुल। फिर हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में होता है, उसके सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड होते हैं, कि जैसे थकान हो रहा है, सुस्ती हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, किसी को भी कभी भी हो सकते हैं, तो उसमें समझ में नहीं आता कि क्या है। लेकिन इसमें बात ये कि अगर वो सिम्टम लॉन्ग टर्म से चल रहे हैं, कि आपको कब्ज रह रहा है अभी 3 महीने 6 महीने से चलता जा रहा है ठीक ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ बीमारी हो सकती है, उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म एक बीमारी हो सकती है।
1: जी,
0: जैसे कि आपका चेहरे का एक भगवान ने बहुत ही फीचर्स हमारे शार्प बनाए, अगर इन पूरी दुनिया में अरबों लोग हैं लेकिन किसी की शक्ल एक दूसरे से बहुत कम मिलती है, तो ये जो कंप्यूटर भगवान ने जो बनाया चेहरे का कंप्यूटर बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक दूसरी शक्ल नहीं मिलती है।
1: जी
0: लेकिन जब थायराइड डिसऑर्डर्स होता है, अगर वो बहुत एक्सटेंसिव हो जाता है, मतलब बहुत ही हाइपोथायरॉयडिज्म एक्सटेंसिव ग्रेड में पहुंच जाए, तो उसमें एक शक्ल एक धुंधली हो जाती है, जैसे आपने फोटो कोई खींचा है फोटो हिल गया है तो जो
1: जी
0: धुंधला हो जाता है, तो वो एक चेहरे की जो शार्पनेस है वो चली जाती है
1: नूर चला जाता है।
0: या नूर चला जाता है, तो वो एक हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में सिम्टम्स कॉमन होते हैं लेकिन अगर लंबे हो तो आपको डॉक्टर्स को कंसल्ट करना है। फिर
1: महिलाओं में भी इस समस्या को
0: महिलाओं
1: लेकर?
0: में दूसरी समस्या उनका, अगर महीने में कुछ गड़बड़ हो रही है
1: जी
0: तो ये थायराइड की बीमारी की वजह से हो सकती है, तो इसलिए उसको जरूर से टेस्ट करना चाहिए, अगर गड़बड़ है तो, और इलाज होने से बिल्कुल ठीक हो जाता है।
1: क्या थायराइड की दवा जीवन भर खानी पड़ती है?
0: बहुत ही कॉमन सवाल है, सब लोग पूछते हैं। मैं ये बोलूंगा कि यस 99.9% हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो 99.9% लोगों को, हमने एक ओपीडी में एक सील बनवा के रखी है
1: जी
0: कि लाइफ लॉन्ग फॉलोअप,
1: अच्छा, वो सील ही बना
0: सील
1: लिए।
0: लगा दी, क्योंकि अब मरीज को कभी कभी बताना भूल जाते तो सील लगा दी, कि भैया उस पर रेड कलर में उनको पढ़ने को मिल जाता है कि इसमें लिखा हुआ
1: जी
0: लाइफ लॉन्ग फॉलोअप, मतलब बराबर लेना है।
1: बहुत ध्यान
0: कुछ
1: रखना है।
0: हाँ कुछ एक पेशेंट्स को रिवर्स हो जाता है बट जनरली नहीं होता है,
1: ये कौन सा
0: क्यों
1: वाला है? हाइपो?
0: हाइपोथायरॉयडिज्म बात
1: जी
0: करें।
1: जी
0: अब दूसरा इसका कारण क्या होता है, भगवान ने जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाई उसकी कैपेसिटी बहुत बनाई है,
1: जी
0: जब तक उस ग्लैंड का 90% हिस्सा खराब नहीं होता है, काम करना बंद नहीं करता, तब तक वो बीमारी नहीं होती है।
1: ओके
0: तो अगर आपका जब बीमारी हो रहा था इसका मतलब 90% पर्टिकुलर ऑर्गन पर्टिकुलर ग्लैंड की सेल्स ने काम करना बंद कर दिया, तो केवल 10% बची है। अब वो 10% में कितना रिवाइव हो सकता है कुछ भी करने से, उसका कहना थोड़ा मुश्किल होगा। तो
1: जी
0: इसीलिए 90% डैमेज होने में टाइम भी लगता है, और अगर एक बार 90% डैमेज हो गया आपको सिम्टम्स आ गए तो फिर आपको ट्रीटमेंट लगभग लाइफ लॉन्ग ही लेना
1: और इस
0: पड़ेगा।
1: 90% डैमेज होने के सिम्टम्स नहीं होते?
0: वो धीरे धीरे होते हैं, कुछ कुछ
1: जी
0: होना शुरू हो जाते हैं, बट पूरा 100% नहीं होते हैं, कुछ कुछ होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या हो गया, आजकल जो एक इंपॉर्टेंस बढ़ गया रेगुलर चेकअप का, ईयरली
1: जी
0: ईयरली चेकअप में आपको उस बीमारी का पता चल जाता है कि आपका ये बीमारी एबनॉर्मल आना शुरू हो गया, और एबनॉर्मल आना शुरू होने के बाद में आप उसके पीछे लग करके

0: इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता चल जाएगा, ये तो आपको टाइम से ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, तो फिर उसका दवाई का मात्रा भी उतना नहीं लेना पड़ेगा,
1: जी
0: नहीं तो जब 90% डैमेज हो गया तो दवाई का मात्रा भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। ये हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। अब रहा हाइपरथायरॉयडिज्म, जब ग्लैंड ज़्यादा है तो इसमें उल्टा हो जाता है कि इसमें पसीना कम आता है उसमें पसीना ज़्यादा आता है, उसमें वजन थोड़ा बढ़ सकता है उसमें काफ़ी कम हो जाता है, उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन होता है उसमें डायरिया होता है,
1: जी
0: इसमें कलर हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म में, उसमें कलर गहरा हो जाता है, डार्कनिंग हो जाती है, और इसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म में आंखें बाहर आना शुरू हो जाता है, मोटी हो जाती है, उसमें आंखों पे काफ़ी असर होता है, तो वो भी एक उसका सिम्टम है। तो बहुत सारे लोगों का आंखें प्रोमिनेंट होता है, तो ये हाइपर थायरॉयडिज्म की वजह से हो सकता है, थायरॉयड हार्मोन के एक्सेस की वजह से हो सकता है।
1: तो ये सब जो सिम्टम्स हैं उन पर एक तो नजर रखनी चाहिए, और दूसरा आपने
0: बिल्कुल
1: जोर दिया कि सालाना चेकअप करा लेना सबसे
0: हाँ,
1: अच्छा उपाय
0: मतलब
1: है।
0: जैसे 35 साल की उम्र के बाद में अभी गवर्नमेंट भी बोलती है कि भाई आपको कुछ कुछ टेस्ट कराने चाहिए, तो
1: जी
0: ऐसे ही खास तौर से उनकी पारिवारिक हिस्ट्री है थायराइड की बीमारी की, महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान है, या कुछ जो सिम्टम्स हमने आपको बताए वो लॉन्ग टर्म से चल रहे हैं, तो उन लोगों को अपने थायराइड का टेस्ट जरूर कराना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, थायराइड की बात हमने की, डायबिटीज की बात अब कीजिए।
0: बिल्कुल, उसके बिना तो ये टॉक पूरा नहीं होना चाहिए।
1: तो बताइए कि ये जो मामला है।
0: डायबिटीज एक तरह से कभी किसी जमाने में इसको राज रोग बोलते थे, क्या
1: जी जी
0: बोलते थे, राज रोग, मतलब ये
1: मतलब
0: राजा
1: बहुत
0: महाराजाओं
1: शाही
0: में
1: लोगों
0: होते
1: को
0: थे शायद वो, अभी ये
1: होता
0: क्या हो गया, आम रोग,
1: था। जी
0: अब हर
1: हाँ,
0: किसी को डायबिटीज हो रहा है,
1: इंडिया एक तरह से डायबिटीज कैपिटल
0: आप
1: बनता
0: ये
1: जा
0: कह
1: रहा है।
0: सकते हैं कैपिटल बनता जा रहा है। ऑब्वियसली हमारे श्रोताओं के इसके कारण सबको पता है, बट
1: जी
0: मैं जस्ट इसको कोरम को कंप्लीट करने के लिए बोल देता हूं कि किस वजह से डायबिटीज ज्यादा हो रही है।
1: जी
0: तो एक कंसेप्ट होता है कि कुछ बीमारियां होती है जेनेटिक्स की वजह से होती है, कुछ एनवायरनमेंट की वजह से होती है, ये
1: बिल्कुल
0: नेचर एंड नर्चर।
1: नर्चर।
0: तो आपके एनवायरनमेंट में जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो तो आपके एक्सपोजर से हो रही है, लेकिन आपको जीन्स की वजह से जो प्रॉब्लम हो तो पिताजी माताजी से आपको जो मिले उसकी वजह से होगा। तो इन जनरल हिंदुस्तान में ये जेनेटिकली वी आर डायबिटीज के लिए प्रीडिस्पोज्ड हैं जेनेटिकली, और उसका बेस्ट आइडिया, जैसे आप दुबला पतला पर्सन है उसको भी थोड़ा सा तो पेट निकला होगा, वैसे दुबला पतला लेकिन पेट थोड़ा निकला होगा, तो ये जो पेट निकला हुआ होता है ये एक तरह से आपका खराब हेल्थ का निशानी है। मे बी आज के 40 साल पहले लोग बोलते यार बहुत ही हेल्दी बंदा है, मोटा अच्छा खासा हट्टा कट्टा है वो, तो उसको हम हेल्दी बोलते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग हो गया वो हेल्दी नहीं है, वो अनहेल्दी है।
1: जी
0: तो जब इस तरह का ये जो पेट आगे निकल गया, ये जो प्रॉब्लम है ये एक तरह से प्रीडिस्पोज करता है डायबिटीज को। तो हम सब लोगों के लिए एक मैसेज है कि आपका पेट नहीं निकलना चाहिए, उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि जो वजन बढ़ता है सबसे पहले यहीं बढ़ता है
1: जी जी
0: और सबसे बाद में यहां से जाता है, जो
1: जी
0: ट्रेन वाला सिस्टम है, जो ट्रेन लेट हो गई उसको लेट होती रहती है। तो ये भी इस तरह से है,
1: जी
0: तो वजन नहीं बढ़ना चाहिए। अब वजन बढ़ना कॉमन हो गया आजकल, क्यों,
1: जी
0: कि हम खान पीने उधर, जैसे सिस्टर स्विगी और मदर जोमेटो 24 आवर्स खाना सप्लाई करता है
1: अरे
0: हमें, है
1: गजब।
0: ना,
1: जी
0: तो रात को 11 बजे भी खाना खा रहे हैं, 12 बजे भी खाना खा रहे हैं हम लोग,
1: ऐप के
0: तो
1: जरिए खाना मंगा रहे
0: ऐप
1: हैं।
0: के जरिए खाना मंगा रहे, तो उससे क्या हो रहा है कि आपका खाने का टाइमिंग गड़बड़ हो गया, वो खाने का टाइमिंग गड़बड़ होने की वजह से आपका वजन बढ़ जाता है।
1: जी
0: इसीलिए अगर आपने देखा होगा तो अपने माइथोलॉजी में, इंडियन माइथोलॉजी में ऐसे बोलते हैं कि सूरज के टाइम पे खाना खाना चाहिए, जब सूर्यास्त होने के बाद खाना नहीं खाना, जैसे खास तौर से जैन समाज वगैरह में ऐसा होता है कि वो लोग सूर्यास्त हो गया तो खाना नहीं खाते हैं, और सुबह में टाइम पे, तो उसका मतलब ये होता है कि आप खाना खाने के बाद आपको घूमने फिरने का टाइम रहता है थोड़ा, तो आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है। और आपने एक नया शब्द सुना होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग,
1: जी आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत
0: वो
1: ज्यादा चल
0: इस
1: रहा
0: पे एक चीज कहना चाहूंगे, हम लोग ना अंग्रेजों से बहुत सीखते हैं, अपने आप से नहीं सीखते हैं,
1: है।
0: ठीक है।
1: जी
0: अब इंटरमिटेंट फास्टिंग हिंदुस्तान में कोई नई चीज नहीं है,
1: जी
0: जैसे रमजान रखते हैं तो हम लोग 12 घंटा खाना खाते हैं, 12 घंटा भूखे रहते हैं,
1: हाँ
0: ठीक है। अब कुछ नवरात्र व्रत रखते हैं तो उसके
1: जी
0: अंदर अब दिन में खाना नहीं खाते हैं, आप फलाहार लेते हैं,
1: जी बिल्कुल
0: ठीक है, तो पहले से कंसेप्ट है। या हमारी दादी नानी जो व्रत उपवास रखती हैं वो कॉमन है, उनको भी अमावस्या करेंगी, पूर्णिमा करेंगी, या और अलग अलग धर्म में अलग अलग तरह से होता है, मुझे वो दूसरों का उतना शायद पता नहीं, तो ऐसे फास्ट रखते थे, तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती थी। पर अब क्या, जब अंग्रेजों ने बोला कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है तो हमने उसको लपक लिया भी, अरे ये इंटरमिटेंट फास्टिंग होना चाहिए,
1: जी जी जी
0: जबकि हमारे कंसेप्ट में पहले से ही
1: ऑलरेडी
0: इंटरमिटेंट
1: है।
0: फास्टिंग है, तो ये एक अच्छा चीज़ हो

0: सकता है कि हम ये एक हैबिट डेवलप करें कि खाने का हम टाइम फिक्स करें कि हम 7 बजे बाद नहीं खाएंगे। जैसे कुछ कंट्री के अंदर डिनर टाइम होता है, अगर आप उसके बाद डिनर के लिए ऑर्डर करोगे तो डिनर नहीं मिलेगा आपको।
1: जी,
0: तो उसका रीज़न ये है कि आपको अच्छा हेल्थ रखने के लिए खाना टाइम पे खाना चाहिए। तो ये एक चीज़ अच्छा आपके डे टू डे हैबिट में हम कर सकते हैं। और मैं अपने श्रोताओं को एक छोटा सा टिप दे रहा हूँ कि वो अगर अपना खाना शाम का खाना 7 बजे के पहले खा सकें और सुबह का खाना 8 बजे खाएं ब्रेकफास्ट से, तो आपका पूरा लगभग 12 से 14 घंटे आप भूखे रह गए। तो आप हर रोज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो
1: क्या बात
0: और
1: है,
0: उसका बहुत अच्छा असर होने वाला आपकी हेल्थ के ऊपर में। कोई अगर इस चीज़ को 15 दिन भी करके देखेगा तो उसका मुरीद हो जाएगा कि मुझे यही सिस्टम करना चाहिए।
1: आपने जो बताया उसमें लंच नहीं है ना, उसमें सुबह
0: उसमें
1: 8 बजे
0: लंच
1: एक
0: आप,
1: ब्रंच जैसा कुछ
0: हाँ
1: है
0: नहीं, उसमें आप लाइट लंच ले सकते हैं कि जैसे
1: जी।
0: आप ऑफिस में हैं तो आप ऑफिस में एक फ्रूट ले सकते हैं, एक सिंपल एक चपाती ले सकते हैं या आधा एक सैंडविच ले सकते हैं, ऐसा लाइट रख सकते हैं। ब्रेकफास्ट ले लिया, फिर ऑफिस आवर्स में आप
1: कुछ ले लिया
0: कुछ
1: हल्का
0: लाइट ले
1: सा,
0: लिया तो आपको 7 बजे फिर से भूख लग जाएगी, तो फिर आप खाना टाइम पे खा पाओगे।
1: यही हो गई इंटरमिटेंट
0: ये
1: फास्टिंग,
0: इंटरमिटेंट
1: बारह बारह
0: फास्टिंग होगी,
1: तेरह घंटे
0: बारह
1: की।
0: तेरह घंटे होगी, आपकी सेहत बिल्कुल फिट रहेगी।
1: बिल्कुल, तो अब यहां एक गाना सुनते हैं
0: हाँ,
1: और उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
0: इसका गाना आप सुन, चांद सा रोशन चेहरा,
1: क्या बात है, कश्मीर की कली फिल्म का ये गाना है, ओपी
0: बिल्कुल
1: नय्यर का संगीत, सुनते
0: ये
1: हैं।
0: चांद।

0: डॉक्टर साहब, आप एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, मैंने ठीक
1: बिल्कुल
0: बोला ना?
1: बिल्कुल ठीक
0: आप
1: बोला है।
0: मुझे ये बताइए कि आपकी जो शाखा है वो और क्या-क्या चीजें देखती है?
1: बहुत ही बढ़िया सवाल है और मेरे को जवाब देने में बहुत मजा आएगा।
0: अच्छा,
1: एंडोक्राइनोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें मल्टीपल ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती है
0: जी
1: और ये ग्लैंड्स टॉप से लेके बॉटम तक आपकी बॉडी में रहती है।
0: हाँ, ये बात हमें नहीं पता
1: तो
0: थी।
1: सबसे पहले मैं बोलूंगा तो ब्रेन में दो ग्लैंड्स होती है, तीन ग्लैंड्स होती है।
0: अच्छा।
1: एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरी ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस, और तीसरी ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड होती है उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जो आपका स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है
0: अच्छा,
1: कि आप कितने बजे उठ रहे हैं तो उसका क्या असर होगा, कितने बजे सो रहे हैं तो उसका क्या असर होगा, ये सब कंट्रोल करती है। हाइपोथैलेमस होता है और एक पिट्यूटरी होता है, दोनों
0: जी
1: पेयरिंग में
0: चलिए।
1: काम करते हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस एक तरह से पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है और ये करीब 6 हार्मोन सिक्रीट करती है ब्रेन से,
0: जी
1: और ये 6 हार्मोन्स बाकी की बॉडी की रिमेनिंग ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड आता है, जिसमें आपका एड्रिनल ग्लैंड आता है जो कि किडनी के ऊपर होता है, जिसमें आपका ओवरीज होती है जो महिलाओं के अंदर अंडा
0: प्रजनन
1: बनाती
0: का
1: है,
0: काम है।
1: या और मेल में टेस्टिस होती है जो कि जहाँ से स्पर्म बनते हैं। तो इन सबको ये इसके ऊपर के थ्रू कंट्रोल करती है। तो एक तरह से आपका एक सिस्टम हो गया, एक हाइपोथैलेमस, एक पिट्यूटरी और फिर उसके बाद में सारी ग्लैंड्स,
0: तो पूरा शरीर कवर हो गया।
1: पूरा शरीर करोगे। उसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स जो रह गई है, एक है पैराथायरॉयड ग्लैंड जो
0: जी

0: थायराइड के पास में होती है और उसका बोन पे बहुत इफेक्ट होता है,
1: जी
0: और एक पेनक्रियाज आपका जिससे डायबिटीज का रिलेशन है। इनका अभी ऊपर से कंट्रोल पता नहीं है, पर मेरा ऐसा मानना कुछ कंट्रोल होगा, हम रिसर्च करेंगे तो मिल जाएगा, कुछ रिलेशन होना चाहिए,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: क्योंकि बाकी सब चीजें कंट्रोल हो रही तो ये कैसे कंट्रोल नहीं हो गया ऊपर से,
1: जी
0: ऐसा
1: जी
0: शायद होगा। तो ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, तो सारी की सारी पूरी बॉडी में है, तो अब बॉडी का कोई भी प्रॉब्लम होगा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास हो सकता है। इसलिए कभी कभी मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आपको कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही है, जो MD स्टूडेंट्स, उनको एक बार एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जरूर भेज देना, हो सकता है कि वो बीमारी वहां से पता चल जाए कि इनकी क्या बीमारी है।
1: बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपने पेंक्रियास का जिक्र किया। इससे जुड़ी बीमारियों के बारे में मैं आजकल यहां वहां काफी पढ़ रहा हूं, क्या ये बढ़ रहा है?
0: तो पेनक्रियाज का बीमारी सीधा सीधा डायबिटीज ही है एक तरह से, आप देखेंगे तो पेनक्रियाज से रिलेटेड डायबिटीज है। पेनक्रियाज का टाइप 2 डायबिटीज सबसे कॉमन है, तो डायरेक्टली उसमें नहीं होता, पर उसमें एक तरह से वजन बढ़ने से आपका जो इंसुलिन सिक्रीट होता है पेनक्रियाज से वो इफेक्टिव नहीं रहता है। तो इसी तरह का कि आपके पास ताला लगा हुआ है, चाबियां बहुत सारी है पर कोई चाबी उसमें फिट नहीं हो रही है,
1: जी
0: तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। तो आपका इंसुलिन तो बहुत है बॉडी के अंदर, लेकिन वो आपकी सेल में नहीं जा पा रहा है, क्यों? कि वो सही सिग्नल नहीं दे रहा वहां पे। ठीक है, ऐसे कमरे में जाना, आपको ताला की चाबी खोल के जाना, लेकिन आपके पास सही चाबी नहीं तो ताला नहीं खुलेगा। इसी
1: क्या
0: तरह
1: वजह
0: से
1: होती होगी इसकी?
0: इसकी वजह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वजह है कि वजन ज्यादा होना,
1: अच्छा
0: डायरेक्ट रिलेशन है उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस का वजन ज्यादा होना से। और या फिर आप पेनक्रियाज को खराब कर लेते किसी कारण से, जो कि कॉमन है हमारी सोसाइटी में, अल्कोहल, उसकी वजह से आपका पेनक्रियाज खराब हो जाता है, तो उससे फिर वो आपका पेनक्रियाज का बीटा सेल्स डैमेज हो जाएगा, तो फिर इंसुलिन बनेगा ही नहीं। जब बनेगा ही नहीं तो आपको डायबिटीज हो जाएगा।
1: जी
0: टाइप 2 में इंसुलिन ज्यादा बन रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों ही हो रही है।
1: दोनों हो रही हैं, मतलब बैलेंस की जो आपने बात की थी
0: हाँ, फिर
1: वो
0: से एक
1: फिर से यहां
0: बैलेंस
1: आ
0: का
1: गया।
0: जरूरत है, बिल्कुल।
1: डॉक्टर साहब, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस किस किस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर आता है? एक अधेड़ उम्र में पहुंचने के बाद जिस तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उससे महिलाएं कैसे निपटें, खासतौर पर
0: तो
1: ये
0: या
1: बातें बताएं।
0: अधेड़ उम्र में मैं ये बोलता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो रोल प्ले करता है वो मीनोपॉज में जो चेंजेज होते हैं वही महत्वपूर्ण है। और उसमें ऐसा देखा गया कि जैसे मन उदास रहना है, या काम में कंसंट्रेशन नहीं करना है, या आपको अचानक पसीना आना है, घबराहट होना है, धड़कन बढ़ जाना है, ये सारा कुछ होता है। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इन सब चीज़ों का एक तो जानना ज़रूरी है। बहुत बार पेशेंट्स को हम बोल देते हैं कि भाई आपको ये बीमारी है, चिंता करने का जरूरत नहीं, आप ठीक हो जाओगे, तो 50% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। कि यार पहले वो सोचें कुछ बड़ी बीमारी तो नहीं है हमारे को, तो अगर उनको आप एक्सप्लेन कर देते हो कि भाई आपका बीमारी नहीं है, ये आपका जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं मोस्ट लाइकली आपका महीना बंद होने की वजह से हो रहे हैं, आप ठीक हो जाओगे, तो काफ़ी लोग ठीक हो जाते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम नहीं आती ज़्यादा। लेकिन कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, क्योंकि उनको थोड़ा सीवियरिटी ज़्यादा होता है, तो सीवियरिटी ज़्यादा, तो ऐसे लोगों को फिर आपको दवाई देना पड़ता है।
1: ये दवाएं हार्मोन्स की होती हैं।
0: हाँ, एक तरह से हॉर्मोन्स होते हैं, तो अगर बहुत पसीना आ रहा है, घबराहट, उसके लिए हॉर्मोन्स दे सकते हैं, बट वो भी एक प्रॉपर तरीके से सुपरविजन में होता है, तो इसमें गायनेकोलॉजिस्ट का भी काफ़ी रोल रहता है और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का भी रोल रहता है, तो ये दोनों मिलकर के इस तरह की बीमारी के लिए ट्रीटमेंट लिखते हैं।
1: क्या बालों का झड़ना जो है वो हार्मोन से जुड़ा हुआ है?
0: या फिर मैं आपको बोलूंगा कि ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ हॉर्मोन्स बहुत जरूरी है बालों के हेल्थ के लिए, क्योंकि बॉडी को क्या लगता है कि जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनका देख रेख करना ज़्यादा ज़रूरी है, न कि जो बाहर की सुंदरता है। बॉडी को बाहर की सुंदरता से लेना देना नहीं है ज़्यादा, तो
1: जी
0: आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो पहले हॉर्मोन्स या बॉडी अपने इंटरनल जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनका देख रेख करेगी,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और उसके बाद में बाहर की चीज़ों पे आएगी।
1: हाँ, तो एक पूरा बैलेंस होना और
0: बिल्कुल, अगर
1: प्रक्रियाएं
0: बैलेंस
1: सही
0: नहीं है तो
1: चलना
0: आप
1: ज्यादा जरूरी
0: जैसे
1: है।
0: थायराइड हार्मोन का प्रॉब्लम है तो बाल गिर सकते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन एक्सिस में तो बाल गिर सकते हैं, तो ये इस तरह के अगर उनका हार्मोन्स का इम्बैलेंस है तो ये प्रॉब्लम होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, आप न केवल मरीजों को देखते हैं बल्कि आप एक प्रोफेसर भी हैं एक बहुत बड़ी संस्था, बहुत बड़े हॉस्पिटल में, तो ये दोनों चीजों का जो अनुभव है ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो इससे जुड़े कुछ दिलचस्प अनुभव हमारे साथ बांटिए।
0: या तो इसमें ऐसा है कि बड़े हॉस्पिटल में काम करने का एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि हम बहुत पेशेंट्स देखते हैं जो हम डॉक्टर्स उतने पेशेंट नहीं देखते हैं।
1: अमूमन आप दिन भर में कितने पेशेंट्स देखते हैं?
0: अमूमन पीजीआई चंडीगढ़ का जो मेरा डिपार्टमेंट है, एंडोक्राइन डिपार्टमेंट है, उसमें एक दिन

0: 1200 पेशेंट्स आते हैं लगभग,
1: अरे बाप
0: ट्वेल्व
1: रे,
0: हंड्रेड
1: बारह
0: पेशेंट
1: सौ
0: हाँ, तो ये 3 दिन हमारा ओपीडी होता है, उसमें लगभग 1200 पेशेंट आते हैं।
1: जी
0: तो ऑब्वियसली आप जितने पेशेंट देखोगे उतना आप सीखोगे,
1: अनुभव बढ़ेगा।
0: उसका आपका एक्सपीरियंस उतना होगा। आप कॉमन डिजीज तो देखोगे देखोगे, बहुत रेयर से रेयर डिजीज भी देखोगे, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। फ्यूचर में आपने एक कोई पेशेंट देख लिया जिसका ये प्रॉब्लम आपने डायग्नोज कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम में जैसे ही वो पेशेंट है आप पहचान जाओगे, यार ये पेशेंट तो इस तरह का हमने देखा। तो हमारा एक्सपोजर और एक्सपीरियंस बहुत कई गुना ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू जो लोग दूसरी जगह काम करते हैं जिनको उतना पेशेंट एक्सपोजर नहीं है।
1: जी जी
0: तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो रेयर डिजीज आप डायग्नोज करते हो, आप ट्रीट करते हो, कि आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, ग्रेटिफिकेशन मिलता है कि यार हमने ये काम अच्छा किया है, तो उसमें बहुत मज़ा आता है। तो आपको इसके साथ साथ फिर उसके अलावा इंस्टीट्यूट में रहने से, जैसे मेरा इंस्टीट्यूट में एक रिसर्च जुड़ा हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, तो रिसर्च करते हैं, तो हम नया कोई दवाई उसका ट्रायल करते हैं, कोई नया दवाई बनाते हैं, या बहुत बार अभी हम ऐसा भी करते हैं कि हमारी बहुत सारी इंडियन मेडिसिन्स हैं उनके बारे में प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके हम बताते हैं कि ये दवाई काम करता है, इसको इस तरह से यूज़ करने से बेटर काम करेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा एंगल है,
1: जी
0: और मेरे को लगता है कि इस फील्ड में और ज़्यादा काम करने का ज़रूरत भी है, ताकि हम स्वदेशी चीज़ों का जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में, क्योंकि अल्टीमेटली सारी दवाइयाँ आई कहाँ से, नेचर से आई है। कोई भी दवाई आई पहले तो नेचर से आई, फिर उसको केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन करके हमने फैक्ट्री में बनाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है कि हर बीमारी का इलाज नेचर
1: संभव है
0: में कहीं
1: नेचर के जरिए।
0: कहीं कहीं है। तो हमें जो हमारे हिस्ट्री में, या जैसे हमारा यजुर्वेद है, वो एक तरह से मेडिसिन का वेद है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हमें वो पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए उसमें क्या चीज़ है। तो हम उस तरह से कुछ कुछ फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी बताया, उसके लिए हमने हड़ जोड़ करके एक प्लांट होता है, वो प्लांट का इफेक्ट हमने देखा है कि इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस।
1: क्या बात है।
0: हाँ
1: तो
0: तो
1: रिसर्च एक बहुत महत्वपूर्ण चीज
0: हाँ,
1: है
0: उसमें
1: मेडिकल
0: एक
1: की दुनिया में।
0: एक्साइटिंग है, जैसे वो इस तरह से एक्साइटिंग है, जैसे आप सुबह सुबह उठ करके फटाफट ईमेल चेक करते हो, यार रात को क्या ईमेल आया देखते हैं क्या है ना,
1: जी
0: ऐसा
1: जी
0: लगता है ना कि आप उठ करके व्हाट्सएप देखते हैं, अरे कुछ मैसेज तो नहीं आया। तो इसी तरह से रिसर्च में आपको अगर इंक्विजिटिवनेस है, कुछ सीखना नया करना है, कोई बीमारी आपको पता है यार इसका क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो आपको बहुत उसमें यू एन्जॉय दैट, और पेशेंट एक्सपीरियंस तो हाई है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो इस तरह के बड़े हॉस्पिटल जो इंडिया में तो रिनाउंड है, पर बाहर भी कभी जाते तो दे वे लॉट ऑफ रेस्पेक्ट वर्किंग इन सच इंस्टीट्यूशंस।
1: बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहां कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: जोधा अकबर का एक फेमस गाना है, वो
1: जी
0: सूफी संगीत जो डांस कर रहे होते हैं उस तरह
1: हाँ
0: का,
1: हाँ
0: या दैट
1: हाँ
0: इज
1: वो
0: कहने
1: ख्वाजा मेरे ख्वाजा,
0: ख्वाजा मेरे ख्वाजा।
1: क्या
0: हाँ
1: बात है। सुनते राजस्थान कनेक्शन सामने आ
0: या
1: रहा
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल,
1: बिल्कुल
0: राजस्थान
1: सुनते,
0: मेरी जन्मभूमि कर्म भूमि सब रहा है, तो
1: बिल्कुल
0: रहना ही चाहिए।
1: ये गाना सुनते हैं, राजस्थान से जुड़ा हुआ गाना
0: बिल्कुल
1: है।

0: डॉक्टर साहब, बॉटम लाइन ये है कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हमें नियमित रूप से कराने चाहिए, खासतौर पर हार्मोनल इम्बैलेंस होने का अगर अंदेशा हो तो महिलाओं को।
1: या तो मैं ये बोलता हूं कि दो कॉमन बीमारी जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, डायबिटीज और थायराइड।
0: जी
1: बाकी डिसऑर्डर्स है वो काफ़ी अनकॉमन है, मतलब उनको रूटीन टेस्ट का ज़रूरत नहीं है, वो आपको अगर डॉक्टर कहे तो कराना, बाकी ज़रूरत नहीं है। तो दो जो बीमारियां कॉमन है, डायबिटीज़ और थायराइड डिसऑर्डर्स, तो इनके टेस्ट रेगुलर होते रहना चाहिए। क्योंकि डायबिटीज़ के बारे में ऐसा है कि 50% लोगों को डायबिटीज़ होती है पर उनको पता नहीं चलता है,
0: जी तो इसलिए टेस्ट बहुत
1: तो
0: मायने
1: टेस्ट से
0: रखता
1: ही पता चलेगा कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं है। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास, जब डायबिटीज़ पता चलता था, बात है कि वो आंख का ऑपरेशन कराने के, तो आंख के डॉक्टर ने बोला अभी शुगर टेस्ट कराओ और शुगर आ गया, है ना। या कोई
0: जी।
1: हर्निया का ऑपरेशन कराने गया और हर्निया के ऑपरेशन के चेकलिस्ट दी, भी ये टेस्ट कराओ, तो डायबिटीज का टेस्ट कराया तो आ गया। तो इसका मतलब है उनको डायबिटीज चल रहा था, उनको पता नहीं था। तो इसलिए आप रेगुलर बेसिस पे टेस्ट कराएंगे तो बीमारी का टाइम पे पता चल जाएगा। तो
0: जी
1: डायबिटीज के रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं, उसमें एक तो शुगर टेस्ट होता है, और एक होता है कि आपका एवरेज शुगर होता है 3 महीने में एक बार, जो 3 महीने का रीडिंग देता है उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन A1C।
0: जी
1: तो ये दो टेस्ट आप डायबिटीज के लिए कर सकते हैं।
0: और सबसे आखिर में ये बात बताइए कि हार्मोनल इम्बैलेंस का पता चलता है तो घबराने की जरूरत नहीं है।
1: बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, और इसका मैं जवाब ऐसे देना चाहूंगा कि जब मैं MD मेडिसिन कर रहा था तो मेरा पोस्टिंग CCU में लगा। कभी कभी ऐसा होता था कि मरीज को बचाने की बहुत कोशिश करते पर हार्ट की वजह से हम फिर बचा नहीं पाते, तो रात भर जग रहे पर पेशेंट तो चला गया। तो एंडोक्राइन इसका उल्टा है, अगर आपने बीमारी सही पकड़ ली तो इलाज होगा, बिल्कुल परफेक्ट इलाज होगा और बराबर चलेगा।
0: जी
1: तो ये मतलब कोई ब्रांच खराब और अच्छा नहीं होता है, सबका ज़रूरत है, सबका वैल्यू उतना ही है। पर मुझे खास तौर से ये पसंद आता है कि इसमें ऑलमोस्ट हर बीमारी का हमारे पास इलाज है, और इसलिए हम बहुत बार मरीज को ये बोलते हैं कि तुम एक बार हमारे चक्कर में पड़ गए तो जिंदगी भर हमारे चक्कर में रहोगे, अब निकलोगे नहीं। तो उसका वही है कि जिसको एक बार एंडोक्राइन डिसऑर्डर तो ऑलमोस्ट रहता ही है, तो रेगुलर दिखाना है और रेगुलर चेकअप कराना है। और थायराइड डिसऑर्डर्स को भी आपको रेगुलर चेक कराते रहना चाहिए, उसमें T3 T4 TSH एक टेस्ट होता है
0: जी।
1: थायराइड का, ज़्यादा महंगा नहीं होता है, अगर एक हर साल नहीं तो 2 साल में 3 साल में एक बार करा लेना चाहिए, क्योंकि उसको भी इनिशियल सिम्टम्स पता नहीं चलते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत ही दिलचस्प बातें आपने आज के इस कार्यक्रम में की हैं, और पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को बहुत सारी नई जानकारियां मिली होंगी और वो ज्यादा अवेयर हुए होंगे। तो
1: बिल्कुल
0: इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संजय बरादा, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और हमें इतना वक्त दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
1: धन्यवाद, और मैंने बहुत एंजॉय किया आपका डिस्कशन, एंड उम्मीद है हमारे श्रोताओं को पसंद आएगा।

0: और उनको कुछ को एटलीस्ट जो बोन रिलेटेड इश्यू है जो कि आपने क्वेश्चन की जरा हाईलाइट किया उनको फायदा होगा उससे। धन्यवाद।
1: बहुत शुक्रिया। ये थी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट यानी हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय बनारस से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे।
3: अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए CF1 विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: ये साथी बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा रमकोला भेलकक्ष बड़वारी धुरिया अरचोका बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर घुई और रामानुज नगर में हाथियों की कुल संख्या 12। ये बटई धोंधा नरोला सरहरी केवरा करंजवार दरहोरा सिमई खरसोता परमेश्वरपुर सतकोना मेंड्रा प्रेमनगर कैलाशपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के राजपुर रामानुजगंज धमनी और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये खुखनिया बदौली जामदोहर रेवतपुर जवा खाण धंधापुर उधवा कटरा नरसिंहपुर पकरीडांड जमुनिया रामपुर कनकपुर चीनिया शिवपुर इंद्रावतीपुर कामेश्वर नगर सिलाजू आनंदपुर कोटराही पेंडारी तनवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये असकला दोरना मोहरा जरहा डी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 18 है। ये नारायणपुर चरईमारा रानी कोम्बो बन कोम्बो सारंगडांड कुंजारा ढोंगा आंबा मयूर चूंदी उपका पानी जामचुआ घुघरी महुआडी बोड़ा पहरी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल धर्मजयगढ़ बोरो बाकारुमा लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 111 है। ये प्रेमनगर पोटिया इंचपारा कुड़ेकेला बोजिया जमाबीरा आमापाली पंडोपारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के करतला में दो हाथी विचरण कर रहे हैं। ये

0: बीड़िया, कोटमेर, कोरकोमा, कलगा मार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और पसान में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधीबहरा, मतीन, आमाटिकरा, नवापारा, झुनकीडी, जुनवानी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा, तमनार और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 41 है। ये बंगूरसिया, धुमाबहाल, पूंजी पथरा, तराईमाल, नागदरहा, पंडरी पानी, बटुरा कछार, चिमटा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 27 है। ये तालदादर, अचानकपुर, नवा गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। महासमुंद वन मंडल के महासमुंद में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये केसलडी, नांदबारू, सुकुलबाय, खिरसाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा, नारीपानी, कोनारी, बुड़ार, जिडार, पायलीखंड, बेसराझर, कोदोमाली, तौरेंगा, कुकरार, ताराझर, खोलापारा, छिंदौला, लूठापारा, फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे CF1 विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। अब लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

थोड़ी सी बेवफाई, ये नाम था फिल्म का जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में। शब्द थे नक्श लायलपुरी के, संगीत था खयाम का। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म काला पत्थर का गीत। रचना है साहिल उद्यानवी की, संगीत है राजेश रोशन का।

आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत कार्यक्रम में अगला गीत। फिल्म का नाम है रफू चक्कर, आवाजें हैं शैलेंद्र और कंचन की। गुलशन बाबरा के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: मजबूरी। बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
1: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम, आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
0: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
1: आपकी रक्षा में पूरी।
2: लीजिए सुनिए महिला सभा कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। श्रोताओं, स्वास्थ्य वार्ता फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण हर महीने के दूसरे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 11 अगस्त 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा, जिसकी रिकॉर्डिंग होगी 10 अगस्त यानी आज के दिन सोमवार को। और ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल 11 अगस्त को शाम 5:35 पर। सूचना समाप्त हुई। चलिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है राजपूत, स्वर है किशोर कुमार का, लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आई है।

0: मिलकर साथ में सबको, हर किसी को साथ लाना है, सभी अपराधों को खत्म करने को, बस हमें चेतना जगाना है।
1: चित्रपट संगीत कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत, किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में। रचना है आनंद बख्शी की, संगीत है आर डी बर्मन का, फिल्म का नाम है द ग्रेट गैम्बलर।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए युवा साथियों का कार्यक्रम युवा जगत।

नमस्कार जोहार दोस्तों, मैं वैभव वर्मा आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं कार्यक्रम युवा जगत में। दोस्तों, कभी आपने सोचा है सुबह जब आप आंख खोलते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है? किसी मोबाइल की स्क्रीन नहीं, बल्कि एक नई सुबह। खिड़की से आती ताजी हवा, पेड़ों पर चहचहाते पक्षी, सूरज की सुनहरी किरणें और हमारे आसपास फैली प्रकृति, ये सब इतना सहज है कि हम अक्सर इसकी कीमत भूल जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हमारी जिंदगी का हर पल प्रकृति से किसी न किसी उपहार पर टिका है। हम सांस लेते हैं तो हवा हमें प्रकृति देती है, प्यास लगती है तो पानी प्रकृति देती है, भोजन हमारी धरती देती है और गर्मी में राहत देने वाली ठंडी छांव भी वही पेड़ देते हैं जिन्हें हम कई बार बिना सोचे काट देते हैं। प्रकृति हमसे कुछ नहीं मांगती, बस इतना चाहती है कि हम उसका सम्मान करें और उसे नुकसान ना पहुंचाए। दोस्तों, आज हमारी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा सुविधाजनक हो गई है। घरों में बिजली है, गाड़ियां हैं, एसी है और फ्रिज है, मोबाइल है और इंटरनेट है। विज्ञान और तकनीक ने हमारी जिंदगी आसान बना दी है, लेकिन सुविधाओं के साथ हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ी है, क्योंकि अगर हमारी जरूरतें और उपभोग लगातार बढ़ते जाएं और प्रकृति की चिंता कम होती जाए तो विकास की यही रफ्तार एक दिन हमारे लिए परेशानी बन सकती है। पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली का मतलब यह नहीं कि हम आधुनिक जीवन छोड़ दें या सुविधाओं से दूर हो जाएं। इसका मतलब है आधुनिक बनिए, लेकिन समझदारी के साथ। जरूरत ना हो तो कमरे की लाइट और पंखा बंद कर दीजिए, पानी नल से यूं ही बहता ना छोड़े, बाजार जाते समय कपड़े का थैला साथ रखें, छोटी दूरी के लिए पैदल चले या साइकिल का इस्तेमाल करें, सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें, घर में गीले और सूखे कचरे को अलग रखें और साथ ही प्लास्टिक का इस्तेमाल जितना संभव हो कम करें। और हाँ दोस्तों, एक पेड़ जरूर लगाइए, लेकिन सिर्फ पौधा लगाकर उसकी तस्वीर खींच लेना ही काफी नहीं, उसे पानी देना, उसकी रक्षा करना और उसे बड़ा होते देखना भी हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि पौधा लगाना सिर्फ मिट्टी में एक पौधा लगाना नहीं, यह आने वाली पीढ़ी के नाम एक छोटा सा तोहफा है। सोचिए, जिस पेड़ की छांव में आज कोई बच्चा खेल रहा हो सकता है उसे किसी ने कई साल पहले लगाया हो। शायद उस व्यक्ति को यह भी पता ना हो कि उसके लगाए पेड़ की छांव में भविष्य की कोई पीढ़ी सुकून पाएगी। यही तो प्रकृति का सबसे खूबसूरत रिश्ता है दोस्तों। हम थोड़ा सा देते हैं और प्रकृति हमें उससे कहीं ज्यादा लौटा कर देती है। हम अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छा

घर और बेहतर भविष्य चाहते हैं, लेकिन क्या साफ हवा, स्वच्छ पानी, उपजाऊ मिट्टी और हरे भरे जंगल उनके भविष्य का हिस्सा नहीं है? अगर नदियां साफ नहीं रहेंगी, हवा सांस लेने लायक नहीं रहेगी, मिट्टी अपनी उर्वरकता खो देगी और जंगल लगातार कम होते जाएंगे, तो हमारी सारी तरक्की आखिर किस काम की? इसलिए पर्यावरण की रक्षा किसी एक दिन, किसी एक अभियान या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, यह हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों से शुरू होती है। हम जितना कम बर्बाद करेंगे उतना ही ज्यादा बचा पाएंगे। हम जितना सोच समझ कर इस्तेमाल करेंगे उतना ही प्रकृति पर दबाव कम होगा। याद रखिए, धरती सिर्फ हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का घर भी है। तो आइए, कोई बहुत बड़ा संकल्प लेने के बजाय छोटी छोटी आदतों से शुरुआत करें। पानी बचाएं, बिजली बचाएं, पेड़ लगाएं, प्लास्टिक कम करें, कचरा सही जगह डालें और कभी कभी प्रकृति के साथ थोड़ा वक्त भी बिताएं। कभी किसी पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ कर देखिए, पत्तों की सरसराहट सुनिए, ठंडी हवा को महसूस कीजिए। शायद तब एहसास होगा कि प्रकृति सिर्फ हमारे आसपास नहीं है, प्रकृति हमारे भीतर भी है। और अंत में बस इतना याद रखिए, हमें प्रकृति को बचाकर उस पर कोई एहसान नहीं करना है, हमें प्रकृति को बचाना है, क्योंकि इस प्रकृति में हमारा अपना भविष्य सांस ले रहा है। और एक बात याद रखिए दोस्तों, अगर प्रकृति है तो बसंत है, और अगर प्रकृति नहीं तो बस अंत है। दोस्तों, बातचीत का सिलसिला तो जारी रहेगा, आइए मजा लेते हैं फना पिट फिल्म के चांद सिफारिश गीत का।

0: दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे फना फिल्म के चांद सिफारिश गीत को, जिसमें संगीत दिया है जतिन ललित ने, जिसे लिखा है प्रसून जोशी ने और जिसे गाया है शान और कैलाश खैर ने। दोस्तों चल अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। दोस्तों आज की बात में हमने जाना कि पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाकर हम अपने आसपास की प्रकृति को कैसे बेहतर बना सकते हैं। प्रकृति की रक्षा की बात हो या खेल के मैदान में देश का नाम रोशन करने वाले का जज्बा, युवा पीढ़ी की भूमिका हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए अब बारी है आज के क्रम की। इस क्रम में हमारी खास मुलाकात होगी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी में अपनी पहचान बनाने वाली युवा खिलाड़ी संजना साहू से। उनसे जानेंगे उनके खेल के सफर, अनुभवों और हॉकी के प्रति उनके जुनून के बारे में। तो चलिए पर्यावरण से खेल के मैदान तक इस खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज का क्रम भेंट मुलाकात। दोस्तों अब समय है आज के हमारे विशेष अतिथि से मुलाकात का। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय स्तर की महिला हॉकी खिलाड़ी, जिन्होंने अपने शानदार खेल प्रदर्शन, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। खेल के मैदान में उनका संघर्ष और सफलता आज की युवा पीढ़ी, विशेषकर बेटियों के लिए एक प्रेरणा है। आइए युवा जगत में उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, उनसे जानते हैं उनकी प्रेरणादायक खेल यात्रा के बारे में। सबसे पहले युवा जगत में आपका स्वागत है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप अपने बारे में बताइए, साथ में अपनी खेल यात्रा के बारे में भी संक्षेप से हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस अवसर को प्रदान करने के लिए कि जहाँ पे मैं अपना जो संघर्षपूर्ण ये खेल यात्रा है, खेल का जो सफ़र है, वो मैं सभी श्रोतागणों के साथ साझा कर सकूं। और मैं राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी संजना साहू, जिला जांजगीर चांपा से। और मेरा जो ये खेल का सफ़र रहा है, मैं पिछले 10 से 12 सालों से खेल रही हूँ, तो ये जो सफ़र रहा है वो काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है और संघर्ष आज भी जारी है। मंजिल की प्राप्ति नहीं, मतलब वैसे मंजिल की प्राप्ति तो कभी नहीं होती, हमारा जो किसी चीज़ को सीखने की चाह है वो जीवन भर रहती है, तो बस अभी भी संघर्ष जारी है। सर
0: आप बताइए कि आपको हॉकी खेलने की प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ से आप इंस्पायर हुई?
1: जी हॉकी खेलने की प्रेरणा जहाँ तक मैं बोल सकूँ कि मैं जिस सिटी में रहती हूँ वहाँ, जैसे जब मैं पिछले 10 साल पीछे जाया जाए तो वहाँ मैं जो हम मेरे अभी जो सीनियर्स हैं उन लोगों को मैं खेलते हुए देखती थी, और मेरे जो कुछ सहपाठीगण भी थे जो स्कूल में हम साथ पढ़ते थे। जब मैं इसको जो हॉकी का खेल की शुरुआत नहीं करी थी उस टाइम पे मेरे दोस्त खेलते थे, तो उस टाइम उन लोगों को देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ काश मैं भी जाऊं उस खेल को खेलने के लिए, एक्चुअल में हॉकी होता कैसा है या क्या है वो, ऐसे करके। फिर उन लोगों को देख के मैं हॉकी ज्वाइन करी। और रही बात इंस्पायर की, तो आने जाने स्कूल वगैरह आने जाने में रोड में, हमारे रोड के बगल में ही हॉकी ग्राउंड पड़ता है, तो रोज आने जाने में देखना होता था। तो बस ऐसे उन लोगों को देख के मैं थोड़ा सा इंस्पायर होती थी कि हाँ काश मुझे मौका मिलता वहाँ पर जाने का और मैं भी उस मैदान में जाके हॉकी खेल सकूँ, ऐसा करके।
0: मैम लगातार हम सुनते हैं कि आप और आपकी टीम बहुत सारे मंचों पे अपने अपने स्कूल का, जिले का, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। इस स्तर तक पहुंचने के लिए आपको किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ा मैम?
1: जी वैसे तो किसी खिलाड़ी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि हमारा जो राज्य स्तर है और राष्ट्रीय स्तर है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बोला जाए, वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी संघर्षपूर्ण सफ़र रहता है वहाँ पे। तो मैं जहाँ तक

0: एक राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, तो राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचने के लिए बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। जैसे संसाधनों की कमी है, हमारे यहाँ ग्राउंड की कमी है ना। जैसे कि एक्चुअल में हॉकी का ग्राउंड जो एस्ट्रो टर्फ में खेला जाता है बाहरी, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल या बड़े बड़े शहरों में जो खेला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जिन ग्राउंड पर प्रैक्टिस होता है वो एक मिट्टी वाला मैदान है, जो कि वहाँ संसाधन की कमी है। और उस संसाधन की कमी को देखते हुए भी जितने अब जितना परिपूर्ण था उसमें ही हम ढल जाने का प्रयास किए, और बिल्कुल उन सारी चुनौतियों का सामना किए हम। और कहीं ना कहीं प्रशिक्षकों की भी मतलब वो थी, फिर भी हम जो हमारे साथ जो प्रशिक्षक थे उनके हर बात को मानते हुए, उनको फॉलो करते हुए हमने आगे बढ़ा।
1: संजना, आपकी फैमिली और आपके कोच का इस सफर में कितना योगदान है?
0: जी, मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ तक पहुँचने के पीछे मेरे पिता पिता और मेरे कोच का ही सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि कहीं ना कहीं हॉकी के क्षेत्र में हॉकी के स्किल्स को सीखने के लिए और उसकी स्किल को सीख कर उसके ज़रिए मैं आज राष्ट्रीय स्तर पर पहुँची हूँ, तो कहीं ना कहीं वो मेरे कोच का योगदान रहा है। और उस हॉकी खेल से जुड़ने के लिए जो प्रेरित किए हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं मेरे माता पिता का योगदान है, तो दोनों का काफ़ी सपोर्ट रहा है, कभी किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं हुई है। और मैं जहाँ तक जब तक पिछले 10 सालों में बोला जाए तो मैं एक डिसिप्लिन फुल खिलाड़ी के रूप में रही हूँ, कभी किसी की चीज़ की शिकायत नहीं मिली है मेरे नाम से, तो कोचेस जो हैं मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, या टीम, अगर मैं टीम लीडिंग भी कर रही हूँ तो वहाँ पे मुझ पर भरोसा किया जाता है। और कहीं ना कहीं मेरे कोचेस और मेरे माता पिता का यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
1: संजना, आपने इतने सारे मंचों पे राज्य का, जिले का, स्कूल का प्रतिनिधित्व किया है, इन सब प्रतियोगिताओं में आपका सबसे यादगार अनुभव कौन सा है?
0: यादगार, वैसे तो हम जितनी भी प्रतियोगिताएं करते हैं हर प्रतियोगिता में कुछ न कुछ यादगार पल छूट ही जाता है हमारे पास पीछे, लेकिन ऐसा बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं अभी 2 साल पहले मैं एक, हमारा जो ओपन सीनियर टूर्नामेंट होता है जिसके लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट नाम का एक अलग से टूर्नामेंट होता है, उस पे सिलेक्शन अगर होता है तो फिर हम आगे ऑल इंडिया सीनियर ओपन नेशनल जो है वो हम खेलते हैं। तो जब मैं अपने जिले को रिप्रेजेंट कर रही थी, और क्या बोलते हैं, तो वो इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो टूर्नामेंट्स था उसमें मैं अपने अपनी टीम की कप्तानी कर रही थी, और एंड टाइम पे जो समय बचा हुआ था जहाँ पे बॉल मेरे पास थी और मुझे वहाँ पे गोल मारना था, शायद मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या पता नहीं, फिर मुझसे गोल नहीं हो पाया, उसके चलते फिर हमारी जो ओपोनेंट टीम थी जिससे हमारी मैच हो रही थी तो हमारा मैच ड्रॉ हो गया, मींस बराबरी हो गया। उसके बाद फिर काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बाद में इतना पछतावा हुआ कि काश मैंने 2 मिनट पहले गोल मार दिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। उसके चलते मेरे कोचेस, मेरे सीनियर्स या अपनी टीम के ऊपर भी, जैसे कप्तान तो रही हूँ लेकिन उंगली तो सबके ऊपर उठता है, गलतियां होती है तो, है ना, तो ये काफी मतलब वो रहा है, इस पल को मैं भूल नहीं पाऊंगी कि मेरे वजह से टीम हार गई थी, तो मैं आगे उसको सुधारने की कोशिश करती हूँ हमेशा।
1: संजना, एक हॉकी प्लेयर की डेली लाइफ रूटीन कैसी होती है, उनकी दिनचर्या कैसी होती है, प्रैक्टिस और फिटनेस पे कितना ध्यान देना होता है?
0: सबसे पहली बात तो ये बताऊं कि एक खिलाड़ी जीवन का जो दिनचर्या होता है, चाहे वो किसी भी खेल का हो, प्रॉपर हॉकी के लिए भी नहीं बोलूंगी मैं, किसी भी खेल के लिए एक खिलाड़ी को अपनी दिनचर्या, अपनी डेली रूटीन जो है, चाहे वो खान पान हो, रहन सहन हो, सब चीज़ के लिए काफ़ी ध्यान देना पड़ता है एक खिलाड़ी के रूप में रहने के लिए। और खान पान सुबह से शाम तक की जो दिनचर्या है, जो हमारे खेल के लिए जो हम अभ्यास जो होता है सुबह शाम का हमारा, उन सब चीज़ों में बहुत ध्यान देना पड़ता है।
1: जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, स्टूडेंट भी हैं, तो पढ़ाई और खेल के बीच में बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है? क्या दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है?
0: जी बिल्कुल, साथ लेकर चला जा सकता है, जैसा कि मैं खुद लेकर चलती हूँ। मैं एक शारीरिक शिक्षा में बैचलर डिग्री मेरा कंप्लीट हो चुका है, और मैं पढ़ाई के क्षेत्र में भी उतना ही ध्यान देती हूँ जितना मैं खेल के लिए समर्पित रहती हूँ। और कहीं ना कहीं दोनों के वजह से एक दूसरे को कभी कोई इफेक्ट पड़ने भी नहीं देती, तो ये बैलेंस मैं हमेशा बना के चलती हूँ कि मेरे पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई होता है, खेल अभ्यास के टाइम पे, या चाहे वो एक खिलाड़ी के रूप में हो, चाहे वो एक प्रशिक्षिका के रूप में हो, या एक निर्णायिका के रूप में हो, मैं गो बैलेंस बना के चलती हूँ, दोनों के लिए समय निकालती हूँ।
1: संजना, आज के समय में लड़कियों के लिए खेलों में कैरियर की क्या संभावना है? क्या कैरियर बनाया जा सकता है खेल में?
0: जी, इस बारे में मैं महत्व महत्वपूर्ण बिंदु बताना चाहूंगी कि खेल में बिल्कुल आजकल के जो जनरेशन में खेल को एक महत्वपूर्ण स्कोप के रूप में देखा जाता है, और सभी माता पिताओं से भी मैं अनुरोध

0: करूंगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, चाहे वो बेटा हो या बेटी, सभी को खेल के लिए करें या खेल के लिए प्रेरित करें कि हम खेल होना चाहिए जीवन में, और पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है, जो कि शारीरिक मानसिक रूप से अपने को स्वस्थ बनाता है, और काफ़ी अच्छा करियर भी है खेल के रूप में। आजकल तो गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है खेल के क्षेत्र को, चाहे वो बेटा हो या बेटी, सभी आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल,
1: अगर कोई यूथ हॉकी के फील्ड पे आगे बढ़ना चाहता है तो उसे शुरुआती स्तर पर किन बातों का ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए?
0: जी, अगर कोई एक खिलाड़ी के रूप में, एक हॉकी खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़ना चाहता है, तो शुरुआती स्तर पर अपने आसपास के जो भी खेल प्रशिक्षक जहाँ दिए जाते हैं हॉकी खेल का, जहाँ कहीं एसोसिएशन चलता हो, वहाँ जाके आपको एडमिशन लें और प्रशिक्षक लोग से बात करें और वहाँ से हॉकी खेल की शुरुआत करें। और रही बात खेल की, तो खेल के अंदर काफ़ी सारे स्किल्स होते हैं, जो कि शुरू से आखिरी तक जो हमारा आधार स्तंभ होता है, जो बेसिक स्किल्स होते हैं, वहाँ से शुरुआत होकर हम आगे राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।
1: संजना, हम सब अपने जीवन में घट रही तमाम घटनाओं से कुछ कुछ चीज़ें सीखते रहते हैं। ऐसे ही मैं जानना चाहूँगा कि खेल से आपने जीवन में कौन कौन से महत्वपूर्ण सबक सीखे, खेल से आपको क्या सीख मिली?
0: जी, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा जीवन ही पूरा खेल के लिए समर्पित हो गया है, पहली बात। तो दूसरी बात ये है कि मेरा जो पढ़ाई का वो है, वो भी मैं दोनों साथ लेके चलती हूँ, लेकिन दोनों को मैं बराबर टाइम देती हूँ। लेकिन खेल के क्षेत्र में मैं, ऐसा है कि खेल के बिना जीवन जीना असंभव है, हम जैसे, मतलब खिलाड़ियों के लिए बोला जाए तो। और रही बात ये है कि खेल से जो सीख मिली है हमेशा, कि हारना नहीं है कभी। और रही बात, हम किसी किसी जगह को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो जिला हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो हमारा देश हो, तो हम कहीं ना कहीं ये सोचना, या हर खिलाड़ियों को ये सोचना चाहिए कि जो हम जिस जिला को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उस जिले का काम नहीं है हमको आगे बढ़ाना, वो हमारा काम है हमारे जिले को आगे बढ़ाना, है ना। तो ये, इन बातों का ध्यान सभी खिलाड़ियों को देना चाहिए, और मेरे ख्याल से सभी खिलाड़ियों को इन बातों को सोचना चाहिए।
1: क्या कभी कोई ऐसा समय आया है जब आपको लगा हो कि सब कुछ छोड़ दे, उस समय आपने खुद को कैसे संभाला?
0: जी बिल्कुल, ऐसा भी कभी समय आता है जब हमें हार का सामना करना पड़ता है। किसी भी प्रतियोगिता में हम भाग ले रहे होते हैं और हमें हार का सामना करना पड़ता है, या कहीं ना कहीं हमारे वजह से हार मिली हो, तो उस जगह पे ऐसा होता है कि अरे, मतलब हॉकी छोड़ दे क्या, अब हमारी वजह से टीम को हारना पड़ गया है, अब आगे हमारा कुछ बचा नहीं है, इस टाइप का कभी निराशाजनक आ जाता है कभी कभी। पर हमारे कोचेस वहाँ पे हमको समझाते हैं कि नहीं, यह हारना नहीं है, ये हार नहीं है, ये सबक है, एक है ना आगे और मेहनत करने का। तो हम, तो ऐसा होता है, या वो हमें सिखाते हैं कि तुम किसी और को जीता के तुम खुद हारे हो, तो तुम एक्चुअल में हारे नहीं हो, वो एक सबक है, और आगे और मेहनत करके उस मुकाम को हासिल कर सकते
1: जी,
0: हैं।
1: मैंने सुना भी है एक स्पोर्ट पर्सन से कि हारता नहीं है कोई, या तो आप जीतते हैं या तो आप सीखते हैं।
0: बिल्कुल।
1: संजना, आपके फ्यूचर प्लान क्या हैं, भविष्य के लक्ष्य क्या हैं? क्या आप इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं?
0: लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्र होता है उस स्तर तक पहुंचने के लिए भी, क्योंकि मेरा अब उस अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचने का उम्र जो है, एक उसमें निकल चुका है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं एक प्रशिक्षिका और एक निर्णायिका के रूप में आगे आऊँ।
1: प्लेयर बनी नहीं तो क्या हुआ, प्लेयर बना तो
0: जी
1: सकते
0: जी
1: हैं।
0: बिल्कुल, जो हम नहीं खेल पाए, वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे खिलाड़ी लोग हैं, उनको हम सिखा के हम उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें।
1: अंत में संजना, हमारे युवा साथियों के लिए आपका क्या संदेश है?
0: जी, मैं हमारे युवा साथियों को और सभी श्रोतागणों को यही संदेश देना चाहूंगी कि सभी खेल के लिए प्रेरित हों और ज़्यादा से ज़्यादा खेल के लिए आगे बढ़ें। और सभी माता पिता से भी अनुरोध है, चाहे वो बेटी हो या बेटा, अपने बच्चों को खेल के लिए प्रेरित करें और खेल से जुड़ने के लिए मौका दें। थैंक यू सो मच।
1: दोस्तों, अभी हमारे साथ जुड़ी हुई थी राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर संजना साहू। मुझे उम्मीद है आपको इस चर्चा में मजा आया होगा और आपको काफी नई चीजें जानने को मिली होंगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों कार्यक्रम में आगे। दोस्तों, कभी इंसान ने आसमान की ओर देखकर सिर्फ इतना सोचा था, काश हम भी उड़ पाते, काश दूर बैठे किसी अपने से पल भर में बात कर पाते, काश अंधेरे में दिन जैसी रोशनी होती। और आज देखिए, इंसान ने अपने उन तमाम काश को हकीकत में बदल दिया है। यही तो विज्ञान की खूबसूरती है, जो कल तक कल्पना थी विज्ञान उसे आज की सच्चाई बना देता है। विज्ञान ने इंसान को सिर्फ नई मशीनें नहीं दी, बल्कि नई

उम्मीदें दी हैं। कभी किसी बीमारी का नाम सुनकर परिवार डर जाता था, लेकिन आज आधुनिक चिकित्सा, नई दवाइयाँ और अत्याधुनिक मशीनों ने इलाज की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा दिया है। अस्पतालों में ऐसी तकनीक मौजूद है जो शरीर के भीतर छिपी बीमारी को पहचानने में डॉक्टरों की मदद करती है। कहीं रोबोट सर्जरी में सहयोग कर रहे हैं तो कहीं AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई संभावनाओं के दरवाजे खोल रही हैं। सच कहे तो विज्ञान कई बार उस उम्मीद का नाम बन जाता है जहां इंसान लगभग हार मान चुका होता है। और जरा अपने आसपास देखिए, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन शिक्षा, इन सब ने हमारी जिंदगी को कितना बदल दिया है। आज गाँव का विद्यार्थी भी दुनिया के बड़े शिक्षकों से सीख सकता है। किसी दूर शहर में बैठा व्यक्ति अपने परिवार से वीडियो कॉल पर जुड़ सकता है। किसान मौसम की जानकारी और आधुनिक तकनीक की मदद से अपनी खेती को बेहतर बना सकता है। अंतरिक्ष विज्ञान ने तो इंसान की कल्पना को धरती से उठाकर चांद

इंटेलिजेंस नई संभावनाओं के दरवाजे खोल रही है। सच कहे तो विज्ञान कई बार उस उम्मीद का नाम बन जाता है जहां इंसान लगभग हार मान चुका होता है। और जरा अपने आसपास देखिए, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन शिक्षा, इन सब ने हमारी जिंदगी को कितना बदल दिया है। आज गांव का विद्यार्थी भी दुनिया के बड़े शिक्षकों से सीख सकता है। किसी दूर शहर में बैठा व्यक्ति अपने परिवार से वीडियो कॉल पर जुड़ सकता है। किसान मौसम की जानकारी और आधुनिक तकनीक की मदद से अपनी खेती को बेहतर बना सकता है। अंतरिक्ष विज्ञान ने तो इंसान की कल्पना को धरती से उठाकर चांद और मंगल तक पहुंचा दिया है। दोस्तों, भारत भी विज्ञान के सफर में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष से लेकर चिकित्सा, कृषि, संचार और डिजिटल तकनीक तक देश को नई दिशा दी है। यह उपलब्धियां सिर्फ वैज्ञानिकों की सफलता नहीं है, बल्कि उन करोड़ों भारतीयों के सपनों की उड़ान है जो एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत देखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, विज्ञान की असली खूबसूरती तब है जब विकास के साथ प्रकृति का भी ख्याल रखा जाए। आखिर जिस धरती पर हम खड़े हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस पानी से जीवन चलता है, उसे भूलकर कैसी तरक्की। आज विज्ञान हमारे सामने ऐसे रास्ते भी खोल रहा है जहां विज्ञान और प्रकृति एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि साथी बन सकते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, जल संरक्षण की आधुनिक तकनीक और पर्यावरण के अनुकूल तकनीक हमें बता रही है कि तरक्की ऐसे भी हो सकती है जिसमें आसमान ऊंचा हो लेकिन धुआं कम हो। हमें ऐसी तकनीक चाहिए जो खेतों को बेहतर बनाए लेकिन मिट्टी को नुकसान न पहुंचाए। ऐसी ऊर्जा चाहिए जो हमारे घरों को रोशन करे लेकिन प्रकृति का अंधेरा न बढ़ाए। ऐसी प्रगति चाहिए जिसमें शहर स्मार्ट हो लेकिन पेड़ भी सुरक्षित रहे, क्योंकि प्रकृति हमारी जरूरत पूरी कर सकती है, हमारी लालच नहीं। और शायद विज्ञान हमें सबसे बड़ा सबक यही देता है, हम प्रकृति के मालिक नहीं हैं बल्कि उसका हिस्सा है। तो आइए विज्ञान को अपनाएं, तकनीक को समझें, नई खोजों का स्वागत करें, लेकिन अपनी नदियों, जंगलों, पहाड़ों, मिट्टी और हवा को भी उतना ही प्यार दें, क्योंकि हमें सिर्फ भविष्य की दुनिया नहीं बनानी, हमें ऐसी खूबसूरत दुनिया बनानी है जिसमें भविष्य की पीढ़ियाँ सांस भी ले सकें और मुस्कुरा भी सकें। यही विज्ञान की सच्ची उड़ान है और यही इंसान की असली तरक्की है। दोस्तों, बातचीत का सिलसिला तो जारी रहेगा, आइए लेते हैं इस शानदार से गीत का आनंद।

दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे ओम शांति ओम फिल्म के गाना, जिसे गाया है केके ने, जिसे लिखा है विशाल ददलानी ने, जिसमें संगीत दिया है विशाल शेखर ने। दोस्तों, अब समय है आपसे विदा लेने का, मुझे यानी वैभव वर्मा को दीजिए इजाजत। और हाँ दोस्तों, सुनना ना भूले सप्ताह के प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम 5:35 पे कार्यक्रम युवा जगत।

युवा साथी सुन रहे थे अभी अपना कार्यक्रम युवा जगत। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में पहले हम जानकारी देंगे आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। 7:30 पर आज ग्राम सभा कार्यक्रम में बेरा के गोठ का विषय होगा धान फसल में कीट रोग नियंत्रण। इसके अलावा भेंटवार्ता का विषय होगा खरीफ फसल के प्रमुख रोग एवं उनका नियंत्रण। इस विषय पर सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र बिलासपुर के डॉक्टर विनोद निर्मलकर से बातचीत करेंगे हरीश माड़वा। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का प्रसारण किया जाएगा 6:20 और शाम 7:00। रजनीगंधा कार्यक्रम हम लेकर आएंगे रात 8:15 पर। विविध भारती प्रसारण सेवक के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे रात 9:15 से। ये तो थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण में आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं ये संदेश।

0: मजबूरी।
1: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
0: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
1: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
0: आपकी रक्षा में पूरी।
2: कार्यक्रम विवरण में आगे बढ़ते हैं और डालते हैं नजर कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर भी। सुबह 6:30 पर खेती की बात कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा शिमला मिर्च की खेती। चिंतन आप सुनेंगे सुबह 6:45 पर। सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह हम लेकर आएंगे सुबह 7:05 पर। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार नगमे कार्यक्रम। कल सुबह 8:30 पर हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां, और सुबह 10:00 हम आकाशवाणी रायपुर से ही रिले करेंगे कार्यक्रम उजाले की ओर। नए तराने कार्यक्रम का आनंद लिया जा सकता है सुबह 10:30 पर। सुबह 11:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। कल शाम 5:05 पर विविधा

कार्यक्रम में आप सुनेंगे अंचल के लोकप्रिय सूफी गायक नरेंद्र पाल सिंह निंदर से अंतरा चक्रवर्ती की बातचीत। प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। कल शाम 5:35 पर बहनों के कार्यक्रम महिला सभा में सामयिक चर्चा का विषय होगा स्टील पैन के मधुर स्वर, साथ ही क्रम स्वास्थ्य वार्ता का और प्रस्तुति होगी मोनाली ठाकरे की। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी कल शाम 7:30 पर हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे, ईमेल करेंगे। सुने कार्यक्रम का समय होगा 6:20 और शाम 7:00। रजनीगंधा कार्यक्रम का समय होगा 8:15। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, 6:10 होने को हैं। छत्तीसगढ़ी में समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग मीनल तिवारी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाए जाते। आज रायपुर में प्रदेश स्तरीय तिरंगा यात्रा निकाले गई। राज्य के कोनो भी नगरी निकाय में अब निर्वाचित महिला जन प्रतिनिधि के पारिवारिक सदस्य नातेदार ला परोक्ष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं करे जाही। और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के मौका में आज प्रदेश में 19 बछर तक के लयिका मल्ला दे जावत है दवाई। अब समाचार विस्तार ले। हर घर तिरंगा अभियान में आज रायपुर में प्रदेश स्तरीय तिरंगा यात्रा निकाले गई। सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम ने सुभाष स्टेडियम तक निकले ये यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और आम लोगन संग्रीन। ये बेरामा मुख्यमंत्री हकीहीन की प्रधानमंत्री के आह्वान में देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाए जाते। एकर उद्देश्य अवैया पीढ़ी ला स्वतंत्रता और राष्ट्रध्वज के महत्ता बताना है। मुख्यमंत्री है प्रदेशवासी मन ले अपन घर मा तिरंगा फहराए के आह्वान करत कहिन कि ये दिन हमर वीर शहीद मन ला सुरता करे के दिन है।
2: को महापुरुष के कुर्बानी के बाद हमन ला आजादी मिली से फेकर जानकारी हमर आने वाला पीढ़ी ला भी होना चाहिए। आजादी के महत्व मन ला भी समझ में आना चाहिए। आप सबसे आग्रह है, निवेदन है कि अपन अपन घर में आप मन भी तिरंगा ध्वज ला आप मन ला फहराना है।
1: तिरंगा यात्रा के दौरान हाथ में राष्ट्र ध्वज लेके बड़ संख्या में लोगन मन भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारा लगाइन। ये यात्रा में युवा और स्कूल पढ़े लयिका मन हा उत्साह के संग भाग लीन। राज्य के कोनो भी नगरी निकाय में अब निर्वाचित महिला जन प्रतिनिधि के पति, पुत्र, पुत्री, भाई बहनी या कोनो तीर के पारिवारिक सदस्य नातेदार ला उखर परोक्ष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं करे जाही। राज्य सरकार है छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 और 1961 कोतिले देगे शक्ति के प्रयोग करत बछर 2022 के अधिनियम में संशोधन कर दे है। इस संबंध में नगरी प्रशासन विभाग कोतिले राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दे गए है। राजपत्र में प्रकाशन के संगे संग ये प्रतिबंध जम्मू नगरी निकाय मन में लागू हो गए है। प्रदेश में संभावित बाढ़ आपदा ले निपटे के तैयारी ला परखे खातिर अवैया 20 तारीख के मॉक ड्रिल रखे जाही। उन्हें 18 अगस्त के राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज हुई। आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लेगी। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव शम्मी आबिदी है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी मन ला टेबल टॉप एक्सरसाइज और आपदा प्रबंधन ला बने ढंग ले चलाए बर ओला समझे के निर्देश दिन है। बैठक बाढ़ के स्थिति होय मा आने आने विभाग संग बने तालमेल के संग राहत और बचाव काम के तैयारी के समीक्षा करेगी। बैठक में प्रदेश के सबो जिला के नोडल अधिकारी ऑनलाइन जुड़ीन। महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हा विभाग ले रिटायर होवैया

अधिकारी और कर्मचारी मन के प्रकरण के समय राहत निराकरण करे के निर्देश दिन है। उमन की हिन कि रिटायर होए के दिन माही संबंधित कर्मचारी मल्ला पेंशन ग्रेचुटी छुट्टी के पैसा और आने सबो भुगतान होना चाहिए। मंत्री है विभाग के संचालक और प्रमुख सचिव ला सेवानिवृत्ति प्रकरण के पहले चले तैयारी सुनिश्चित करे के निर्देश दिन। उमन की हिन की सेवा सत्यापन अनापत्ति प्रमाण पत्र समेत अन्य दस्तावेज के काम बेरा माप पूरा करे जाए। मुख्य सचिव विकासशील है आज मंत्रालय में लैका मन के स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम ला लेके यूनिसेफ और आने आने विभाग के अधिकारी मन के संयुक्त बैठक लीन। बैठका में लैका मन के पोषण स्वास्थ्य शिक्षा पिए के पानी और साफ सफाई सेवा ला बने प्रभावी बनाए पर गोट बात हुई से उन्हें कुपोषण एनीमिया मातृ शिशु स्वास्थ्य जैसन मुद्दा के समीक्षा करेगी। मुख्य सचिव है लैका मन पर जरूरी पोषक तत्व विटामिन और आयरन के उपलब्धता सुनिश्चित करे के निर्देश दिन। बैठका में टेक होम राशन के गुणवत्ता सुधारे लैका मन ला पुष्टि जिनिस देवाय और ग्राम पंचायत स्तर में अनाज बैंक के अवधारणा ऊपर घलो गोट बात हुई से। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था। अब आगू बढ़बो बांचे समाचार कोती। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के मौका मा आज प्रदेश मा 19 बच्छर तक के लैका और किशोर किशोरी मल्ला एल्बेंडा जोल के दवाई खवाएगी। एकर बर सरकारी और प्राइवेट स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र और आने संस्थान ले दवा खवाए के व्यवस्था कराई गई रहीस। कहूँ कोनो लैका आज दवाई खाए ले चुक गए हैं तो ओला मॉपअप दिवस माने 17 अगस्त के कृमि नाशक दवाई दे जाही। ये अभियान मा प्रदेश मा 1,10,00,000 लैका और किशोर मल्ला एल्बेंडा जोल के खुराक दे के लक्ष्य रखे गए हैं। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह के तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 15 अगस्त के राजधानी रायपुर के पुलिस मैदान में रखे गए राज्य स्तरीय समारोह में झंडा फहरा के परेड के सलामी ली ही। बिलासपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, दुर्ग में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और बस्तर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा झंडा फहरा ही। विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह राजनांदगांव में ध्वजारोहण करी। प्रदेश के आने जिला मुख्यालय मन में मंत्री सांसद विधायक स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण करी। उन्हें सबो माय पहुना ये बेरा मां मुख्यमंत्री के संदेश पढ़ी। नई दिल्ली के इंडिया हेरिटेज सेंटर में आज पद्म विभूषि छत्तीसगढ़ के जाने माने पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजन बाई के सुरता मां आईएससी लोक संगीत सम्मेलन के शुभारंभ हुई। ये मौका मां पंडवानी कलाकार प्रभा यादव है पंडवानी के प्रस्तुति दिन कार्यक्रम मां पंडवानी ला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाए मां तीजन बाई के योगदान ला सुरता करेगी। ये मौका मां मुख्यमंत्री के सलाहकार आर कृष्णदास धरसीवा विधायक अनु शर्मा इंडिया हैबिटेट सेंटर के निर्देशक प्रोफेसर डॉक्टर के जी सुरेश मौजूद रहीन। तकनीकी शिक्षा विभाग वर्तमान सत्र के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में भर्ती पर पंजीयन के आखिरी तारीख 11 अगस्त संध्या 6 बजे तक बढ़ा दे है। ये सुविधा डिप्लोमा इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर CDDM IDMOM HMCT और डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री समेत सबो 4 पाठ्यक्रम पर लागू होगी। ITI के नतीजा घोषित होए के बाद पास हुए उम्मीदवार मल्ला डिप्लोमा पाठ्यक्रम में संग्रह के मौका दे बर ये बेरा ला बढ़ाए गए है। आज सावन सोमवार के दूसर सोमवार है। ये मौका मार राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर के शिव मंदिर मन मा भक्त मन के भीड़ उमड़े है। श्रद्धालु भिनसर चले भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक करके पूजा पाठ करत है। मंदिर के तीर्थखार मा नरियर फूल पान बेलपत्र के दुकान सजे है। उन्हें बुढ़ेश्वर हटकेश्वर महादेव समेत अन्य शिव मंदिर में सुघर सजावट करे गए है। भक्त मन के कतार सबो मंदिर में देखे जा सकत है और लोगन के ताता लगत है और लोगन मानता माना थे। एती कांवड़िया मन पवित्र जल लेके भगवान भोलेनाथ के अभिषेक खातिर मंदिर पहुंचत है। अब जानन मौसम के हाल। मौसम विभाग अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के सूरजपुर और बलरामपुर जिला में बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी करे है। ये जिला के कुछ एक जगह में भारी वर्षा हो सकत है। उन्हें मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जसपुर कोरिया कोरबा सरगुजा बस्तर और बीजापुर समेत 11 जिला में येलो अलर्ट जारी हुए है। प्रदेश के बाकी जिला मन में हल्का ले मध्यम वर्षा हो सकत है।
इही बीच सरलग वर्षा के सेती मुंगेली जिला में मनियारी और आगर नदिया उफान में हवय, जेखर ले जिला के 19 ठन गांव के संपर्क रद्दा टूट गए हे। एसडीआरएफ के राहत और बचाव

0: काम चला के बाढ़ में फंसे करीबन 200 लोगन ला सुरक्षित राहत शिविर में पहुंचाए जाते। राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में 25वां छत्तीसगढ़ स्टेट जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू हो गई। एकर शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री अरुण साव करीन। ये प्रतियोगिता 13 अगस्त तक चली, जेमा अंडर 19 बालक और बालिका वर्ग के खिलाड़ी भाग लेवा थे। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाए जाते। आज रायपुर में प्रदेश स्तरीय तिरंगा यात्रा निकाली गई। राज्य के कोनो भी नगरी निकाय में अब निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि के पारिवारिक सदस्य नातेदार ला परोक्ष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं करे जाही। और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के मौका में आज प्रदेश में 19 बछर तक के लयिका मन ला दे जावा थे दवाई। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
2: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुनें।

ई मेल करें। गीत सुनी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, स्वीकार कीजिए रत्ना का नमस्कार। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आप सभी की पसंद से। पहला गीत हमने लिया है लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है आया सावन झूम के, लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया है इस गीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, पसंद है आप सभी श्रोताओं की। नरगोड़ा से हैं कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी, दिशा। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश, साबले पाटिल, राजदीप, राशि और शीतल। मोहाली चंडीगढ़ से टी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप और परिवार के सभी सदस्य। विरमगाम राजकोट से हैं रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा। बिलाईगढ़ से खेकराम देवांगन, रेणु, रजनी, प्रियंका। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिय, राधिका, निष्का, तन्मय। सौंगा मंगलोर से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हेंश कुमार। ओड़ीभाटा कलतरा से हैं दिलीप चंदन, चोबाराम, यदु, निखिल, वसुंधरा, प्रांजल। देगलोर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या, सविता। दिल्ली से हैं तुलसी मस्किन, बीना, चैतन्य, मेघा। तिवर्ता से डबरीपारा जिला कोरबा से हैं महेंद्र प्रताप, मरकाम, जया, जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र, मरकाम, मोहन सिंह, सहोदरी बाई, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई, चंद्रपाल, मरावी, लक्ष्मी, थादवानी। बठिंडा पंजाब से हैं परम सिंह जोहड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, करण, तपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन, अभिजोत। पांडरकवड़ा से अनिल, उशान, श्री, धनश्री। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, गर्व और हिमाक्ष। कुमार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा, प्रतीक्षा चंदन। मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल। मेहसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहां और परिवार के सभी सदस्य। चिरमिरी कुरासिया कालरी से हैं चंद्र इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम सौदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद, कालिंद्री। तेलंगाना भोंगीर से हैं मोहम्मद बुरानुद्दीन, मोहम्मद यूसुफुद्दीन। रघुनाथपुरा श्री गंगानगर, राजस्थान

से लाल गिरी गोस्वामी, हेमलता हीना, हर्षित खुशी, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सच्चा सिंह पाठक, मुजफ्फरपुर बिहार से हैं आर्यन राज, पीयूष कुमार, रोहित, गांव थाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता गीता, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता कर्ण, शक्ति रिया जया और दर्शन भाई। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म आया सावन झूम के का ये गीत।

इसके बाद आइए सुनते हैं, ईमेल करेंगे सुने कार्यक्रम में अगला गीत। फिल्म का नाम है इंतकाम। आवाजें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की। राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद है आप सभी श्रोताओं की। राजकोट से हैं जूली, जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी। जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश जायसवाल और मिला दीपक स्वाति। सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम। गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश। भिलाई नगर से हैं अशोक श्याम कुमार, प्रेमिला आसमा और उनका पूरा परिवार। लुथरा खमरिया से हैं नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज। लोगढ़ ठाकरावाला से हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर, गुरलाल, अविराज सिंह। लोहारेडी है जिला कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी, लालिमा, खुशांत और निशांत। गिरडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, मिफरा नाज, अहद चाहत। पलारी से नितेश कुमार दिवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूर्णाराम, कृष्णा दिवांगन। लुथरा खमरिया से अक्रम अमीन, अर्श आतिका। डोंडी लोहारा बालोद से हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव और अलकबीर। सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, हबीब मोहम्मद, इरफान मोहम्मद। बागबहरा बदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू, तारा, कौशल। दिल्ली शहर से आसमा परवीन, आमना और वली भाई। सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश, कंचन, माही। बरकाना से हैं अफजालता, शाहिन, सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजल मलिक। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोटके, नंदा हनुमान बोटके। पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा, विनय शंकर। बलारी से हैं प्रकाश वर्मा, निखिल, यशस्वी, अन्नपूर्णा। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन अपार। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से हैं अनंता भगत, अरुणा सुलोचना और चेतन भगत। फिल्म सिटी मुंबई से अदीबा नाश, फातिमा नासरीन अंसारी, आलिया और सबा। टोरवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका और वाणी। लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। लचनपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति। पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, विश्वकर्मा, आशीष। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म इंतकाम का ये गीत।

इसके बाद आइए सुनते हैं ईमेल करेंगे सुनी कार्यक्रम में अगला गीत। पसंद है आप सभी श्रोताओं की। तखतपुर से हैं मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल, मानस और गंगा देवी। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से हैं नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला। मलाट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, सौरभ, शायना, मंडिया। मुरादाबाद ग्राम दुल्हरपुर उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। गुमला झारखंड से नजमुल होदा, एस एम जावेद, शगुप्ता अंजुम। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव, भानुप्रिया, माधुरी किरण। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत, मंजू और मयंक। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद, कालिंद्री। कालेगांव जाफराबाद से हैं सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सर्वत देशमुख, सानवी। करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा।

और इशप्रीत शर्मा, कांकेर जिला भानबेड़ा मुगवाल से भरत राम पडौटी, जयंती हेमंत उमंग मोक्ष, तिलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा सुजाता, जनकपुरी सहारनपुर से हैं जोन डिकेस्ट्रो रोजी पर्ल विलिस, पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत और मनु, बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश, टुक टुक प्रिंस, एकांश, सुमित और ध्वनि, निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत, करमजीत, दिल्ली से अजीम बकार, माहिर अजीम, नगमा अजीम, गंडई टिकरी पारा से हैं जागेश्वर दिवांगन, कचरी भाई दीपक, जयश्री, ऋषभ, रिचा, कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ, गांधी बाग अकोला से हैं रमेश कठनकर, वैशाली, धनंजय, दिल्ली से सोनम सना अदीबा, मलोट से रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू, गुड्डू, दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल, जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत और मक्कर, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर मनहर उदास और साधना सरगम की आवाज़ों में घुंघरू फिल्म का गीत। अनजान के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: इस गीत के साथ ही ईमेल करें गीत सुनने कार्यक्रम बस यहीं तक। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र 6:45 होने को है। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: प्रादेशिक समाचार।
2: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
3: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
2: कहाँ
3: एडमिशन कराने?
4: आता हुआ एक्टिव।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
10: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
9: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
10: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
9: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
10: क्यों?
9: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
11: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
12: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
13: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
12: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
13: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
12: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
13: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
11: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
14: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
13: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
14: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
13: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
14: आकाशवाणी से।
11: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए।

0: घर घर आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज रायपुर में निकाली गई प्रदेश स्तरीय यात्रा, मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधि हुए शामिल। राज्य के किसी नगरीय निकाय में अब निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि अपने परिजन या रिश्तेदार को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं कर पाएगी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर आज प्रदेश में बच्चों को खिलाई गई एल्बेंडाजोल की दवा। और मौसम विभाग के अनुसार कल से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज रायपुर में प्रदेश स्तरीय तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम से सुभाष स्टेडियम तक निकली इस यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशभर में हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपने घरों में तिरंगा फहराने का आह्वान करते हुए कहा कि यह दिन हमारे वीर शहीदों को याद और नमन करने का दिन है।
2: हम सब लोग अपने घर घर में तिरंगा ध्वज लहराते हैं और आज का इस समय हमारे उन अमर शहीदों को याद करने का भी है, नमन करने का भी है जिन्होंने कुर्बानी दी। हमारे छत्तीसगढ़ में भी शहीद वीर नारायण सिंह गुंडाधुर जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए जिन्होंने शहीदी दी, तो ऐसे महापुरुषों को भी आज का ये दिन नमन करने का दिन है, याद करने का दिन है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष बस्तर के गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों में भी स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा और तिरंगा झंडा गौरव के साथ लहराएगा। वहीं कांकेर में कल 11 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह तिरंगा यात्रा सुबह 8 बजे शासकीय नरहर देव उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से शुरू होकर न्यू बस स्टैंड स्थित मिनी स्टेडियम में समाप्त होगी। राज्य के किसी भी नगरीय निकाय में अब निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि के पति, पुत्र, पुत्री, भाई बहन अथवा किसी अन्य निकट पारिवारिक सदस्य या नातेदार को उनके परोक्ष प्रतिनिधि या समन्वयक व्यक्ति के रूप में नाम निर्दिष्ट या नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 और 1961 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2022 के अधिनियम में संशोधन कर दिया है। इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी गई है। राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही यह प्रतिबंध सभी नगरीय निकायों में लागू हो गया है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विभाग से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के दिन ही संबंधित कर्मचारी को पेंशन, ग्रेजुएटी, अवकाश, नगदीकरण और अन्य सभी भुगतान कराए जाएं। मुख्य सचिव विकासशील ने आज मंत्रालय में बच्चों के साथ स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों को लेकर यूनिसेफ और विभिन्न विभागों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। बैठक में बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता सेवाओं को और प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई। साथ ही कुपोषण, एनीमिया, मातृ और शिशु स्वास्थ्य जैसे मुद्दों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने बच्चों के लिए जरूरी पोषक तत्वों, विटामिन और आयरन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में संभावित बाढ़ आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए आगामी 20 अगस्त को मॉकड्रिल आयोजित की जाएगी। इसके अलावा 18 अगस्त को राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उच्च स्तरीय कॉन्फ्रेंस में यह निर्णय लिया गया। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के अधिकारियों को टेबल टॉप एक्सरसाइज और आपदा प्रबंधन की मानक संचालन प्रक्रियाओं को समझने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में 1 से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चों और किशोर किशोरियों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई गई। इसके लिए शासकीय और निजी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा अन्य संस्थानों के माध्यम से दवा खिलाने की व्यवस्था की गई थी। कोई बच्चा आज किसी कारणवश दवा नहीं ले पाया है तो उसे मॉपअप दिवस यानी 17 अगस्त को कृमिनाशक दवा खिलाई जाएगी। इस अभियान के तहत प्रदेश में

0: 1 करोड़ 10 लाख बच्चों और किशोरों को एल्बेंडाजोल की खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ में 80वें स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 15 अगस्त को राजधानी रायपुर के पुलिस मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। बिलासपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, दुर्ग में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और बस्तर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ध्वजारोहण करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव में ध्वजारोहण करेंगे। प्रदेश के अन्य जिला मुख्यालयों में मंत्री, सांसद और विधायक स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। सभी मुख्य अतिथि इस अवसर पर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। नई दिल्ली के इंडिया हेरिटेज सेंटर में आज पद्म विभूषण और छत्तीसगढ़ की जानी मानी पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजन बाई की स्मृति में IHC लोक संगीत सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर पंडवानी कलाकार प्रभा यादव ने महाभारत की कथाओं पर आधारित पंडवानी की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में पंडवानी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहुंचाने में तीजन बाई के योगदान को याद किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के सलाहकार आर कृष्ण दास, धरसीवां विधायक अनुज शर्मा, इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर के जी सुरेश मौजूद थे। गौरतलब है कि IHC लोक संगीत सम्मेलन देश के विभिन्न हिस्सों के लोक संगीत और प्रदर्शन परंपराओं को एक मंच पर लाने वाला वार्षिक आयोजन है। सुकमा जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने देश की सीमाओं पर तैनात जवानों के लिए 2000 से अधिक राखियां भेजी हैं। महिला और बाल विकास विभाग के रक्षा सूत्र अभियान के तहत इन राखियों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपने हाथों से तैयार किया। तकनीकी शिक्षा विभाग ने वर्तमान सत्र के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 11 अगस्त शाम 6 बजे तक के लिए बढ़ा दी है। यह सुविधा डिप्लोमा इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर, CDDM, CIDMOM, HMCT और डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री सहित सभी 4 पाठ्यक्रमों के लिए लागू होगी। ITI के परिणाम घोषित होने के बाद उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करने के लिए यह अवधि बढ़ाई गई है। राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में 25वीं छत्तीसगढ़ स्टेट जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया। यह प्रतियोगिता 13 अगस्त तक चलेगी। इसमें अंडर 19 बालक और बालिका वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, जशपुर, कोरिया, कोरबा, सरगुजा, बस्तर और बीजापुर सहित 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के बाकी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि कल से प्रदेश भर में वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है।
1: आज से लेके आगामी 6 दिन तक भी हमने येलो अलर्ट जारी किया है। आज उत्तर छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर मध्य से लेके भारी वर्षा के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और कल वर्षा का गतिविधि में थोड़ा कम आने की संभावना है। परसों से उत्तर छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है।
0: और अब कुछ समाचार संक्षेप में। जांजगीर चांपा जिले के मुड़पार गांव में एक ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित होकर दुकान और घर में घुस गया। इस हादसे में 5 ग्रामीण घायल हो गए हैं। घायलों में 2 को गंभीर स्थिति में बिलासपुर रेफर किया गया है। और जशपुर जिले के बागीचा वन परिक्षेत्र के घुघरी कदम टोली गांव में हाथी के हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज रायपुर में निकाली गई प्रदेश स्तरीय यात्रा, मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधि हुए शामिल। राज्य के किसी नगरीय निकाय में अब निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि अपने परिजन या रिश्तेदार को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं कर पाएंगी। राष्ट्रीय कृमि दिवस पर आज प्रदेश में बच्चों को खिलाई गई एल्बेंडाजोल की दवा। और मौसम विभाग के अनुसार कल से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा,
2: याद है।

0: बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
1: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
2: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ?
2: एडमिशन कराने हैं, खाता हुआ एक्टिव।
0: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूँ। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में

0: के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूँ। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुने, ईमेल करें गीत सुने। कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत। हमने लिया है फिल्म देश परदेश से। आवाजें हैं किशोर कुमार की, अमित खन्ना की, और संगीत है राजेश रोशन का। पसंद है आप सभी श्रोताओं की। महाराष्ट्र से हैं रूपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश। यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी, प्रियांशी। भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र, दुष्यंत, राघवेंद्र। यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना थाई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता। मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताडे, वसंतराव भोजने, निवृत्ति आडोकार। नेपानगर मध्य प्रदेश से हैं सुदर्शन शाह पल्लवी, प्रखर कुशल नीति, सुरभि अश्विन और मंगलाबेन, राजेंद्र शाह। धरदेई सरगांव से चंद्रलाल पटवा, सुनीता, हर्ष, विनीत, कृष्टि। बड़ीखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। सनावा से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब। दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल वर्मा। कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित और हैप्पी। पैठण से हैं सुरेश यादव, अनीता, आरती, पूजा, प्रसाद, सोनल, सिया। मेहनगर रमणखेर महाराष्ट्र से हैं अभिजीत गवाणकर, सरिता, पूरा परिवार। अड़ान नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म देश परदेश का ये गीत।

लीजिए अब सुनिए, ईमेल करें गे सुने कार्यक्रम में अगला गीत लता मंगेशकर मुकेश के आवाजों में। फिल्म का नाम है सन्यासी, रचना है विश्वेश्वर शर्मा की, संगीत है शंकर जयकिशन का और पसंद है आप सभी श्रोताओं की। विपर्या से हैं कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम, पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से हैं सत्येंद्र कुमार जौसलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक, लसोडिया पाता जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल, पूजा परिहार, नागर कोहरा जिला राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, आराध्या, लक्षणपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार, छोटी बलिया करजहत मुंबई से अब्दुल कलाम रायन, अब्दुल सलाम रायन, बठेना पाटन से हैं परमेश्वर साहू, राजपति, काजल, पूर्वी, हेजल, राजेश, रेशमा, यवतमाल से पंजाब राम टेकी, यशोधरा और श्राव्या। चलिए सुनते हैं फिल्म सन्यासी का गीत आप सभी की पसंद पर।

आइए अब सुनते हैं अगला गीत आप सभी की फरमाइश पर। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डुदी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र सिंह डुदी। रायगढ़ से हैं नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र जोई, यामिनी उमा। हांसी से राजू मिगलानी, बब्बू डब्बू, बबीता, सुभाष योगी। समरपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी। मडी डब्बाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित और तानिया। धुराबांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव नवीन, युवराज साहू। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी। खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा और परिवार के सभी सदस्य। लगान पंडरिया से हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी, साहिल भारती।

जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम राकेश कुमार, बुलढाणा वर्षिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर और श्लोक कुमार, दीपाली शोभा, राजकोट से राजेश कृष्णा, स्वाति ख्याति, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल पप्पू, सोनी पप्पी और सोनू, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अलाबख्श, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, और ये हैं पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, पंकज सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य मोहिनी, ऋतिक बलवीर, इंदौर मध्य प्रदेश से हैं नारायण खर्चे, ललिता गणेश, कार्तिक परी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, कुमारी देवी, मालती, भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, सियाराम चौवा, राम वर्मा, सूरज भारेकर, नारायण यदु, भुवन कामरी, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, डिकेश, वासु, डाली, पूर्वेश, नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नावकर, निर्मला, विशाल नाहकर, गांव हीरावाली फजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला, इंदु, पार्वती और हिमांशु, रायपुर से नीरू मेघ, वंदना कुमार, बिट्टू कुमार, पोफाली जिला यवतमाल से हैं जय राम संगणकर, दीक्षांत और अर्पिता, राजकोट से प्राची और परिवार के सभी सदस्य। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म धन दौलत का गीत। आवाजें हैं आशा भोसले, किशोर कुमार की। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: इस संदेश के बाद ईमेल करेंगे, सुने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म वापस का ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी श्रोता। कतियापारा जूना बिलासपुर से हैं सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रियांश, कान्हा, आदित्य। बुड़गहन से रामदुलारी, प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह। जालंधर से हैं संदीप मक्कर, ज्योति, मन्नत, भरत और कमल।

साहनी, गंडई पंडरिया से हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू रविंद्र, रौनक सेन। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु और सोनाली। बरेली कैंट चनहटी उत्तर प्रदेश से विनेश कुमार, रागनी और मुस्कान। सरगाह से राजेश वर्मा, हेरोमन वर्मा, पल्लवी राजेश्वरी। ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण, लव्या, आरव, एस के पप्पी। भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू, पद्मिनी रावत, नीरज, शुभम और सौरभ। बिलासपुर से हैं शनुलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता, रजन साहू, हेमंत, नामदेव, धर्मदास, वाधवानी। बुढ़सरा नीला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु। भिलाई से हैं नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुन, जीशान, शाहनवाज अहमद। खोंदला उदयपुर सरगुजा से है जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी करिश्मा, सोमार सायक, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हिरामणि, ऐश्वर्या। मोताला महाराष्ट्र से हैं विजय सुरलकर, रतनमाला, ओम कुमार। छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई, दुखनी, सदफ, जोही, इमरान, आमना, आसमा, परी, राबिया, आशु और परिवार के सभी सदस्य। दिल्ली से प्रमिला, हेमा, अंतरा। डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, सोनम वली, आसमा वली। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म वापस का ये गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की।

फिल्म में वापस के इस गीत के साथ ही ईमेल करें गीत सुनी कार्यक्रम से अब रत्ना को दीजिए अनुमति। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, आइए अब चलते हैं कार्यक्रम ग्राम सभा में।

सबो संगवारी मल्ला बैसाखू के जय जोहार संगी हो। पानी तो सब कोती बढ़िया है आओ अभी कोटा डहर गुठियाने जी संगवारी मन्नंग तो बताइन हिन के पानी उनी इतनी नहीं गिरा है। फिर कहबो बिलासपुर डहर तो अबड़े पानी गिरा थे है ना, कतको जगह हम गिरते कम गिरते कतको जगह में ज्यादा गिरते। फिर पानी गिरा थे एमा अपन खेती किसानी डहर ध्यान रखना है, अपन तबियत डहर घलो ध्यान रखना रही थे। अब किसान है संगवारी मन तो आने दिन भर अपन फसल के निगरानी में बने रही थे है ना, अभी थरहा रोपा लगाए के बूता घलो भर दराय हवा। 15 अगस्त तक सबके आने सिरा जाही और बने बूता कर डरही। कहो बेरा रही थे हम रोपा लगा डारा था थरहा दे डारा था ना, तो खेत में घलो आने जिन फसल है वो में बीमारी हमारी कम आते। तो संगी हो खेत में ज्यादा पानी भर के हमला नहीं रखना है, बात के ध्यान रखना है। वह ज्यादा पानी रखिया तो ऐसा में कीड़ा है बीमारी के ज्यादा प्रकोप दिखे। धान में कई प्रकार के कीट लगते जानत हुआ, तना छेदक है ना, पत्ती लपेटक कीट है, गंधी बग है, हिस्पा है। तना छेदक के प्रकोप ले पौधा के बीज के पाना हर सुखा के पियर हो जाते। जिला किसान मन डेड हार्ट घलो कही थी और बाद के यही अवस्था में बाली हर सुखा जाते और सादा सादा दिखे लगते। कई प्रकार के लक्षण होते, पत्ती लपेटा कीट असने पत्ती ला लपेट के ओकर हरियर हरियर हिस्सा ला खोरच खोरच के खाते। जैसे ने पत्ती में सफेद धारी दिखाऊ पड़ते है ना, यही तरह देखी गंधी बग घलो होते। गंधी बग मतलब महके लगते किरुआ नकीस तहा, आप मन जाना था गांव घर में घलो रही थे कुफड़ा के पान में पहली रहा है ना। तो एकर प्रकोप ले धान के पाना हर और धान के दाना हर नुकसान हो जाते। धान में रोग के बात करी तो ब्लास्ट होते है ना, एक से बैक्टीरियल लीफ व्हाइट प्रमुख रोग हवा। ब्लास्ट रोग में पत्ती और आंखी के आकार जैसा जिन धब्बा है बनते। शीत ब्लाइट में पौधा के तना के जिन पास पाना रहते है ना, एम धब्बा दिखाऊ पड़ते। और बरसात ज्यादा हो मा ज्यादा नमी हो मा और खेत में जरूरत ले ज्यादा कोहो आने जैसे घन हम धान बोते हैं है ना, तो रोग हर ज्यादा तेजी ले फैलते। तो किसान संगवारी मल्ला बता दी कि खेत के नियमित रूप ले हम निगरानी करना चाहिए, देखता करना चाहिए। फसल में कीट रोग के शुरुआती लक्षण दिखते तो अपन मन के ऐसे नहीं है कि जा तो फलनवा की दवाई दुकान है वहाँ बिसा के ले लई वो दवाई ला धर के ले लई, ऐसे कह के नहीं, कृषि विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। हसन कृषि विभाग के अधिकारी हिंकर सलाह लेवा, दवा के चुनाव करना है, कतिक मात्रा लेना है, छिड़काव के जिन सही तरीका की जानकारी लेना है, तो इनके सलाह हर असली सलाह रथे

काबर के पैसा के बचत घलो होही और दवाई के अधाधुन जे रासायनिक दवाई के उपयोग करत हैं एकरो ले हम बच सकत हैं। तो संगी हो जानकारी कई प्रकार के है आना असन है आघू की जानकारी मन ले के आबो खरीफ फसल के प्रमुख रोग और एकर नियंत्रण के बारे में। एकर पहली आप मल्ला भारत भूया और छत्तीसगढ़ भूया के महिमा वाला गीत सुन लेथन नरेंद्र यादव और पिंकी मरावी के स्वर में।

0: मजबूरी, बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
1: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
0: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
1: आपकी रक्षा में पूरी।
2: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
3: फर्जी ऑफर से सावधान,
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मजबूरी।
1: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
0: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
1: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
0: आपकी रक्षा में पूरी।
2: संगी हो आप मन सुनत हवा आकाशवाणी बिलासपुर ले ग्राम सभा कार्यक्रम आओ ये कही बो मोबाइल हवा है तो आप मन AIR बिलासपुर ले घलो सीधा सुन सकत हो गूगल ले असन न्यूज ऑन AIR NEWSONAIR आपन प्ले स्टोर ले डाउनलोड कर घलो सुन सकत हो। आओ आगु के कार्यक्रम में चला था फिर भेंट वार्ता आप मन ला सुनावा था कि अभी जैसे हम आनी बानी के खरीफ फसल लगा थन तेमा का का रोग होते और एकर नियंत्रण कैसे करे जाए तो पहुना मल्ला बलावा थन फिर गोड बातला करा थन। संगी हो आज हमर बीच में हमें डॉक्टर विनोद निर्मलकर आप हो सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र बिलासपुर में। और आज के जैसे विषय है कि खरीफ फसल में का का प्रमुख रोग होते और एकर प्रबंधन कैसे करे जाए। डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जय जोहार
3: भैया।
2: जैसे कि चर्चा करी के अभी के बेरा में जिन खरीफ फसल है का फसल रहते कर बारे में बताया किसान संगवारी में।
3: अभी तो भाई जैसे सबसे पहले तो हमारे छत्तीसगढ़ में धान की फसल ही होते पहली ये प्रमुख फसल है। इखरा अलावा किसान भाई मन हम अरहर लगाते सोयाबीन लगाते मूंगफली लगाते।
2: अच्छा।
3: इखरा अलावा कई प्रकार के साग सब्जी भी लगाते।

0: से टमाटर बैगन है, तरोई है,
1: धान प्रमुख फसल है छत्तीसगढ़ के, धान के कटोरा घलो कह जाते, तेमा का रोग व्याधि होते ला बताता।
0: किसान भाई मन झुलसा की थे हम उन्होंने ब्लास्ट रोग की थन तेना प्रमुख है, बहुत ज्यादा मात्रा में आते हर साल आते। एकर अलावा सीथ ब्लाइट बीमारी जिला किसान भाई मन तना के सड़न बीमारी की थे, यह प्रमुख है। एकर बाद हम देखते हैं कि भूरा धब्बा बीमारी आते, ब्राउन स्पॉट जिला किसान भाई मन जानते, यह धान में प्रमुख बीमारी। एकर बाद फिर और बीमारी लगते, गलन के जो बीमारी है, कई एक जो बीमारी है जेना थरहा लगाए के बाद एक आध हफ्ता में ही गले लगते।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो ये बीमारी ला बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की थन हमन, एकर से नुकसान बहुत होते, पूरा पौधा ही गल जाते। लाई फूटे वाला जिन बीमारी है, फाल सिस्मट बीमारी है, फिर हमन देखथन कि भाई आपके जो सोयाबीन लगाए है तो सोयाबीन में कई प्रकार के हमारे बीमारी आते, वहाँ विल्ट आ जाते, कॉलर राट बीमारी जिला हमन की थन वो आ जाते, मोजेक बीमारी है, यह प्रमुख है कुल मिला के। इसने साग सब्जी मन देखथन कि भाई चुर्रा मुर्रा जिन बीमारी है, लीफ कर्ल है, तेनाथे एक हम अगेती पछेती झुलसा की थन, तो ये समय कम से कम जो हमारे अगेती झुलसा बीमारी है तेन ज्यादा आते, तो ये प्रमुख है जिला किसान भाई मतलब ध्यान रखना चाहिए।
1: जैसे कि आपन कहे हा झुलसा धान के प्रमुख रोग है, और चिन्हारी करे के बाद एक नियंत्रण जिन है का कैमा दवाई पानी लगते ला बतावा ना।
0: तो नामे से स्पष्ट होते कि झूलस जैसे पत्ती है, एक झुलसा नाम है। एकर पत्ती में हम देखा तो बीच में आपला बिल्कुल नाव के आकार जिसे होते या आंख के आकार है, ऐसा धब्बा बनते, और आंख के बीच में भी हमारे कलर अलग रही थे रंग है, ऐसा है बीच के भाग भी में वह पुआल असन कलर रही, और बाहर बाहर जिन घेरा है तेना थोड़ा लाल कलर के रही थे, और जिसे नाव है दोनों किनारे में या आंख है हमारे दोनों किनारे में नुकीला है, और बीच के भाग थोड़ा चौड़ा है, ऐसा है ये धब्बा हमने दिखाई रहे थे। अनुकूल वातावरण होते जैसे कि अभी के मौसम अनुकूल है, ठंडा है, तापमान है ठंडा मिला थे, नमी मिला थे, तो बीमारी अचानक बढ़ते, सब धब्बा आपस में मिल जाते और पत्ती पे झुलसे असन लगते।
1: अच्छा।
0: जले असन, एकल ये बीमारी के नाम भी झुलसा बीमारी है, तो पूरा पत्ती के हरापन खत्म हो गए, पैरा असन हो गए, तो फिर किसान भाई मान लेकर उपज में बहुत नुकसान होते, बीमारी बहुत तेजी से भी फैलते, तो किसान भाई मान लो खेत में और खासतौर से रोपाई के 20-25 दिन बाद दिखे लगते, कई बार तो हमारे जिन थरहा लगाए खेत हैं तीहें दिखे लगते, तो एक बढ़िया पहचान कर ले। और ये जिन बीमारी है तेहन धान में आए के पहली हमारे जिन मेड़ में खतपतवार लगे है, कांदी उंदी है, तेनों में दिखाई देते, तो ये समय रहते हुए बढ़िया हमन पहचान करी, और एकर लिए या तो हमन शुरू लगा थन तब तो भाई कोई भी रोग प्रतिरोधक किस्म है जैसे राजेश्वरी है, इंदिरा बनानी धान है, या फिर अगर अभी के समय है किसान भाई सब लगा चुके हैं तब के लिए फिर कई रासायनिक दवा है या जैविक दवा है जैसे ट्राइकोडर्मा और सीडोमोनास दवा है, एकर 10 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के 1 एकड़ में कम से कम 2 लीटर एकर मात्रा लगते, छिड़काव करी एक स्प्रेयर में कम से कम 150 ml मात्रा 15 लीटर पानी में घोल बना के अपन कर रहा था, तो छिड़काव पर जैविक दवाई है तो छिड़काव जो है 15-20 दिन के अंतराल में जैसे रोग राई है ओकर हिसाब से छिड़काव करना है, एक बार में ठीक नहीं होते दोबारा करना है, ठीक एकरों से नहीं होते तो फिर रासायनिक दवा है, तो टेबुकोनाजोल दवा है एकर मात्रा हमें 1.5 ml प्रति लीटर में घोल बना के डालना है, या ट्राईसाइक्लोजोल जो दवा है बीम बान ब्लास्टोगान के नाम से, एकर दवा जो है 120 ग्राम दवा लगते एक एकड़ में, घोल बना किसान भाई छिड़काव कर ही तो अच्छा नियंत्रित हो जाते।
1: तना सड़न के का लक्षण होते, कैसे किसान संगवारी मन पहचाना है और एक उपचार बता देगा।
0: देखा तना सड़न जिन बीमारी है जिला हम सीथ ब्लाइट की थन, अंग किसान भाई मन तना अंगमारी के भी नाम से जानते, ये बीमारी में जैसे ही रोपाई के 20 दिन बाद हम देखन कि जहाँ पे धान के जड़ और ऊपर वाला भाग जहाँ है तना के ऊपर वहाँ काला चकता पड़े लगता है।
1: अच्छा,
0: ये चकता आपला जहाँ पानी भरे जतका ऊंचाई तक ओखर ऊपर दिखी ही, तो छोटे छोटे शुरू में यह चकता के रूप में दिखते, गाढ़ा बैगनी कलर के रही थे लेकिन यह काला काला कलर दिखाई देते, बाद में ये धब्बा ऊपर की तरफ बढ़े लगते अगर हम नियंत्रण नहीं कर तो, और फिर वह एक लीजन के तौर पर बड़े चकता के रूप में दिखाई देते, एकरो बाहर के जो कलर है वह बैगनी कलर बाहर बाहर दिखी, बीच के बाहर वाल कलर के दिखते। नियंत्रण नहीं कर तो पत्ती से पूरा यह ऊपर पहुंच।

0: अच्छा तो ये नुकसान बहुत करते। यही बीमारी के कारण हमारे बदरा जे नहीं इतना ज्यादा पड़ते। अच्छा, अच्छा, हाँ। दाना ठीक से पड़ा है नहीं, कभोट ठीक से पड़ा है नहीं।
1: तो कहाँ कहाँ डालना चाहिए बताते?
0: एकर लिए हमारे सो कई प्रकार के दवा है, जैसे टेबुकोनाजोल है या एजोस्ट्रोबिन एक दवा थे। एजोस्ट्रोबिन दवा एमिस्टार टॉप के नाम से बाजार उपलब्ध है, या कई अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से बनाते। तो एजोस्ट्रोबिन 23% SC दवा है। एकर 1 ml दवा 1 लीटर पानी में, या अगर हम टेबुकोनाजोल है जैसे फ्यूजी 1 के नाम से आते और कई कंपनी के मिलते, एकर हम 1.5 ml दवा प्रति लीटर में घोल बना के अगर छिड़काव करब नियंत्रित हो जाते।
1: डॉक्टर विनोद निर्मलकर जी, आप हमर बीच में बैठे हैं। संगवारी में ले बताया कि अभी खरीफ सीजन में जिन सब्जी लगत है, का सब्जी लगत है, का समस्या में आ जाते, और ये रोग के नियंत्रण तो कैसे का नियंत्रण करना चाहिए?
0: सब्जी में भैया सबसे ज्यादा तो अभी लगते कि भाई वायरस वाला बीमारी जो है तेने सबसे ज्यादा लगते। एमा मोजेक बीमारी है, चुर्रा मुर्रा है, यही सबसे ज्यादा है। टमाटर में हमला अगेती जो झुलसा जो बीमारी जो हम अर्ली ब्लाइट की थी तेने ज्यादा दिखाई पड़ते। और उपज कम हो जाते, फल के फल गिरे लग पूरा हो के पहले चुर्रा मुर्रा में पूरा वो कुकड़ी आ जाते है ना, विकल हो जाते, पत्ती मुड़ जाती ऊपर नीचे तरफ। और मुझे एक बीमारी में और किसान भाई मन देखन दे आधा भाग हरा दिखते आधा पीला दिखते, ये प्रमुख पहचान है। अर्ली झुलसा में जिन बताते थे माँ आपके जो टारगेट बोर्ड रही थे जिसमें तीरंदाजी करते, जिसे ऐसे प्रकार के बोर्ड बनते टारगेट बोर्ड जिला हम के थन कॉन्सेंट्रिक रिंग जैसे जिसमें तीरंदाज मन निशान लगाते ऐसे रिंग बनते।
1: अच्छा अच्छा,
0: पहले पहचान कर ली बहुत आसानी से पहचान सकत हन, गहरा भूरा कलर के लाल कलर के धब्बा रही तो इला पहचान कर ली। पहचाने के बाद जैसे भाई अभी विषाणु जी ने बीमारी है वायरस वाला, एकर लिए तो अपना जेनुखर मक्खी है जो इंसेक्ट है कीट है तेला नियंत्रण करे जाते ताकि कर फैलाव रुक जाए।
1: अच्छा,
0: तो एकर के लिए कोई भी अंतरप्रवाही जो दवाई है जैसे इमिडाक्लोरपीड है 17.8 SL है, या थायोमेथेक्साम दवा है 25% WG, तो 5 ग्राम दवा 1 स्प्रेयर में ऐसे घोल बना के हम शाम के समय छिड़काव कर तो जो कीट है तेना रुक जाए।
1: अच्छा अच्छा,
0: खत्म हो जाए तक जो फैलाव है तेना रुक जाए। शुरुआत में बहुत इक्का दुक्का अगर खेत में दिखत है, जैसे भिंडी भी किसान भाई मन लगाते हैं, भिंडी में अगर दिखाते पीत सीरा मोजे तो कर सीरा सीरा हा पीला पड़ जाता।
1: अच्छा अच्छा, हाँ।
0: ओखर बाद में फिर पूरा पत्ती है पीला होते। तो समय रहते अगर पहचान के अगर हम इक्का दुक्का दिखत है ओला अगर हम नियंत्रित करा थन और ज्यादा बढ़ गए है तो कल फिर हमन कीटनाशक तो जवाई है ओला फिर हम छिड़काव करे से कीड़ा खत्म हो जाए तो फैलाव कम हो जाए।
1: अच्छा अच्छा,
0: जो अगेती झुलसा बीमारी है तो एक लिए तो भाई हम शुरुआत में ही अच्छा खेतला साफ सफाई करके लगाई, बीज उपचारित करके लगाई, टमाटर लगा थन तो हम ओकर जड़ लग उपचारित करके लगाई कि ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास से कर सकत हन 10 ग्राम प्रति किलो बीज, या कोई रासायनिक दवा है जैसे कार्बेंडाजिम दवा है एक हवन 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके लगाए से कुछ रोग जिन बीज फैलने वाले है तेन रुक जाते, या फिर नहीं है जब खड़ी फसल में दिखा थे तो फिर रासायनिक दवा जो है तो उपयोग कर सकते हैं। आजकल एक हेक्साकोनाजोल और जिनेब करके दवा थे मिक्स रूप में, एक उपयोग हम कर सकते हैं 3 ग्राम प्रति लीटर के दर से, दोनों दवा मिक्स रूप में मिलते तो ठीक हो जाते। कोई बहुत भारी समस्या वाला बीमारी नो है, समय में अगर पूरा बीमारी फैले नहीं है और सही समय में हम नियंत्रण कर दी शुरुआत में ही तो बहुत आसानी से नियंत्रित हो जाती है। ज्यादा बीमारी है तो फिर 15 दिन तक रुकना चाहिए, 15 दिन रुके के बाद फिर छिड़काव करना चाहिए तो यह बहुत आसानी से नियंत्रित हो जाए।
1: बढ़िया बात बताया है आप हमारे बीच में आके कि खरीफ फसल के प्रमुख जैन रोग का है कर प्रबंधन समय रहते कैसे करे जाए जेकर से उत्पादन घलव हर कम झन हो। आप और डॉक्टर विनोद निर्मलकर सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र बिलासपुर में आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।
0: जय जोहार भैया।
1: तो संगी हो आपो मन समय रहते हमन ला का करना है, खेत के निरीक्षण करना है, कोनो प्रकार के खरीफ फसल में रोग व्याधि थोड़ी आवत है देखत रहना है, है ना। और बढ़िया आप मन ला गोठ बात सुनाए हन और गोठ बात के बाद फिर गीत संगीत ढर चलत हन और सुनत हन दुखी राम मरकाम और अनिता भानु के स्वर।

संगी हो ए गीत ला गाइन दुखीरा मरकाम औ अनिता भानुमन औ आज के बिलासपुर के तापमान बता देथन। अधिकतम तापमान रही से 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रही से 25 डिग्री सेल्सियस। औ संगी हो खेती किसानी में कई बात के हमला चेत करना है, जैसे कि बताया है कि धान फसल की निगरानी करना बहुत ही जरूरी है। जल निकासी की उचित व्यवस्था करी, तना छेदक पत्ती लपेटक और कई प्रकार के चूसक कीट होते तो निगरानी करी और कोनो प्रकार के आप मल्ला कीट बीमारी दिखते कृषि विस्तार अधिकारी है आना और कृषि वैज्ञानिक है, कृषि विज्ञान केंद्र है, इनका सलाह लेना चाहिए। एक संग सिरात है आज के ग्राम सभा बैसाखू के। राम राम, जय जोहार।

अभी आप सुन रहे थे ग्राम सभा कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय आपके 8 बजने वाले हैं। कृपया हमारे

की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को

की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा स्पष्ट बनाना है। राज्यसभा ने संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर कुछ देर नारेबाजी करने के बाद विरोध व्यक्त करते हुए सदन से वॉकआउट किया। यह विधेयक औपनिवेशिक काल के पुराने अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विपक्षी सदस्यों के बीच हंगामे के बीच इस विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए रखा। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही अदालती मामलों में बैंक के पक्ष को मजबूती से रखा जा सकेगा। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि आज बैंकिंग सेवाओं का बड़े स्तर पर डिजिटलीकरण हो गया है। बैंकिंग क्षेत्र की इस जरूरत को देखते हुए मूल कानून में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि मूल कानून में कागज आधारित प्रति पर बहुत जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पहले बैंकों को उनके लेन देन के सिलसिले में कागजी रिकॉर्ड लेकर अदालत में बुलाया जाता था और इसमें डिजिटल रिकॉर्ड का उल्लेख नहीं था। अब डिजिटल रिकॉर्ड मान्य होगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने बैंक ग्राहकों के साथ बढ़ते साइबर अपराध को लेकर चिंता व्यक्त की। चर्चा में बीजेपी के मानस रंजन मंगराज, भाजपा के अरुण सिंह और शंभु शरण पटेल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के डॉ एम थम्बीदुरई और डॉ एम धनपाल, रंकापा के राजेंद्र हीरालाल जैन, तेदेपा के भाष्यम रामकृष्ण, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, द्रमुक सदस्य एल के सुधीश और शिवसेना की डॉ ज्योति नागराज वाघमारे ने हिस्सा लिया। प्रस्तावित कानून में बैंकर्स बुक्स या बैंक कार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उसके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का भी प्रावधान है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण या स्पेशल कॉज परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन में कराधान तथा अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य उस मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाना है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने से रोकता है। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के तरुण चुग, विक्रमजीत सिंह साहनी, डॉ कल्पना सैनी, रेखा शर्मा, धनंजय भीमराव महादिक, बाबूराम निषाद, द्रमुक सदस्य पी विल्सन, बीजेपी के सुभाषीष खुंटिया, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के डॉ एम थम्बीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू और तेदेपा के विजय चिंता कायला ने हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक में भारत को विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में विनिर्माण केंद्र के रूप में मजबूत करने और वैश्विक कंपनियों को उपकरण, पुर्जे तथा सामग्री लाने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य निहित है। उन्होंने कहा कि कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कलपुर्जे ऐसे हैं जिनका भारत में निर्माण नहीं होता, लेकिन देश में उनकी जरूरत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अनुबंध पर विनिर्माण करने वाली कंपनियों से जुड़ी विदेशी कंपनियों को कर छूट देने का प्रस्ताव है। यह छूट वर्तमान में 5 साल के लिए उपलब्ध है, जिसे बढ़ाकर वित्त वर्ष 2040-41 तक करने का प्रस्ताव है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पूर्व में भारतीय डेटा सेंटर का इस्तेमाल करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को कर छूट देने का वादा किया गया था, लेकिन इसके लिए उन्हें सरकार की बहुस्तरीय मंजूरी

प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। विधेयक में डेटा सेंटर के लिए अधिक स्पष्ट और सरल नियमों का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विधेयक में यूपीआई लेनदेन करने वाले पर कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यूपीआई पहले की तरह ही छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए मुफ्त होगा। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास के सांवैधानिक संकल्प को खारिज कर दिया है। विधेयक पर चर्चा और पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे इससे पहले ही सदन से वॉकआउट कर गए थे। मंत्री के जवाब के बाद कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। तत्पश्चात उच्च सदन में विशेष उल्लेख के जरिए भाजपा के अमरपाल मौर्य, डॉ अनिल सुखदेव राव बोंडे, डॉ मेधा विश्राम कुलकर्णी, सुजीत कुमार, बाबू भाई जय संघ भाई देसाई, दर्शना सिंह, डॉ धर्मशीला गुप्ता, डॉ दिनेश शर्मा, अधिकारी मायूम शारदा देवी, केसरी देव सिंह झाला, डॉ कल्पना सैनी और रेखा शर्मा ने लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। बाद में उच्च सदन की बैठक कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्यसभा की बैठक राजधानी दिल्ली में पिछले महीने नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण 3 बार बाधित हुई। सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने और सरकारी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह की सदन में उपस्थिति और जवाब की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर को मिले चंदे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर भी नारेबाजी की। सभापति ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध विषयों को उठाने की अपील की। हंगामे के बीच ही भाजपा के राहुल सिन्हा, तरुण चुग, डॉ के लक्ष्मण और बाबू भाई जयसंघ भाई देसाई ने आसन की अनुमति से सदन में लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। इस दौरान विपक्षी सांसद आगे की पंक्ति के पास एकत्र हो गए और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिए जाने की मांग करने लगे। राधाकृष्णन ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों से अपनी सीटों पर लौटने को कहा ताकि उनकी मांग पर विचार किया जा सके। अपनी बात का असर होता न देख सभापति ने करीब 11:20 पर बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब प्रश्नकाल के लिए सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो आसन की अनुमति से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और प्रवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ऊर्जा संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए खड़े हुए, लेकिन कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के उद्देश्य से पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग दोहराते हुए हंगामा जारी रखा। कुछ सदस्य तो अपने स्थान से उठकर आगे आ गए। सदन में व्यवस्था न बनते देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। 15 मिनट बाद बैठक के फिर से शुरू होने पर सदन में बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक और कराधान तथा अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को लिया गया। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के बीच ही सदन ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा के बिना पारित कर दिया। शोर शराबे के बीच ही सदन में 3 अन्य विधेयक खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए गए।
अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी पर सदन में चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद जब अपराह्न 2 बजे शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि

सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह विस्तार से जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पहले दिन से यह मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह को विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि मैं सरकार की ओर से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सरकार विद्यार्थियों के मामले को लेकर चर्चा और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष से अनुरोध है कि उन्हें गृह मंत्री के जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, उन्हें पूरा जवाब सुनना पड़ेगा। श्री रिजिजू ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी यह बात कही गई है कि सरकार विस्तार से चर्चा और जवाब देने को तैयार है। इस दौरान विपक्ष के सदस्य सदन में नारेबाजी करते रहे। इस बीच विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। श्री मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रहे सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। उनका कहना था कि यह विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र बदलने का विधेयक नहीं है। विधेयक का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने आसन के समीप आकर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों से कहा कि वे गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग कर रहे थे और अब जब संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि गृह मंत्री सदन में चर्चा का जवाब देने को तैयार है तो सदन की कार्यवाही चलनी देनी चाहिए। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा करने लगे। आसन पर उस समय आरएसपी नेता एनके प्रेमचंद्रन थे, जिन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया। वैसे सामान्य तौर पर लोकसभा में प्रश्नकाल के समय आसन पर अध्यक्ष ओम बिरला होते हैं। हंगामा जारी रहने पर भी श्री प्रेमचंद्रन ने बैठक शुरू होने पर भी के भी 2 मिनट अंदर ही दोपहर 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही फिर से आरंभ होने पर भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 और कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहले ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। हालांकि ये दोनों विधेयक केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नाम से सूचीबद्ध थे। हंगामा नहीं थमने पर भी पीठासीन सभापति संध्या राय ने दोपहर 12:14 पर सदन की बैठक अपराहन 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस प्रकार मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही लगातार 16वें दिन आज भी सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। सदन में आज पेश किए गए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है। विधेयक के तहत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सहकारिता मंत्रालय के तहत आने वाला एनसीडीसी एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के तहत की गई थी। एनसीडीसी के प्रमुख कार्यों में कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण और आयात निर्यात से जुड़े कार्यक्रमों की योजना बनाना, उन्हें बढ़ावा देना और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना शामिल है। इस नए विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के वितरण के अनुसार जून 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन और केंद्र सरकार द्वारा सहकारी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों के बाद सहकारी क्षेत्र के विकास में एनसीडीसी की भूमिका काफी बढ़ गई है। केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 भी सदन में पेश किया गया, जिसमें केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 24 फरवरी को केरल का नाम बदलकर केरलम करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया था।

0: जिसमें केंद्र से राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम करने का आग्रह था। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: संसद समीक्षा अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय रात के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा।

रजनीगंधा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रत्ना का नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं बहार शीर्षक पर कुछ मधुर फिल्मी गीत। श्रोताओं, जब धरती में हरियाली छा जाती है, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं और प्राकृतिक सुंदरता बढ़ जाती है, नदियों में कलकल करता हुआ स्वच्छ जल बह रहा हो तो चारों तरफ बहार छा जाती है।

बागों में बाहर आने से हर कली और फूल मुस्कुराने लगते हैं, जिन्हें देखकर और महसूस करके हमारा मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे कोई उत्सव हो।

पतझड़ के मौसम के जाते ही बहार का मौसम लौट आता है और अपने साथ लाता है ढेर सारी खुशियाँ और उम्मीदें।

जब कोई दिल के बहुत करीब होता है तो वह अपना लगने लगता है, जिसके रोट जाने से लगता है बाहर रोट गई हो, और जिसके मान जाने से, पास आ जाने से लगता है जैसे जिंदगी में फिर से बाहर लौट आई है और सब कुछ फिर से संवरा हुआ, निखरा हुआ लगने लगता है।

बहारों के मौसम में प्राकृतिक खूबसूरती भी देखते ही बनती है। फिजा में बहार आ जाने से मौसम बदल जाता है, फूलों की खुशबू चारों तरफ बिखर जाती है, जो हमारे मन हमारी सांसों को भी महका देती है और सुकून से भर देती है।

हम सभी के दिल को बहुत भाता है बहार का मौसम। एक बार आ गया तो लगता है कभी वापस ना जाए, क्योंकि अक्सर जो बातें हमारे मन को हमारे दिल को अच्छी लगती हैं उन्हें ही देखना हम पसंद करते हैं और उन्हीं पर ठहरता है हमारे दिल का सुकून भी।

इस गीत के साथ ही आज के रजनीगंधा कार्यक्रम से रत्ना को दीजिए अनुमति। आज हम लेकर आए थे बहार शीर्षक पर कुछ मधुर फिल्मी गीतों को। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। 8:45 होने को हैं। समाचार कुछ ही देर में हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने की देने की अपील की। कहा, गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों तथा पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे, पुरुष और महिला टीम पूल डी में शामिल। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंक कार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
2: The bill, among various other things that it wants to do.
3: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
2: Permits authentication through manual, digital and इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
1: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है।
4: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और

0: संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
1: एंड टू मेक कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट इन रिलेटेड इनएक्टमेंट्स।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही तीन तीन बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में आज चार विधेयक पेश किए गए। इनमें से अधिकरण सुधार विधेयक 2026 विपक्ष के शोर शराबे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में दो विधेयक चर्चा के लिए लिया गया, जिनमें बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक और आज के डिजिटल युग के अनुरूप बनाने के लिए बैंक कार बहिसाक्ष विधेयक 2026 पारित किया गया। इसके अलावा कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के बाद इसे लोकसभा को लौटा दिया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृहमंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
4: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
2: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृहमंत्री के वक्तव्य की मांग की।
5: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
2: भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है।
6: फिर से मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खिंगांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
7: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया, जिसके बाद बल का प्रयोग किया गया। रांची सिटी एसपी पारस राणा और एसपी ग्रामीण गौरव गोस्वामी ने छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील करते हुए कहा कि पुलिस ने संयम बरता है। प्रदर्शनकारी जेएसएससी परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: इस वर्ष 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में देश के युवा शक्ति के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया जाएगा।
7: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व

0: नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के समारोह का एक प्रमुख आकर्षण वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव होगा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। समारोह की दूसरी प्रमुख थीम युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 की यात्रा का नेतृत्व है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और harghartiranga.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। तिरंगा रैली को उपायुक्त कृष्णलाल ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से झंडी दिखाकर रवाना किया। मणिपुर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत इम्फाल में बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हजारों बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVI के अंतर्गत 10 लाख प्रशिक्षण के लक्ष्य को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे भ्रामक दावे को खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय PIB के फैक्ट चेक इकाई ने स्पष्ट किया है कि PMKVI के तहत ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
2: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
1: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉ. अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉ. राजेश सिन्हा भाग लेंगे। वस्त्र मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हैंडलूम डिजाइनर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया। इसमें डिजाइनर, बुनकर, नेते निर्माता और उद्योग से जुड़े लोग शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, UPI लेन देन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने देने की अपील की। कहा गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध

0: करप्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines.

आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात के 9:15 हुए हैं। अब हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
3: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है अजनबी।

कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में, नगमा निगार है कैफी आजमी, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, फिल्म का नाम है छोटी बहू।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
1: आप खाए थाली में, कोधे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

फिल्म संगीत के चाहने वालों में बिरला ही कोई होगा जिसने महल फिल्म का ये गीत ना सुना होगा। हम बात कर रहे हैं 40 के दशक के मशहूर संगीतकार खेमचंद प्रकाश की। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से कलाकार ऐसे हुए हैं जिन्हें समुचित सम्मान और प्रसिद्धि मृत्यु उपरांत मिली है। खेमचंद प्रकाश उन्हीं में से एक थे।

हेमचंद प्रकाश का जन्म 12 दिसंबर 1907 को राजस्थान के सुजानगढ़ में हुआ था। न केवल संगीत बल्कि नृत्य की भी आरंभिक शिक्षा उन्हें अपने पिता से मिली, जो राज दरबार में ध्रुपद गायक और कथक नर्तक थे। किशोरावस्था में ही खेमचंद प्रकाश को पहले बीकानेर और उसके बाद में नेपाल के राज दरबार में गायक कलाकार के रूप में नियुक्ति मिल गई थी। आगे किस्मत उन्हें कोलकाता ले आई, जहां वे सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माण कंपनी न्यू थिएटर्स में नियुक्त हुए। 1935 में बनी फिल्म देवदास के संगीतकार तिमिर बरन के सहायक के रूप में उन्होंने काम शुरू किया। 1938 की फिल्म स्ट्रीट सिंगर के लिए खेमचंद प्रकाश ने एक मजाहिया गीत भी गाया। उसके बाद खेमचंद प्रकाश मुंबई आ गए। शुरुआत हुई 1939 में। सुप्रीम पिक्चर्स के बैनर तले बनी फिल्में मेरी आंखें और गाजी सलाउद्दीन के लिए उन्होंने संगीत निर्देशन किया।

और फिर बहुत जल्द रणजीत मूवीटोन फिल्म स्टूडियो के नियमित संगीतकार के रूप में खेमचंद प्रकाश नियुक्त हुए। उस शुरुआती दौर में रणजीत मूवीटोन की फिल्में थीं दिवाली, होली, परदेसी, फरियाद इत्यादि। उन दिनों खेमचंद प्रकाश के गीतों में ज्यादातर स्वर होता था खुर्शीद का। इस जोड़ी ने 40 के दशक के आरंभ में बहुत से मशहूर गीत दिए। 1943 में बनी रणजीत स्टूडियो की फिल्म तानसेन जबरदस्त हिट हुई।

1948 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आई जिद्दी। इस फिल्म में एक गायक के रूप में किशोर कुमार को सबसे पहला अवसर दिया संगीतकार खेमचंद प्रकाश ने। जिद्दी का ही एक और गीत जो लता जी ने गाया था, संगीत प्रेमियों द्वारा खूब पसंद किया गया।

और फिर 1949 में आई फिल्म महल। महल के पहले बाजार में फिल्मी गीतों के जो रिकॉर्ड्स मिलते थे, उन ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स पर फिल्म की कहानी के उस गीत को पर्दे पर गाने वाले पात्र का नाम हुआ करता था। महल फिल्म का ये गीत आएगा आने वाला रिकॉर्ड पर इन बोलों के आगे नाम लिखा था कामिनी। ऑल इंडिया रेडियो से ये गीत प्रसारित हुआ। बहुत से सुनने वालों ने रेडियो के दफ्तर में फोन करके जानना चाहा कि ये आवाज किसकी है, और फिर रेडियो से गायिका का नाम प्रसारित हुआ लता मंगेशकर। संगीतकार खेमचंद प्रकाश। इस गीत को और लता जी को बेशुमार शोहरत हासिल हुई, मगर अफसोस महल के रिलीज होने से 2 माह पूर्व 10 अगस्त 1950 को संगीतकार खेमचंद प्रकाश 42 वर्ष की अल्पायु में इस संसार से विदा हो चुके थे।

0: आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था संगीतकार खेमचंद प्रकाश पर, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब जयंत पात्रीकर को दीजिए इजाजत।
1: आज के फनकार।

अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा का कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये बिलासपुर केंद्र रात के 10 बजने को है। संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
1: माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी,
2: क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन नंबर 226, डॉक्टर

0: मित्र के लक्ष्मण गौरव।
1: प्रश्न संख्या 226, क्या विद्युत मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क विद्युत संशोधन नियम 2026 तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के प्रारूप के अंतर्गत प्रस्तावित प्रमुख उद्देश्य तथा प्रमुख सुधार क्या हैं? ख इन सुधारों से विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता में सुधार, परिचालन दक्षता में वृद्धि तथा उपभोक्ताओं को विश्वसनीय एवं 24 घंटे बिजली आपूर्ति किस प्रकार सुनिश्चित होने की संभावना है? और ग

0: उपभोक्ताओं को विश्वसनीय एवं 2400 घंटे बिजली आपूर्ति किस प्रकार सुनिश्चित होने की संभावना है, और ग इन सुधारों को अंतिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से परामर्श करने तथा देश भर में इनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।
1: फर्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर के लक्ष्मण गारू,
2: अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ अवर बिलोड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इंडियाज पावर सेक्टर हैज अंडरगॉन हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन विद अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन एंश्योरिंग अफोर्डेबल रिलायबल एंड सस्टेन इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवरी ईयर एंड ड्यू टू मोदी जी गवर्नमेंट्स पॉलिसीज स्टेट्स लाइक तेलंगाना हैज विटनेस रैपिड ग्रोथ इन इंडस्ट्रीज डेटा सेंटर्स अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लीडिंग टू इंक्रीजिंग electricity demands which has significant potential for solar energy including decentralized and agricultural solarization. So through you I request the honorable minister to explain how the proposed reforms will encourage greater adoption of distributed renewable energy, battery energy storage and smart distribution system in states like Telangana while ensuring the financial sustainability of discoms. Thank you, sir.
0: श्री मनोहर लाल, विद्युत मंत्री।
3: सभापति महोदय, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 इसको तैयार करने में डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज और स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी की फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी मजबूत करने के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए हैं और जो प्रावधान बनाए गए हैं वो सारे देश भर के लिए लागू होंगे और तेलंगाना में भी उसी प्रकार से उनको लागू किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी तीव्रता से लाने के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी स्टोरेज के साथ सबसे पहले रूफ टॉप सोलर, उसके बाद पीयर टू पीयर एनर्जी ट्रेडिंग, इस प्रकार के प्रावधान, रिन्यूएबल एनर्जी को ओपन एक्सेस, इसमें भी सेल्फ सेल करने का प्रावधान रखा गया है। तो लोकेटेड स्टोरेज अर्थात जहां जनरेशन होगी उसके निकट ही स्टोरेज के प्रावधान, चाहे बैटरी स्टोरेज के हो अथवा पंप स्टोरेज के हो, उनको रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा गया है और इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज एग्रीगेटर को बेहतर रिन्यूएबल एनर्जी का फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी हमेशा एनवायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है और एनवायरमेंट की फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग एक बहुत इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसलिए ये पॉलिसी अपने सभी आयामों को ध्यान में रखकर के बनाई गई है और इस पॉलिसी में नए प्रकार की टेक्नोलॉजी जैसे फ्लोटिंग सोलर, एग्री फोटोवोल्टिक सॉल्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी के ट्रांसमिशन ऑप्टिमाइज डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करता है, अर्थात सोलर एनर्जी को अधिक से अधिक उपयोग हम कैसे कर सके इसका भी इसमें प्रावधान रखा गया है। वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी को मैनेज करने, ग्रिड स्टेबिलिटी, क्योंकि ग्रिड स्टेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट इसमें आता है, क्योंकि ये डे टाइम में ही, यानी सोलर एनर्जी डे टाइम में ही मिलेगा और ग्रिड की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हमको उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है, उसको सुधारने के लिए, पीक डेफिसिट को कम करने के लिए बैटरी स्टोरेज सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बैटरी स्टोरेज सिस्टम, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, इनको लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज टेक्नोलॉजी, बैटरी कंपोनेंट को भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अब से पहले बैटरी के कंपोनेंट ये सभी इंपोर्ट करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब क्योंकि हमें अपने मेक इन इंडिया के आधार पर और सभी प्रोडक्ट को हम जो डोमेस्टिक मार्केट बेस्ड प्रोत्साहन को इसको बढ़ावा दे रहे हैं। धन्यवाद। स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए ड्राफ्ट जो पॉलिसी बनाई गई है जिसको सर्कुलेट किया गया था और सभी जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स थे सबका कंसल्टेशन कर लिया गया है, ये फाइनलाइज करने के राह पर है और इसके अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिप्लॉयमेंट, इसके बारे में पूछा गया, डिस्ट्रीब्यूटर एनर्जी रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑपरेटर या डीएसओ फ्रेमवर्क ये भी बनाया गया है, डिमांड साइड मैनेजमेंट, क्योंकि डिमांड साइड मैनेजमेंट और सप्लाई साइड मैनेजमेंट दोनों का ध्यान रखेंगे तभी हम रेगुलर पावर की सप्लाई हम कर पाएंगे और ऐसे ही डिमांड का रिस्पॉन्स क्या है, स्मार्ट ईवी चार्जिंग, क्योंकि आगे आगे

0: हमारी जो डिमांड है, चाहे डाटा सेंटर्स हो अथवा ईवी चार्जर हो, एआई का जो इस्तेमाल हो, एनर्जी की डिमांड बढ़ने वाली है। जीआईएस बेस्ड एसेट मैपिंग और डिजिटल ट्विन, इसी प्रकार टाइम ऑफ यूज टैरिफ, यानी टाइम ऑफ यूज में जिस समय हमारे पास सोलर पावर ज्यादा है उस समय उसका यूज ज्यादा बढ़े, जब हमारे पास पावर की कमी है उस समय डिमांड इसकी शिफ्ट की जाए। टाइम ऑफ यूज टैरिफ भी इसका प्रोत्साहन देने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ताकि नई टेक्नोलॉजी का भी इसमें उपयोग किया जा सके। मान्यवर, डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी, क्योंकि आज पावर डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा अगर कोई कठिन बात है वो डिस्कॉम्स की फाइनेंशियल वायबिलिटी है। आज पावर डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा अगर कोई कठिन बात है वो डिस्कॉम्स की फाइनेंशियल वायबिलिटी एक कंसर्न है। सभी डिस्कॉम्स ये लगभग घाटे में जा रहे हैं और टोटल देश भर के डिस्कॉम्स का जो घाटा है इस समय लगभग 6,85,000 करोड़ रुपया हो गया है। इसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि लंबे समय तक डिस्कॉम्स घाटे में चलेंगे तो फिर वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। इसलिए मल्टी ईयर टैरिफ फ्रेमवर्क ये जो होता है उसके तहत टाइमली कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ ये कैसे बनाया जाए, इसमें इसका यानी हमें उपयोग करना है। पावर परचेज कॉस्ट और ऑटोमेटिक पास थ्रू, जितनी कॉस्ट आएगी उसको पास थ्रू कैसे करेंगे, ये अभी तक ऑटोमेटिक नहीं था, इसको समझौते के तहत किया जाता था, लेकिन ऑटोमेटिक टैरिफ के अंदर इसका जो है कैसे पास थ्रू हो। हमारे एपीएमसी लॉसेज एक समय था 2014 में जब 30% से भी ऊपर था, अभी देश भर का जो एपीएमसी लॉसेज है वो लगभग 15% है, काफी कम आया है, लेकिन इसको और भी हमको इसको कम करना है, वो भी इस पॉलिसी के अंदर दर्शाया गया है। कैसे लॉस रिडक्शन हो, कैसे हमारा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कोई प्लांट परफॉर्मेंस अच्छा करता है उसको कैसे इंसेंटिव दिया जाए, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार गवर्नेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट ये कैसे कम हो, क्योंकि कॉस्ट को कम करने के लिए कई तरीके होंगे जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट ये कैसे कम हो, ये पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट और सब्सिडी बर्डन इसका कम करने के लिए स्टोरेज के साथ साथ एग्रीकल्चर फीडर के सोल्यूशन को भी प्रभावित करती है। तो हमने तीन प्रकार के और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा बीमा योजना ने पीएम कुसुम की तीन योजनाएं बनाई गई है। पहली योजना उसके अंदर जिसको कंपोनेंट ए कहेंगे वो 2 मेगावाट तक ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर सिस्टम इसके ऊपर डाला जाएगा, और चाहे वो कोई भी जमीन हो, कल्टीवेटर हो अथवा बैरन हो, इसमें पावर को बना सकते हैं, पावर को ग्रिड से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी को दे नहीं सकते हैं। एक योजना उसमें कंपोनेंट बी है जिसके अंदर हम ऑफ ग्रिड इस प्रकार के कनेक्शन देते हैं, ना पावर ली जा सकती ना दी जा सकती है, केवल किसान अपने उपयोग के लिए उस सोलर पावर का उपयोग कर सकता है। और कंपोनेंट सी, इसमें एक्स्ट्रा पावर यदि बनती है तो ग्रिड में डाल करके किसान जो अपनी इनकम भी कर सकता है, अगर किसान को अपनी फसल के इनकम के साथ साथ ऊर्जा दाता बन करके और ऊर्जा की इनकम अपने साथ जोड़नी है तो किसान को एक बहुत बड़ा लाभ इसमें होने वाला है। तो मान्यवर, ऐसे ही जो हमारे डाटा सेंटर्स हैं वो लगातार इसमें बढ़ रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के नाते से स्मार्ट मीटर का प्रावधान इसमें किया गया है, और स्मार्ट मीटर में भी ऑप्शनली ये भी कहा कि पोस्ट पेड किस प्रकार से लागू किया जाए, तो पोस्ट पेड के हिसाब से भी हमने सबसे पहले गवर्नमेंट मीटर और उनको अलाउ किया है तो वो पोस्ट पेड पर आए, बाकी सबको ऐच्छिक रखा गया है, कोई आएगा तो अच्छा है। स्टेट्स इसके लिए इंसेंटिव की स्कीम बना रहे हैं। इसी प्रकार से तेलंगाना का जहां तक पूछा है, तेलंगाना पीएम कुसुम के टोटल 1797 मेगावाट में से 84 मेगावाट अभी उन्होंने कंपोनेंट ए में उपयोग किया है। तो ये तेलंगाना के नाते से इस प्रश्न का जैसे मैंने उत्तर दिया, इसको स्टेक होल्डर इनपुट पर ध्यान करके ड्यू कंसल्टेशन के बाद फाइनल पॉलिसी नोटिफाई की जाएगी।
1: नाउ द सेकंड सप्लीमेंट्री सतरम सिंह साधू जी,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पंजाब में एफिशिएंट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए 9,600 करोड़ रुपए का आपने सैंक्शन किया। पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे किसान

0: की खेती के लिए बैकबोन है चेयरपर्सन साहब, और हाईली डिपेंडेंसी हमारी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। 14 लाख ट्यूबवेल से किसान खेती के लिए पानी निकालता है, और मैं किसान का बेटा हूं, मैंने देखा कि खेतों में जो खंभे लगे हैं बिजली के वो हमारे लिए बाधा बन रहे हैं। मैं मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा, सवाल भी पूछना चाहूंगा कि खेतों में से खंभे हटाकर अंडरग्राउंड केबल डालने के लिए अभियान चल रहा है, वो कब तक पूरा हो जाएगा, और पंजाब सरकार को कितनी सहायता दी जा रही है केंद्र की ओर से, मेरा ये सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद
1: सभापति महोदय। ये विषय जो कि पंजाब के आंकड़ों से जुड़ा हुआ है, वैसे तो सारी योजनाएं जो भी बनाती है प्रदेश सरकारें बनाती हैं और अपने दायरे को रख करके ध्यान में रख करके बनाती हैं। पंजाब की जो फाइनेंशियल वायबिलिटी डिस्काउंट की, जैसा मैंने पहले कहा, ये बहुत ही अच्छी नहीं है, तो पंजाब की डिस्काउंट की फाइनेंशियल वायबिलिटी को देख करके ही उनको ऋण मिलता है। ये ठीक है कि पंजाब के मुख्यमंत्री स्वयं मुझे मिलने आए थे, उनको ऋण की आवश्यकता REC से PFC से थी, लेकिन REC PFC एक ऑटोनोमस बॉडी है, उनको उसकी वायबिलिटी अपने आप देखनी है कि कौन सा लोन हमको देना कौन सा नहीं देना है। हाँ, जहां तक पावर किंग की डिमांड है, इस डिमांड को भी समय समय पर पूरा करते हैं, जब भी ये मांगते हैं तो करते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं हमारे कहने के अनुसार भी पंजाब के डिस्कॉम्स या पंजाब की सरकार उसको आगे नहीं बढ़ती है। आगे न बढ़ने के कारण से, स्टेलमेंट के कारण से चीजें सहानुभूतिपूर्वक सोची नहीं जा सकती। उसका कारण है कि बाजार में बिजली मिलती है, अगर खरीदनी है तो बाजार से खरीदी जा सकती है, लेकिन बाजार से खरीदने के लिए पंजाब के पास पैसा नहीं है। और पंजाब ने विशेष तौर पिछले साल का जो एक हमारा क्लोज करने का ऑर्डर होता है उसमें एक एम्बिग्विटी पाई गई, उस एम्बिग्विटी के कारण से उनका केस एप्टल में चला गया। एप्टल ने अभी निर्णय देना है, जैसे ही ये एप्टल का 18 अगस्त को डेट लगी है, उस प्रकार से जैसा निर्णय आएगा इनकी फाइनेंशियल ठीक होंगे तो इनको पूरी सहायता की जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
2: श्रीमान विजय चंद्रकालिया जी, श्रीमान विजय चंद्रकालिया जी,
3: धन्यवाद चेयरमैन जी। सर, पूरी माह का ग्रीन हाइड्रोजन हब इन अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट, सर दिस इज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब इनॉग्रेटेड बाय अवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन आई एम विटनेसिंग दिस ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन आवर ओन डिस्ट्रिक्ट। सो द प्रोजेक्ट एनविसेजेस एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 1.85 लाख करोड़, इंक्लूडिंग 20 GW ऑफ रेन्यूबल एनर्जी कैपेसिटी, एंड दिस प्लांट टू प्रोड्यूस 1500 TDP ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड 7500 TDP ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। सर, माई क्वेश्चन हियर इज, आई वॉन्ट टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर इफ द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग मेजर्स टू एंश्योर टाइम बाउंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन NTPC, द सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी एंड अदर कंसर्न सेंट्रल एजेंसीज फॉर द रिक्वायर्ड ट्रांसमिशन एंड ग्रिड कनेक्टिविटी, सो दैट एडिक्वेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन प्लेस हेड ऑफ कमिशनिंग एंड डज नॉट कंस्ट्रेन द हब्स प्लांट कैपेसिटी और फ्यूचर एक्सपेंशन।
2: ऑनरेबल मिनिस्टर।
1: सभापति महोदय, वैसे तो जो उन्होंने प्रारंभ किया कौन से प्रोजेक्ट के लिए पूछ रहा है ऐसा मुझे ध्यान में नहीं आया है, लेकिन फिर भी इन जनरल जो मैंने विषय उठाया कि ट्रांसमिशन की जो कठिनाई है, जो दिक्कत है, मैं मानता हूं बहुत से एरियाज में अलग अलग कारणों से ट्रांसमिशन लाइन्स की दिक्कतें आती हैं। ट्रांसमिशन लाइन चूंकि बहुत से मल्टी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, जनता का विरोध भी होता है, किसानों का विरोध भी होता है, एनवायरमेंटल इश्यूज भी होते हैं, उन सबको सुधार करने के बाद हम ROW का जो फैक्टर विशेष तौर पर रहता है उसके लिए नई गाइडलाइंस तय की है, और नई गाइडलाइन मुझे खुशी है इस बात की कि कुल मिलाकर 17-18 स्टेट्स ने नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया है, और नई गाइडलाइन जारी करने के बाद किसानों का कंपनसेशन पर्याप्त मात्रा में मिलने लग गया उनको, और वहां की लाइनें चालू हो गई हैं। लेकिन जहां कहीं ट्रांसमिशन लाइन भी नहीं बनेगी वहां इवैक्यूएशन करने में जनरेशन होने के बाद भी कठिनाई आएगी, इसलिए जहां कहीं भी विषय कर रहे हैं वो क्योंकि अलग से स्थान के बारे में कोई बताया गया तो जैसा अलग प्रश्न रखेंगे उसका उत्तर दे देंगे।
2: फोर्थ सप्लीमेंट्री, श्रीमान प्रोफेसर मनोज कुमार झा। सो श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी,
4: मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, मैं पहली बार इस सदन में मुझे बोलने का मौका मिला है, आपके माध्यम से मैं विद्युत मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि

0: जहां नया उद्योग धंधे खुल रहे हैं और लगातार विद्युत की आवश्यकता बढ़ रही है, तो क्या इस संबंध में दृष्टिगत रखते हुए जो बलौदाबाजार जिला है छत्तीसगढ़ का, वह सीमेंट उद्योगों का हब है और वहां लगातार ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, तो क्या नवीन प्लांट ऊर्जा से संबंधित वहां लगाने की कोई योजना है या अन्य जिलों में छत्तीसगढ़ में कोई नई ऊर्जा से संबंधित हमारे ऊर्जा प्लांट लगाने की कोई योजना है? मैं धन्यवाद देना चाहती हूं इस सदन को जो मुझे यहां आप सब के बीच में पहली बार आज बात रखने का मौका मिला है। सादर प्रणाम।
1: आदरणीय मिनिस्टर, आदरणीय सभापति जी, वैसे देश भर में इस समय पावर की कहीं भी शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि हमने इस बार हाईएस्ट पीक डिमांड पावर की 270.8 गीगावाट एवर हाईएस्ट इसको हमने आपूर्ति की है, और आज भी हमारी तैयारी है कि 284 गीगावाट की हमारे पास कैपेसिटी है, अगर और भी आवश्यकता पड़ेगी उसको हम पूरा करेंगे। अगले वर्ष भी 300 से ऊपर गीगावाट की हमने योजना बना ली है, इसलिए पावर देश भर में अब सरप्लस कहना कहें लेकिन पावर सफिशिएंट हम अपने देश के अंदर हैं। इसी प्रकार से अब हर प्रदेश में अपनी योजनाओं स्वयं बनाते हैं, किसी प्रदेश में कोई कमी नहीं रहती है। हाँ, यदि उनको पावर कहीं अपने रीजन के अंदर पावर नहीं मिलती है तो ट्रांसमिशन के कारण से पावर अगर नहीं पहुंचती तो अलग बात है, अन्यथा पावर का जो ओपन मार्केट में भी उपलब्ध है, और ओपन मार्केट में जितनी उपलब्ध होती है उतनी खरीद भी आती नहीं है। इसलिए छत्तीसगढ़ का जहां तक विषय है, कहीं पावर की कोई भी हमारे पास हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में अगर कोई डिले हो रहा है तो ये स्थानीय विषय कोई हो सकता है, अगर अलग से उसका प्रश्न आएगा तो उसका जवाब देंगे।
2: हाउस विल मीट अगेन एट 2 PM।
3: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
4: संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय रात के 10:19 होने को हैं। अब हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

बांध लेंगे हाथ पे, सीने पे सजा लेंगे तुमको, जी में आता है तावीज बना ले तुमको, फिर तुम्हें रोज संवारें, तुम्हें बढ़ता देखें, क्यों ना आंगन में चमेली सा लगा लें तुमको।

0: कभी ख्वाबों की तरह आंखों के पर्दे में रहो, कभी ख्वाहिश की तरह दिल में बुला ले तुमको, है तुम्हारे लिए कुछ ऐसी अकीदत दिल में, अपने हाथों में दुआओं सा उठा ले तुमको। इस कदर टूट के तुम पे हमें प्यार आता है, अपनी बाहों में भरे और तुमसे चुरा ले तुमको।
1: ये जिंदगी की महफिल।

0: जरे आ जरा आ लहरा के आ जरा आंखों से दिल में समा आजा रे आ जरा आ लहरा के आ जरा आ आजा रे आ जरा।
1: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। साथियों, अब वक्त आ गया है कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का। आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार।

0: आ रही हैं
1: महबूबा महबूबा महबूबा
0: विविध भारती पर
1: सुंदरा
0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस समय रात के 11 बजने को हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर

0: या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिःसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
1: The bill, among various other things that it wants to do,
2: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
1: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
0: लोकसभा ने अधिक

0: स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
1: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
2: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। चीन में तूफान डॉल्फिन के कारण तेज बारिश के बाद बाढ़ आने की खबर है। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तट से टकराने के बाद तूफान के कमजोर पड़ने के बावजूद खतरा बना हुआ है। आज सुबह तक फुजियान प्रांत में जमीन और समुद्र दोनों तरफ के संवेदनशील क्षेत्रों से 168,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय RS रघु। The Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 today, with Rajya Sabha returning it to Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha has already passed the bill. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had moved the bill. The bill seeks to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, the Income Tax Act 2025, and the Finance Act 2026. The legislation will replace the Income Tax Amendment Ordinance 2026, which was promulgated on 5th June this year. Replying to the discussion, the Union Finance Minister said that the objective of the bill is to strengthen India's manufacturing ecosystem, attract further investment, generate employment, and promote manufacturing activities. She said, the second major reform relates to providing tax exemptions to foreign companies procuring data services from specified data centers in India and enhancing ease of doing business. The minister clarified that the bill does not impose any tax or transaction charge on UPI users.
5: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges. The UPI and Services Steering Committee, headed by the National Payments Corporation of India, will consider